0: हरी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: More hits for you, so stay tuned.
1: RM Free, Bonuli. RM Free, Bonuli.

94.6 98.2 RM3

शी पापनी ओले कुना साथी महान संगीतकार शांकनेर यानी सरबत के लिए श्रेष्ठ कवि मंगेश पारगांवकरन जी ही मधुर गीत चलाए कुया सुरेश वारकर व कविता कृष्णमूर्ति या दुघांजा सुमधुर आवाज़ात।

0: continuous music. RM3.
1: चौराणु 95.6 98.2 तमें सांभळी रह्या छो RM3 रेडियो।

0: Continuous music. RM3.
1: चौराणु 95.6 98.2 तमें सांभळी रह्या छो RM3 रेडियो.

नमस्ते प्रभु। 10:46 हो चुके हैं भक्तों, मैं हूं आपके साथ पूनम और आप जुड़े हैं RM3 रेडियो मनोरंजन के साथ भक्ति में शक्ति के प्रोग्राम के साथ। भक्तों, एक प्यारा सा छोटा सा सवाल आप सबके लिए। आज सुबह उठे तो पहला ख्याल क्या आया? काम, घर, पैसे या भगवान, वो ईश्वर, वो सत्ता? भक्तों, जिस सुबह पहला ख्याल भगवान का हो तो पूरा दिन अलग होता है। तो आज 45 मिनट हम दुनिया में सबसे पहले रखेंगे परमात्मा को, ईश्वर को, भगवान को। छह देवताओं से मिलेंगे, छह अलग अलग हम उनकी शक्तियों से मिलेंगे और आपकी ज़िंदगी के साथ उस चुनिंदा समय को जो आपने चुना है सिर्फ अपने परमात्मा के लिए, उसके साथ जुड़ेंगे। तो ये है आपका भक्ति में शक्ति कार्यक्रम। मैं हूँ आपके साथ पूनम।

0: 10:53 हो चुके हैं भक्तों, और आप जुड़े हैं अपने ही शक्ति में भक्ति के साथ एक प्यारे से प्रोग्राम के साथ। भक्तों, गणपति बाप्पा को विघ्न हर्ता कहते हैं, मतलब रुकावट हटाने वाले। लेकिन आज एक नई बात सोचेंगे। बप्पा का एक और नाम है, उन्हें कहते हैं विघ्नकर्ता, यानी रुकावट लाने वाले भी। ये सुनकर अजीब तो लगता है भक्तों, पर बप्पा जब रुकावट लाते हैं तो इसलिए नहीं कि आपको तोड़ें, बल्कि इसलिए कि जो रास्ता आप चुन रहे हो वो आपके लिए नहीं है। रुकावट एक संकेत है, रुको, मुझे बेहतर रास्ता पता है, मेरे पीछे चलो। तो भक्तों, अगली बार जब जिंदगी में कोई दरवाज़ा बंद हो तो टूटो मत, बप्पा को ध्यान दो, क्योंकि वो कोई बेहतर दरवाज़ा खोल रहे होंगे आप सबके लिए। जब गणपति बप्पा किसी के लिए दरवाज़ा बंद करते हैं कोई एक, तो उसके साथ साथ दूसरा दरवाज़ा खोल देते हैं।
1: RM3 Radio.

11:03 हो चुके हैं भक्तों, मुझे पता है कि आपकी भी वही फीलिंग होगी जैसी इस समय मेरी हो रही है। कहते हैं जब उस पावर के साथ जुड़ जाते हैं तो उसके बाद कोई और चीज़ रह नहीं जाती, और अगर आपको भी एहसास हुआ है कुछ पलों के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। हम आगे बात करते हैं। शिव जी को कहते हैं भक्तों संहारक, लेकिन संहारक का मतलब सिर्फ ख़त्म करना नहीं। जब कोई पुरानी इमारत गिरती है तो उसकी जगह एक नई इमारत कुछ समय के बाद बन जाती है। गिरना ख़त्म होने की नहीं, बदलना बात है। महादेव यही करते हैं, जो पुराना हो गया, जो अब आपके काम का नहीं है, वो हटा देते हैं। चाहे वो रिश्ता हो, टूटा हुआ रिश्ता हो, नौकरी हो, या वो कोई उम्मीद हो जो आपने बहुत समय से अपनों से लगाई होती है और एक दिन अचानक से आपको एहसास होता है कि तो मेरी, मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। शायद महादेव ने हर जगह सबकी बनाई है और आपके लिए कोई और जगह, बेहतर जगह बनाई है। भक्तों टूटने से डरो मत, टूटने के बाद असली रूप सामने आता है, इसलिए आपका जो असली रूप है वो आपके अंदर है। कहते हैं ना, जब हम कपड़ा सिलते हैं तो एक साइड अंदर होता है और एक बाहर होता है, पर संसार में इंसान का जो है बाहर है और इनसाइड जो है हमारे वही रियलिटी है। तो आपको परमात्मा के साथ जुड़ना है और अपने आप को अंदर और उस ईश्वर और उस

0: परमात्मा को भी अंदर मिलने देना है। यही है आज की भक्ति में शक्ति की ताकत।
1: RM3 Radio.

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: Yo, yo, hello. Testing. One, two. Yeah.
2: कभी सोचा है
3: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
2: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
3: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
2: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
3: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
2: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
3: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
2: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
3: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
2: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
3: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
2: और आपका चांस।
3: डोंट मिस इट।

भक्तों, श्री कृष्ण जी ने गीता में एक बात कही है जो आप अपनी उतनी ही सच्ची है। कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भक्तों, इसका मतलब आलसी बनना नहीं है, इसका मतलब है पूरी ताकत से जो काम कर रहे हैं

0: उसे पूरे दिल से, लेकिन नतीजे की चिंता बिल्कुल मत करो जिससे आपको नींद ना आए और आपको कह रही मेरी तो नींद ही नहीं पूरी हो रही है, मुझे डर लग रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, ये नहीं करना है। कृष्ण जी खुद देखो, बचपन में कंस का डर था, युवा होने पर महाभारत की बोझ थी और अंत तक उनको किसी भी चीज़ की तकलीफ नहीं थी, बस उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। उन्हें पता था परिणाम उनके हाथ में है, जैसा वो करेंगे वैसा होता चला जाएगा। तो आज भक्तों बस इतना ही करना है, आपको कृष्ण जी की बात का विश्वास करना है कि अपने चेहरे पे मुस्कान रखनी है और आगे बढ़ते जाना है। तो आगे बात करते हैं सरस्वती माता की, जिन्हें कहा जाता है वाग देवी। वाग यानी कि वाणी, यानी कि आवाज़, जैसे हम आपसे बोल रहे हैं आप हमें सुन पा रहे हैं। माँ सरस्वती सिखाती है कि इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है कौन सी, शब्द की। अगर आपने शब्द सही बोला है, किसी को ऐसी बात बोली है जिससे इंसान उठ सके या गिर सके, बस इसी पर ध्यान रखना होता है कि आपका शब्द कैसा है। तो बस शब्दों को अच्छे से चुनाव करें और सरस्वती की माता की तरफ अपना जो दिल है, दिमाग है, अपना काम है, अपनी हाथ है, उसको आगे बढ़ाते चले जाए, जिससे आपकी ज़िंदगी में सुख भी आएंगे, समृद्धि भी आएगी और धन दौलत किसी भी चीज़ की तकलीफ नहीं होगी। तो हे सरस्वती माँ, सबको सद्बुद्धि देना।
1: RM3 Radio.

11:25 हो चुके हैं भक्तों, अगले सोमवार फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों को प्यार देना और भगवान की भक्ति में दम रखिएगा। मेरे बाद आपको साथ मिलेगा डेविड का चाइनीज प्रोग्राम के साथ। मुझे आज्ञा दीजिए, अपना ख्याल रखिए। ये आखिरी भजन जो है शिव महाराज जी का, ओमकारा यानी कि आरती का, उन इसमें साथ जरूर दीजिएगा। जय जय हर हर भोले। RM3 Radio.

0: सभी को नमस्कार आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार सुमेरा अकबर अली से आपको नमस्कार
1: नमस्कार और आदाब स्कूल वैन के अच्छे संचालन और कार्य कुशलता के वास्ते ड्राइवर के साथ साथ एक हेल्पर का होना लाजमी है मकसद वैन से उतरने और चढ़ने में बच्चों की हिफाजत करना है इसके अलावा अगर बच्चों को सड़क पार करना पड़े तो हेल्पर को उनकी मदद करनी चाहिए नेशनल लाइन एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी NLTA हेल्पर को इस काम के लिए एक ऑथराइजेशन कार्ड भी देती है मुर्शिद में करीब 20% नौजवान बेरोजगार हैं बढ़ती महंगाई और पहली नौकरी के लिए मांगे जाने वाले

0: तजुर्बे की वजह से बहुत से नौजवान विदेश जाना मुनासिब समझते हैं। अर्थशास्त्री डॉक्टर भावेश जगन्नाथ के मुताबिक आर्थिक वृद्धि लाना जरूरी है ताकि नौजवानों के लिए नौकरी की ज्यादा संभावनाएं पैदा की जा सके और वो देश में ही रह सकें। फ्रांसीसी दूतावास की पहल पर कल मनाए जाने वाले फ्रांस राष्ट्र दिवस के सिलसिले में तेलफेमो का प्रोमेनाड में भव्य गतिविधि का आयोजन किया गया। खास पकवान, मिठाइयां, संगीत, नाच और दूसरे मनोरंजक पहलुओं के जरिए मॉरिशस और फ्रांस की दोस्ती को और गहरा किया गया। विदेश में बांग्लादेश में जोरदार बारिश की वजह से कम 51 लोगों की मौत हुई है और 1 मिलियन से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। हालिया दिनों में हुई बारिश की वजह से हजारों लोग बेघर भी हुए हैं क्योंकि वहां पर बाढ़ भी उतर आई है और भूस्खलन भी पेश आई है, खासतौर पर राजधानी ढाका में। तो अभी के लिए बस इतना ही, शोक समाचार सुनिए। सिमेट्री रोड अमोही में 77 साल की 77 years old मोहतरमा फातिमा बीबी बहादुर, मोहतरमा फातिमा बीबी बहादुर जो फातिमा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज दो बजे इनके घर सिमेट्री रोड अमोही से उठाकर दफनाने के लिए अमोही का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2 PM। एसकी रोड पाई में 72 साल की 72 years old श्रीमती देवंती हरकू पैदाइशी नाम लुफ जो मैडम गौजिया के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी मंगल को 10:30 बजे कल 10:30 बजे इनके बेटे महादेव हरकू के घर एसकी रोड पाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिश्लियो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10:30 AM। फुलियार नगर बालो बेलवी मोगल में 89 साल के 89 years old श्री पोताना पोलू जो लचमा हसम के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज सुपहर तीन बजे इनके घर फुलियार नगर बालो बेलवी मोगल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोंचिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
1: On NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: हवा का झोंका तो नहीं बोलूंगी लेकिन प्यार के झोंके जरूर यहाँ पर फुल स्टेज से यहाँ पर कह रही हूँ कि हमारे लिसनर्स को हमारी ओर पुश कर रहे हैं। हेलो जी नमस्कार, 12:09 हुए हैं, मंडे 13 जुलाई। अब 13 क्या होगा कालिया, चलो भाई तो पुराना डायलॉग है, आगे बढ़ते हैं। तो आपका क्या होगा वो मैं जानती हूँ, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं सुहाना सफर प्रोग्राम में, पुराने नहीं जो है वो लेकर आई हूँ, ऐसे खजाने चुन चुन कर लाई हूँ जिसे सुनकर आप लोग एकदम मस्त मूड में हो जाओगे। एंड इसी के साथ चलिए यहाँ पर हम कुछ लोगों को हेलो बोल के उनका स्वागत करते हैं। ट्रैवल, थैंक यू सो मच। पॉजिटिव थॉट्स, मिस्टर लव, कैसे हो जी? करुणा, स्वागत है। तिलक कुमार, कुणाल सुपाल, रिया बुदन, मनोज, रॉबिन पांडे, इंदिरा, सिमरन, रेशमा, सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और पवन रूपन, थैंक यू सो मच। हाय कर्सी, कैसे हो? कहते हैं डॉक्टर इज बैक फ्रॉम वर्क। ओके, मिस्टर नुरैद्दीन बराई, थैंक यू सो मच, आप फ्रांस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एंड शाम के लिए गाना ज़रूर हम डेडिकेट करेंगे इधरा जी, और साथ में यही गाना हम ज्योति गोली की तरफ से उनके चाचा देव चाची माला का हम वेलकम करते हैं। एक्चुअली वो मॉरिशस आए हुए हैं, ये है रामदयाल गुलिया तोड़ा फैमिली की ओर से। लक्ष्मी भारी, आपका भी हम स्वागत करते हैं। विमला जी नमस्ते, रोशन जी हर हर महादेव नमस्कार, स्वागत है आपका।
2: RM3 Radio.
1: चलिए इसी के साथ जितने भी लोग साथ दे रहे हैं, वीर सिंह नमस्कार, स्वागत है। याद रखिए कि हमारा ये जो प्रोग्राम है टिकटॉक पे लाइव है, अगर आप चाहे तो रेडियो मनोरंजन का जो टिकटॉक चैनल है वहाँ पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी बातें होती हैं वहाँ पर, कुछ अगर आप चाहे तो शेयर कर सकते हैं। खूबसूरत सा गाना है चलते चलते फंक का, लेकर आए हैं आपके लिए लता जी की आवाज़ में। भाई अभी आप इतने भी दूर मत जाइए कि हम पुकारते रहें और आप हमारे पास ना आए, ठीक है?

0: You're listening RM Free Radio. Radio.
1: के साथ नेक्स्ट गाना कल्याणी हरी लीना दीपक देवीदयाल संगीता सुकारी जुनवल फोंसे साथ दे रही हैं एजे एस्थ गिनी रंगलोल सुंदरना खानदाई ऋषि गोपी मुकेश सीताराम धोनी कहती है पति सूरज का बर्थडे है तो बेटे हंस और यश की तरफ से हैप्पी बर्थडे ये गाना बृंदा सोहन के नाम डेडिकेट करते हैं नमस्कार

ना सफर सुहाना सफर। मैं तो कहीं गई नहीं, फिर आऊंगी कैसे? मैं यही हूँ आपके साथ, आपके पास। रेडियो मनोरंजन आर एम थ्री पर वेदिता का साथ है, प्रोग्राम है सुहाना सफर। हाय लीना, कैसी हो लीना? ओ लीना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एंड चलिए इसी के साथ, जयालक्ष्मी वणक्कम, कैसे हो आप? गिनी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। एंड चलो इसी के साथ सुल्ताना खंदाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एंड यहाँ पर गाने की काफ़ी फरमाइशें आ रही हैं, लेकिन नए गाने तो मैं चलाती नहीं हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर पुराने गाने जी बिल्कुल। तो नेक्स्ट गाना जो होगा, हाँ जी वृंदा जी, आपके लिए गाना हम डेडिकेट करते हैं। दीपक देवी दयाल कहते हैं कि उनकी वाइफ शेलू का आज बर्थडे है, तो शेलू आपको हैप्पी बर्थडे एंड बहुत सारा प्यार हम सब की ओर से, बेस्ट विशेस है हमारी तरफ से। रोहित, रोहित कहते हैं तुम कहाँ है, हम इधर हैं, इस पार है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड चलो यहाँ पर साहिल हमारे साथ हैं। हाय साहिल, कहते हैं कि अभी नो मोर खांसियाँ। नहीं नहीं नहीं, खांसी को तो ठुम ठुम कर दिया हमने अभी, ठीक है? थैंक यू साहिल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और चलो यहाँ पर हम गाना डेडिकेट करते हैं नजीमा गोवर्धन के लिए। धीरज ऋतु, नमस्कार, वेलकम, स्वागत। एंड साथ में यहाँ पर हम डेडिकेट करते हैं नेक्स्ट गाना आपके लिए। आप हैं दीप्ति गंदौरी, हमारे साथ हमेशा जुड़ी रहती हैं, प्रोग्राम के एंड तक साथ देती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आज का हमारा प्रोग्राम 3 बजे तक होगा, ठीक है? उत्तम, हाय उत्तम, एम जे इवेंट्स, नमस्कार, एक बार फिर से वेलकम, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। थैंक यू यार, आप लोग रोज़ मेरे साथ जुड़े रहते हैं। आई होप कि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट तो मैं भी कर देती हूँ आपका, है ना? थैंक यू। चलो सलीमा आपका हम स्वागत करते हैं। एंड ओके, आपा का मतलब होता है बहन। थैंक यू सलीमा, थैंक यू सो मच। यलेश, और यहाँ पर उदास, उदास, आप उदास हैं, आपको उदासी अच्छी नहीं लगती, चलो आप खुश हो जाओ, ठीक है, हम नाम बदल देंगे। चलो यहाँ पर वृंदा हमारे साथ हैं, जितने भी उनके कलीग्स हैं मूवी फैसिलिटीज़ में काम कर रहे हैं, उनके लिए गाना होगा। हाय रायांश, कैसे हो आप? चलो तो रायांश के लिए भी गाना होगा। और वैसे मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा बोलने से मना किया है। RM3 Radio.

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर विनीता आपका साथ दे रही हैं रेडियो मनोरंजन नारम थ्री पर। और हमारे मॉरिशस से बाहर भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे इस प्रोग्राम को सुनते हैं, और उनका हमारे साथ टिकटॉक पे जुड़ना एक टाइम होता है जब हम सभी एक साथ जुड़ जाते हैं। कितने भी मॉरिशंस हैं हमारी दुनिया के कोने कोने में वो बसे हुए हैं और अपने इस घर को याद करते हैं, अपने मॉरिशस को याद करते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है हमारा टिकटॉक जहाँ पे हम सभी मिलते हैं एंड कम से कम हाल चाल पूछते हैं, एक दूसरे के लिए गाने चलाते हैं, मन खुश हो जाता है ना। चले जी, अभी क्या है कि हम नेक्स्ट गाना जो होगा डेडिकेट करेंगे मालिनी बिसराम के लिए। सलोनी दोहा जी, ललिता हाफ सिंह, नए गाने नहीं पुराने गाने कहते, अभी हमें आपको चैनल जो है ना उनको अभी हम अभी देख रहे हैं, अभी हम सुन रहे हैं, अभी हम उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे पता चल जाएगा। वी हैव विजय, वी हैव ध्यान कमल, कौशल खान, नरेश माराम की सुन एंजल, एंड वी हैव विशाल, हर हर महादेव आपको, वीना, पूनम, विकास काम कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, आरती सुकन, वी हैव रोहित फ्रॉम सुरीनाम। रोहित कहते हैं कि आप सुरीनाम कब आओगे, भाई मैं उनको बता रही थी हमारे मॉरिशस में भी एक सुरीनाम है जहाँ मैं गई नहीं हूँ, पहले वहां पे जाऊंगी फिर आपके पास आऊंगी, ठीक है। और यहाँ पर अशर फरीद हमारे साथ हैं, श्यामा महिलारी आपका हम स्वागत करते हैं, एंड एजे कहते हैं कि गाड़ी में बैठ के चले जाओ, लॉन्ग ड्राइव हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए जी, यहाँ पर गाना जो होगा हम डेडिकेट करते हैं आयशा, वीना एंड विकास के लिए, एंड साथ में यही गाना वृंदा के लिए, थैंक यू सो मच। अभी जो नेक्स्ट गाना होगा हम गीत बजा रहे हैं विलासा और भारती के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पर परदेसी बाबू ने याद किया है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। सना शीतल ऑनलाइन से हमारे साथ हैं, नमस्कार, स्वागत है आपका। खुशबू कहते हैं कि आज मेरे बॉयफ्रेंड का बर्थडे है, बॉयफ्रेंड का नाम ओके अनिकेत रमाना है एंड वो शिवघनिया रहते हैं, तो उनको हैप्पी हैप्पी बर्थडे। चलिए इसी के साथ राधा शिपचन हमारे साथ हैं, सभी स्टाफ के लिए जो काम कर रहे हैं, एंड यही गाना हम डेडिकेट करेंगे उनके लिए जो साथ दे रहे हैं हमारे। अभी गाना जो है डेडिकेट करते हैं फॉर हमारी डीवा गर्ल, हमेशा की तरह साथ देने आ गई हैं, थैंक यू। हाय अंजू, कैसे हो, स्वागत है आपका भी प्रोग्राम में। चलिए इसी के साथ हमारे पास आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, कितने सारे लोग हैं जो आरजे बनना पसंद करते हैं, जो रेडियो पे बात करना पसंद करते हैं, उनका मन होता है कि भाई कभी हमें भी मौका मिले कि इस माइक के पीछे हम भी बात करें। अगर ऐसा कुछ है तो आपके लिए है सरप्राइज।
1: कभी सोचा है
2: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
1: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा,
2: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
1: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
2: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
1: ओपन टू ऑल मॉरिशस, बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
2: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
1: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु।

0: गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वंदे आजी। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।
2: RM3 Radio.

जान के लाले, बोला मुझको कोई बचा ले। चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे, चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे, चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे। आ

stinky life. Drunkard husband, fighter wife. बीवी बिगड़े, शौहर अकड़े, रोज के झगड़े, रोज के लफड़े, लफड़े झगड़े.

के बोली जाने तमन्ना, अंदर आओ, पहले तो कुछ खाओ आओ, फिर बिस्तर पे होंगी बातें, बड़े प्यार से कटेंगी रातें। शौहर चौंका, भूले से मैं ही ये किसके घर आ गया यार, मेरी बीवी मुझे कभी

के भागा, भागा रे भागा रे भागा रे भागा रे भागा। बोला देवी माफ कीजिए, मेरे साथ जरा इंसाफ कीजिए, मुझको अपने घर जाना है, वरना बीवी फिर मारेगी। उस दिन बीवी होश में आई, बंद हो गई सारी लड़ाई, नफरत हारी उल्फत जीती, लुटी खुशी फिर लौट के आई। अरे नफरत हारी उल्फत जीती लुटी खुशी फिर लौट के आई। आई रे आई रे आई रे आई रे आई। पीना छूट गया, पीना छूट गया, बीवी ने इतना दिया प्यार, पीना छूट गया। फिर दोनों ऐसे मिले, फिर दोनों ऐसे मिले, प्यार में ही डूब गए। प्यार अगर मिले तो हर नशा है बेकार, जहां चारिया

0: ना सफर हाँ ना सफर
1: कहते हैं जहाँ चार यार, लेकिन यहाँ पर चार थोड़ी ना है, यहाँ पर तो इतने सारे दोस्त हैं, इतने सारे दोस्त हैं। हर कोई आता है यहाँ पर, अपनी बात सुनाता है। कोई मॉरिशस से हैं, कोई फिजी से हैं, कोई और कहाँ से हैं। हाँ जी, बहुत से लोग हैं, साथ दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट गाना हम रोशन के लिए डेडिकेट करेंगे। कल उनका बर्थडे है, सो अभी से उनको हैप्पी बर्थडे। यहाँ पर मोहिनी दीनू हमारे साथ हैं। मोहिनी जो एक दो तीन करते हुए आ जाती है, आज भी आ गई है। एंड साथ में जो गाना मांगा है मेरे पास, मैं चलाऊँगी। ज्योति चमन, वी हैव अव्या पाडू, विनय बुधू, कैसे जी, नमस्कार, स्वागत है आपके प्रोग्राम में। पृथ्वी यादव, येशना जो कि कैनेडा में हमें सुन रहे हैं, वीमी की तरफ से गाना होगा उनके लिए। और साथ में ये गाना जो होगा हम सिया के नाम डेडिकेट करेंगे। कहती है अभी केक बनाया है, सूप बनाने जा रही हूँ। चलो थैंक यू सो मच, आपने हमें याद किया। हे मेरी डिवा गर्ल, कैसी हो, थैंक यू सो मच। चलो अभी ऐसे आप आराम करो, और बाकी जो है हम तो माधुरी कहती है, जब आप माधुरी कहते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। ओहो, मेरी माधुरी एक दो तीन नहीं, चार भी है उसमें। चलो जी, यहाँ पर सविता हमारे साथ हैं। जीवन सर जो, आपका भी हम स्वागत करते हैं प्रोग्राम में। एंड डैनी रोज़ा, हाय, कैसे हो। और साथ में ये गाना हम नेश जो कि पोटवी से हैं उनके लिए डेडिकेट करते हैं। नमस्ते फ्रनी क्रिएशन, कहाँ से हो आप, कहाँ से हमें हमारा साथ दे रहे हो बताते चलो। और सुदेवी वुदन का भी हम वेलकम करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में। और अभी मेरे फेवरेट गीतों के लिस्ट में एक गाना आया है, सुनना चाहेंगे।

0: सुहाना सफर।
1: चलिए प्रोग्राम को आगे ले चलते हैं अगले गाने के साथ। बबीता बुलाकी के साथ साथ बबीता बंधु का भी हम स्वागत करते हैं, जिस समय हमारे साथ हैं, प्रोग्राम सुन रही हैं। यही गाना हम डेडिकेट करते हैं वाइफ के लिए जो काम कर रही हैं। ये हैं कमलेश की तरफ से, लेकिन वाइफ का नाम नहीं लिखा आपने। साथ में यह गाना हम डेडिकेट करेंगे फॉर मरियम। और यहाँ पर रोड्रिक्स में कुछ लोग हमें सुन रहे हैं, लेकिन कहते हैं हम तो इंडिया से हैं, लेकिन रोड्रिक्स में आपको सुन रहे हैं। ओके ओके, चलो ठीक है। परी हमारे साथ हैं और बबीता सोब्रो। वी हैव उमा, भारती देवी, विश्वानी, जयलाल सर मुखिया जी के लिए गाना मांग रही हैं, एंड सरोज, रिशान सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिस्टर गुर्ग आपका भी हम ओके। सुनीता हमारे साथ हैं, अंजलि सिरतन इनका भी हम प्रोग्राम में स्वागत करते हैं और इनके लिए गाना डेडिकेट करते हैं। देखो भाई, अमृता रामधानी भी आ गई हैं और गाना होगा उनकी सिस्टर सुनीता के लिए। सुनीता के लिए गाना चलाऊंगी, लेकिन वो गाना मत मांगना मेरे से। हाँ, विदिता का प्रोग्राम है, विदिता का गाना चलेगा, सुनीता का नहीं चलेगा। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, मजाक कर रही हूँ। हाँ जी, तो मैं क्या कह रही थी, मैं कह रही थी कि अगर आपको भी आरजे बनना है, आप चाहते हैं कि एक दिन के लिए आप आकर हमारे यहाँ आप देखें कि कैसे होता है, तो वो आप कर सकते हैं। बस आपको एक छोटा सा वीडियो करके ना हमें भेजना होता है। नंबर अभी जब हम प्रोमो चलाएंगे तो नोट कर लेना, और इट्स 5251-6383, इस नंबर पर आप भेज सकते हो। अदरवाइज अभी यहाँ पर मोहम्मद इब्राहिम का हम स्वागत करते हैं, शामा आपका भी हम वेलकम करते हैं। गाना कौन सा होगा भाई? अभी गर्मा गर्म गाना है लावा फिल्म से, सर्दी का मौसम है ना, तो उनके लिए। आशिफ के लिए गाना सीला की तरफ से और सुभाष किस्तु के नाम।

खाना सफर, खाना सफर। चलिए जी, अगले गाने के साथ हम बढ़ने जा रहे हैं 1 बजे के समाचारों की ओर, लेकिन उससे पहले जो गाना आएगा हम डेडिकेट करेंगे फॉर शैली शर्मा जो साथ दे रही है हमारे। हेलो शैली, थैंक यू। रेखा ऐश, विमल बर्तन, गोविंद तिलक, शाहिद इकबाल खान मेरे दोस्त, थैंक यू। केशनी कुमार हमारे साथ हैं एंड साथ में हैं हमारे माया राम जग, थैंक यू सो मच। मिहिका, थैंक यू। ऐश्वानी जगन्नाथ, थैंक यू। कैटकोको से साथ दे रही हैं एंड यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं। विनेश कनाई भी, हर हर महादेव आपको। चलो जी, तो साथ में यहाँ पर बॉस अनिल के लिए गाना, ओके तो ठीक है, चलो इसी के साथ गाना हो जाए। आप सभी लिसनर्स के लिए मिलते हैं थोड़ी देर में इस गाने के बाद।

0: सभी को नमस्कार। आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आशिता से। आशिता आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। 2025 के गन्ने पेराई अभियान की शुरुआत के अवसर पर उम्निकेन की पहल पर आज सुबह एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कंपनी के अधिकारी, कर्मचारी और गन्ना उत्पादक व किसान एक साथ जुटे। सभी ने प्रार्थना, कृतज्ञता और आत्मचिंतन के इस विशेष क्षण में भाग लेते हुए कंपनी के एक शताब्दी लंबे इतिहास और उसके संघर्षों तथा उपलब्धियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस समारोह के बाद प्रतीकात्मक रूप से

ना की कटनी का अभियान का शुभारंभ किया गया। आपने ये खबर देखी होगी, कल प्लेजोंस हवाई अड्डे पर इथियोपियन एयरलाइन के विमान के आगमन के साथ मॉरिशस की अंतर्राष्ट्रीय हवाई कनेक्टिविटी और मजबूत हो गई है। इससे पर्यटन, व्यापार और व्यापार आदान प्रदान के नए अवसर खुलने की उम्मीद है। अफ्रीकी महाद्वीप में विमानों की सबसे बड़ी फ्लीट रखने वाली इथियोपियन एयरलाइंस अफ्रीका की प्रमुख विमानन कंपनियों में से एक है। ये मॉरिशस की क्षेत्रीय स्थिति को और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अफ्रीका की सबसे बड़ी एयरलाइन अब अडिस अबेबा और प्लेजोंस के बीच दैनिक उड़ान सेवा शुरू करने की महत्वाकांक्षा रखती है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड देश के कई इलाकों में मरम्मत का काम चला रहा है। मकसद है बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता और सुरक्षा बेहतर करना। ये कार्य मुख्य रूप से सप्ताहांत के दौरान चलाए जा रहे हैं, जब बिजली की मांगें आमतौर पर कम रहती हैं। कार्यों के अगले सितंबर महीने तक चलने का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में कल रात रविवार एक बार में भीषण आग लग गई, जिसमें कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई जबकि 22 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग लोकप्रिय चातुचक इलाके में स्थित बार के मंच के पास से शुरू हुई और देखते ही देखते पूरे परिसर में फैल गई। आग के कारण बिजली आपूर्ति बाधित हो गई और धुएं ने पूरे हॉल को अपनी चपेट में ले लिया। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में घबराए हुए लोग जान बचाने के लिए बाहर भागते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के कपड़ों में भी आग लगी हुई थी, जबकि वे लपटों से घिरे मुख्य प्रवेश द्वार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। आधी रात की तुरंत बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर जल्द ही काबू पा लिया। राहत एवं बचाव अभियान के दौरान अधिकांश मृतक एक शौचालय में मिले, जहां वे आग से बचने के लिए शरण लेने की कोशिश कर रहे थे। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रही बढ़ते हम शुभ समाचारों की ओर।

0: Shok sa wacha sunye, Macaulin 3 boutique Unionville, me Macaulin 3 boutique Unionville, me ki asi sal, ki 81 years old ki, shimati subama mutusami, shimati subama mutusami, pedash nam Savri, aur jine Sinda ke nam se bahut zyada jante the, ki mrityu ho gayi hai, unki arthi kal subah 10:30 baje, unke ghar Thwabuchik Unionville se uthakar antim sanskar ke liye Thwabuchik ki shmshan bhoomi li jayegi, cremation tomorrow at 10:30 AM. इसकी रोड पाई में 72 साल की 72 years old की श्रीमती देवंती अकू पैदाशाम लोफो जिन्हें मैडम गौजा के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल सुबह 10:30 बजे उनके बेटे महादेव अकू के घर पाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए खिश्ट शमशान भूमि ले जाई जाएगी कमीशन टुमारो एट 10:30 AM. सिमेट्री रोड अमोरी में 77 साल की 77 years old की फातमा बीबी बहादुर जिन्हें फातमा के नाम से भी ज्यादा जानती थी इंतकाल कर गई हैं. इनका जनाजा आज दिन के 2 बजे उनके मकान अमोरी से उठाकर दफनाने के लिए अमोरी का ही कब्रिस्तान ले जाया जाएगा. फ्यूनरल जरिया 2 PM. पुलियार नगर बौलू बेलवी मोगैल में 89 साल के 89 years old की श्री पुताना पुलू जिन्हें लक्ष्मक ओसम के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी आज शाम 3 बजे उनके घर बेलवी मोगल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लामोचेक शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 3 PM. शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है.
1: कभी सोचा है
2: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
1: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
2: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
1: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका.
2: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
1: ओपन टू ऑल मॉरिशस. बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
2: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी.
1: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज

0: में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वंदे आजी। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।
2: You're listening to RM3 Radio Man.

0: सुहाना सफर सुहाना सफर
1: दिन के 1:12 हुए हैं और आप विदिता का साथ दे रहे हैं। चलिए प्रोग्राम को आगे ले चलेंगे। सुहाना सफर रेडियो मनोरंजन RM3 पर और यहां पर गाना होगा यशवंत जातू के लिए जो कोटेज से साथ दे रहे हैं विनेश खनाय अनुष्का विहा वैदेही अभी सिक्योरिटी टीम जो है साज हॉस्पिटल में उनके लिए सभी स्टाफ सभी डॉक्टर सभी नर्सेज के लिए शैलेंद्र हमारे साथ हैं अनुराधा सरोज कहती है मेरे लिए गाना नहीं चलाओगी। अरे बिल्कुल क्यों नहीं चलाऊंगी। चलिए अगला गाना आपके लिए एंड यहाँ पर गाना जो होगा फॉर कविता अनु श्रेया हमारे साथ हैं उनका आज बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू श्रेया बहुत सारा प्यार है आपको एंड यही गाना हम डेडिकेट करेंगे वाइफ के लिए। उन्होंने कहा अगला गाना मेरे वाइफ के लिए। भाई पहले अपना नाम तो लिखो वाइफ का नाम तो लिखो। करुणा जी कहते हैं कि आज मेरा बर्थडे है जी आपको हैप्पी हैप्पी बर्थडे बहुत सारा प्यार। बबीता बंधु जी आपके लिए बहुत सारा प्यार है एंड चलो जी यहाँ पर सब ने बर्थडे हैप्पी बर्थडे बोलना शुरू कर दिया एंड किसी ने भी बात की थी मैं भी बात कर रही थी ब्रेड बटर चीज़ के साथ जो हम लोग घर पर अचार बनाते उसका जो मसाला होता है ना उसके साथ खाने का बड़ा मज़ा आता है। उन्होंने कहा कभी आपने ब्रेड एंड शुगर खाया है शायद खाया होगा छोटी थी तो छोटे थे तो क्या क्या नहीं खाया हमने बहुत कुछ खाया होगा। चलो जी यहाँ पे नेक्स्ट गाना जो होगा शाहिद कहते हैं मेरे साथ पाकिस्तान से अमजीद साहिब आपका प्रोग्राम सुन रही हैं तो अमजीद साहिब आपका भी हम हमारे इस प्रोग्राम में वेलकम करते हैं स्वागत करते हैं थैंक यू सो मच। नीलिमा जी कैसी हो आप और साहिल थोड़ी देर में बात करते हैं अभी और यहीं पर जो हमारा अगला गाना होगा ये आप सुनेंगे आशा जी और रफ़ी साहब की आवाज़ों में। ये गाना हम डेडिकेट करते हैं उत्तम बिरावा के नाम भी जो हमारे साथ अभी अभी जुड़े हुए हैं।

0: सुहाना सफर
1: जी बिल्कुल, ये वो प्रोग्राम है जहाँ पर हम यहीं मॉरिशस में बैठे बैठे पूरी दुनिया की सैर करते हैं। अभी कोई वेट कर रहा है हमारा फिजी में, यहाँ पर पाकिस्तान से मैसेज आया है, हर जगह से मैसेज आते हैं। सो थैंक यू सो मच, आई फील सो ब्लेस्ड कि इतने सारे लोग हैं जो हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हुए हैं और हमें फील कराते हैं कि हमारा जो रेडियो है वो उनके दिल तक पहुँचता है। कोई ऐसा मैजिक तो है, और मैजिक साकुन कहती हैं वो तो आप क्रिएट करती हैं ना गीतों के साथ। विमला पाडू, उनकी मम्मा के लिए गाना होगा। वी हैव स्मिता एंड निशा गोकुल, गीता राम नारायण। हमारी एंजल कहती हैं प्लान बनाओ, हर जगह जाओ। मैं तो कहती हूँ यहीं बैठे बैठे हम हर जगह चले जाते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, है ना। चलो इसी के साथ हम गाना जो है डेडिकेट करेंगे हमारे उन दोस्तों के लिए जो इस समय ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, और हमारे दोस्त जो बस चला रहे हैं कहते हैं हाँ ये लड़की सिर्फ गाड़ी की बात करती है, बस की बात नहीं करती। नहीं नहीं, मैं आपकी भी बात करती हूँ, आप कभी सुनते नहीं हो ना। तो जो बस में है, लॉरी में है, वैन में है, मोटरसाइकिल में है, साइकिल में है, जो चल के जा रहे हैं, जो शॉप से गुजर रहे हैं, सुपरमार्केट में हमें सुन रहे हैं, मेडिक्लिनिक्स में हमें सुन रही हैं, भाई बिलविद्या के मेडिक्लिनिक्स में बस तो यही तो चलता है। हाँ, हमारा रेडियो मस्ती
2: RM3 रेडियो।
1: चलिए गाना विदिता के नाम चलाते हैं। नो, नॉट वेदिता, इट्स विदिता। क्या पता कितने सारी वेदिताएं हैं जो सुन रही हैं, उनके लिए भी। आप कहां से सुन रहे हैं आप मुझे बताइएगा।
3: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती,

तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती। तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: देखो भाई आज मंडे हैं, मंडे में मन लगाना ज़रूरी होता है ना, तो चलो यहाँ पर काफ़ी सारे दोस्त हैं जो बीमार पड़े थे लेकिन अभी उनकी तबीयत ठीक है। हमारी भी तो हालत कुछ ऐसी थी दो हफ्ते से, एंड फाइनली इस हफ्ते मुझे लगता है कि अभी क्वाइट बेटर। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हमारे जो घरेलू नुस्खे हैं वो शुरू में ही आपको अपनाना चाहिए। जब आपको पता है कि सर्दी हो रही है तो मैं कहती थी ना कि आप लोग विटामिन सी लो, अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करो, लेकिन मैं खुद खाना स्किप कर जाती थी क्योंकि काम बहुत होता था। तो ऐसे करते करते कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि कभी ले ही लेते हैं बहुत ज़्यादा चीज़ें, तो जिससे क्या होती है ना कि गर्मी पैदा होती है बॉडी में और इससे क्या कहते हैं कि हमारा जो जो प्रॉब्लम होती है ना हमारा इन्फ्लामेशन का वो बढ़ जाता है, तो उसको ठीक करना ज़रूरी है। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट गाना जो होगा डेडिकेट करते हैं गोपाल के लिए, एंड ये गाना जो होगा जाएगा रेशमा सुचिता कुलमत के नाम, वी हैव टिंकी कहते हैं उनके फ्रेंड्स जो फिनिक्स में, उनके लिए गाना चला दीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जितने भी सारे दोस्त हैं उनके, एंड रेशमा तयाग से कहती है उनकी फैमिली के लिए गाना चला दे, एंड वी हैव यश। यश आई होप कि आप बेटर फील कर रहे हो, एंड वो भी बीमार थे अभी थोड़ा बेटर फील कर रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़े हुए हमारे टिकटॉक लाइव पे। हेलो आदी प्रकाशवती जी स्थिति के साथ बेल्जियम में हमें सुन रहे हैं, कहती हैं कि आज तो मौसम ठीक है, थोड़ी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बेल्जियम में 25 डिग्री हैं, 25 डिग्री में ठंडी हवाएं। चलो ठीक है आपने कहा। तो यहाँ पर नेक्स्ट गाना होगा सिमी के लिए राधा सिपचन के नाम, और साथ में ये गाना डेडिकेट करेंगे हम आपके लिए तरुण। हाय, काफ़ी देर लगा दी आने में प्रोग्राम को, अब डेढ़ घंटा है, घबरा नहीं, हम 3 बजे तक है आज साथ, ठीक है। तो गाना आपके लिए, और साथ में ये गाना हम युधिष के नाम डेडिकेट करेंगे, और यहाँ पे गाना होगा आपके लिए अनीता पे। तो आपको बहुत सारा प्यार हमारी ओर से, थैंक यू सो मच एक बार फिर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो गाने की बात चली है तो सोच रही थी मूड बनाने के लिए अपना एक फेवरेट गाना चला ही दूं। कभी कभी हमारा भी मन करता है कि हम अपनी पसंद का गाना कोई सुन लें। मेरे फेवरेट गीतों के लिस्ट में ये गाना आता है और ये गाना सबसे ऊपर आता है।

तो सोचा ये गाना आपको डेडिकेट कर ही दूं। चलो तरुण, ये गाना आपके नाम डेडिकेट करते हैं। और अभी भी हम दुबई का चॉकलेट वेट कर रहे हैं, अभी तक लाए नहीं आप। हाँ

था अकेला, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। दिलवंती सोनातन कविता देवकैया से साथ दे रही हैं, मोहन रेखा अंबिका प्रेमिला मिनुअंश हमारे साथ हैं, शर्मिली रोचदाम हमारे साथ, और गाना होगा आपके लिए

0: सुहाना सफर सुहाना सफर
1: बहुत ही प्यारा बहुत ही स्वीट बहुत सा नोटी सा गाना था रूठे हुए अच्छे लगते हो लेकिन फिर भी कहती है ओ जानी चलो भाई जानी इधर हम भी हैं और गाने आपके लिए लेकर आए हैं राइट है आपके अपने रेडियो स्टेशन पर यानी कि रेडियो मनोरंजन RM3 पर अभी दिलवंती सनातन हमारे साथ हैं कविता देवखया से साथ दे रही हैं गाना जाएगा फॉर मोहन रेखा अंबिका प्रेमिला एंड मीनूवांश हमारे साथ शर्मिली रोचन डैम जीतन दुलवा प्रिया सूरज हरोनिया एंड वी हैव खान फ्रॉम कुवैत प्रेमा की तरफ से उनके भाई विशाल भाभी शिमला को हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी निपोल नारायण बालगोविंद फैमिली की तरफ से वी ऑल्सो हैव साधना अलगू जो साथ दे रही हैं दीप्ति जी कैसे हो आप सब बढ़िया सब ठीक चलिए जी इसी के साथ नेक्स्ट गाना जो जाएगा वो हम डेडिकेट करेंगे आपके लिए किरण राधा कैसी हो राधे राधे आपको हाई पैमिला सलोनी गया दिन आपका स्वागत करते हैं एंड साथ में गाना जाएगा लक्ष्मण मलू के नाम और यही गाना प्रवीण के नाम डेडिकेट करते हैं एंड वी ऑल्सो हैव दिविना जो साथ दे रही है हमारे थैंक यू सो मच अब यही गाना हम हमारे एक और मेहमान के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे वो हैं RJ विराग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और नहीं भाई ये प्राइवेट नहीं है नेशनल रेडियो एंड टीवी चैनल है हमारा और वी आर सो सो सो हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट चलिए इसी के साथ अभी जो हमारा नेक्स्ट गाना आ रहा है वो हम आवार की फिल्म से लेकर आए हैं खास आपके लिए बाली उम्र ने मेरा हाल वो किया चलिए लता जी फिर आ रही एक बार और जिनको मोहम्मद असीज की आवाज़ पसंद है ना उनकी आवाज़ में ये गाना आप सबके लिए स्पेशली लेकर आए हैं

0: दर्द जिगर ने मेरा हाल वो किया। अब आप अपने हाल के बाद ही में कुछ बताइए हमें, एंड हम भी जानना चाहेंगे कि आप हमें कहाँ से सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं और इस टाइम कहाँ पे हैं।
1: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
0: चलिए तो आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट जो हमारा गाना होगा हम डेडिकेट करना चाहेंगे आपके लिए, एंड ये गाना रफ़ी साहब की आवाज़ में है और फिल्म का नाम है इवनिंग इन पेरिस। यही गाना हम डेडिकेट करेंगे फॉर दिया केवलदार, जो कि हॉलैंड से समय में सुन रही हैं। उनका हम वेलकम करते हैं हमारे शो में, स्पेशली हम उनको वेलकम करते हैं हमारे टिकटॉक लाइव में। और चलो यहाँ पर हमारे साथ लवना भी जुड़ गई हैं, उनको हमारे गाने अच्छे लग रहे हैं। नेक्स्ट गाना जाएगा आशा फ़कीर के लिए, काफ़े से उनके मम्मा हैं एंड वाकवा में काम करने कर रहे हैं और हमें सुन रहे हैं। मीनू थैंक यू सो मच। अभी किरण दुखी हमारे साथ हैं एंड मालिनी हिया ओके कहते हैं संडे को मेरा बर्थडे था और अभी हम काम पे वापस थके हुए हैं। ओके तो अभी आप एंजॉय करो करण। और ये गाना जाएगा टू मनीषा जो कि इस समय काम कर रहे हैं सुपर मार्केट में, तो करण की तरफ से गाना उनके लिए होगा। वी ऑल्सो हैव डॉली जो साथ दे रही हैं और जगदीश साथ।

आपको स्वागत वेलकम एंड वी हैव अनीता अंजू जो ऑस्ट्रेलिया में है हमें सुन रहे हैं विमला नारायण हमारे साथ गिरवर राजन सुरेखा राम तुले सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रीति हैं सैंपल से भी घर पर हैं

0: सुहाना सफर
1: अकेले अकेले नहीं बल्कि आपको साथ में लेके चल रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी हमारा साथ जरूर पसंद आ रहा होगा। चलिए जीवन के बारे में हम क्या बताएं आपको, ये जिंदगी छोटी सी है, जितना हो सके इसमें प्यार समेट लो, खुशियां समेट लो, क्योंकि रह जाती हैं तो बस यादें ही।

0: दो बजे हैं। देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अर्शिता, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परिश्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। 2025 के गन्ना पढ़ाई अभियान की शुरुआत के अवसर पर उम्निकेन की पहल पर आज सुबह एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कंपनी के अधिकारी कर्मचारी और गन्ना उत्पादक व किसान एक साथ जुटे। साथ सभी ने प्रार्थना, कृतज्ञता और आत्मचिंतन के इस विशेष क्षण में भाग लेते हुए कंपनी के एक शताब्दी लंबे इतिहास और उसके संघर्षों तथा उपलब्धियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस समारोह के बाद प्रतीकात्मक रूप से गन्ना की कटनी का अभियान का शुभारंभ किया गया। अब आपने ये खबर देखी होगी, कल प्लेजेंस हवाई अड्डे पर इथियोपियन एयरलाइन के विमान के आगमन के साथ मॉरिशस की अंतर्राष्ट्रीय हवाई कनेक्टिविटी और मजबूत हो गई है। इससे पर्यटन, व्यापार और व्यापार आदान प्रदान के नए अवसर खुलने की उम्मीद है। अफ्रीकी महाद्वीप के विमानों की सबसे बड़े फ्लीट रखने वाली इथियोपियन एयरलाइंस अफ्रीका की प्रमुख विमानन कंपनियों में से एक है। ये मॉरिशस की क्षेत्रीय स्थिति को और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड देश के कई इलाकों में मरम्मत का काम चला रहा है। मकसद है बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता और सुरक्षा बेहतर करना। ये कार्य मुख्य रूप से सप्ताहांत के दौरान चलाए जा रहे हैं, जब बिजली की मांगें आमतौर पर कम रहती है। कार्यों के अगले सितंबर महीने तक चलने का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्य पूर्व में एक और रात हवाई हमलों और सुरक्षा अलर्ट के बीच गुजरी। ईरान, जॉर्डन और गल्फ खाड़ी के कई देश क्षेत्रीय सैन्य तनाव के केंद्र में रहे। ईरानी सेना ने अमेरिका से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाकर हमले करने का दावा किया। ये कार्रवाई दक्षिण और पूर्वी ईरान में अमरीकी सैन्य अभियानों के बाद की गई। इस बीच

0: संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान और जोर्डन ने अपनी सुरक्षा एवं रक्षा व्यवस्थाओं को सक्रिय कर दिया या संभावित खतरों की जानकारी दी। वहीं सऊदी अरब ने रात भर प्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाई से दूरी बनाए रखी, लेकिन कई अरब देशों पर ईरान के हमलों की कड़ी निंदा की। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. You're listening to RM3 Radio.

0: सुहाना सफर।
1: दिन के 2:08 हुए हैं और जैसा हमने कहा था कि आज का हमारा जो प्रोग्राम है इसमें आपको एक घंटा एक्स्ट्रा मिल रहा है, क्योंकि आज अभी इस वक्त हमारा जो प्रोग्राम है इसमें अभी भी हम पुराने गाने डेडिकेट करेंगे, हमारे सभी लिसनर्स को चलाएंगे, लेकिन थोड़ा सा चेंज इसमें ये है कि आपको पता है कि हम लोग 12 से लेकर 2 बजे तक सिर्फ पुराने गाने चलाते हैं, तो यहाँ पर आज हमें मौका मिला है इस एक घंटे में मैं कोशिश करूँगी कि कुछ 90s के या कुछ 60s के गाने जैसे आप मुझसे मांगते हैं वो गाना हम अपने इस प्रोग्राम में ज़रूर डेडिकेट करें। एंड इसके लिए जो नेक्स्ट हमारा गाना होगा वी गोइंग टू डेडिकेट इट फॉर आशा जानू जो कुटेज से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और उनकी मामा कुमारी और जानू फैमिली के लिए हम गाना चलाएंगे। यहाँ पर हमारी चाची माला हमारे साथ जुड़ी हुई हैं एंड उनको भी हमारे प्रोग्राम में पुराने गाने बड़े अच्छे लगते हैं, तो चलो अभी वो आराम फरमा रही होगी, घर का काम काज हो गया, सब कुछ हो गया, अब बैठेंगे गाना सुनेंगे। चलो तो गाना आपके लिए, हाय अनोरखी कैसे हो, प्रवीणा दुर्गा आपके लिए, पूनम उनकी चाची अनिला के लिए मांग रही है गाना, शिमला हमारे साथ हैं, पुष्पराज कैसे हो भाई रच्छू आपके लिए हम गाना डेडिकेट करते हैं, और साथ में ये गाना रजीब बुदा मगर के नाम, ओके चलो तो उनके लिए गाना हो जाए। एंड आप मुझे बताओ कौन सा गाना है हम चलाएंगे आपके लिए। साथ में यहाँ पर अंचरा चांद है, अर्चना फ्रॉम न्यूजीलैंड, राइट अर्चना लगता है बहुत दिनों के बाद ज्वाइन कर रही हैं हमें, पता नहीं अचानक कैसे गायब हो गई है, कहीं मिस्टर इंडिया तो नहीं मिल गया। चलो गाना आपके लिए होगा। एंड दीपक जी हमारा प्रोग्राम अभी 3 बजे तक चलेगा, ठीक है। यहाँ पर डेडिकेट करते हैं गाना फॉर नजराना एंड साथ में डैनी रोजा, बिंता राम तोहल, विमला आपाडू एंड आई एम गुड अर्चना, थैंक यू सो मच, आई मीन आई एम बेटर अभी 2 हफ्ते के बाद अभी तबीयत ठीक है। चलो तो रेडियो मनोरंजन पर साथ दे रहे हैं आप लोग और यहाँ प्रवीण कुमार बंधुआ जी नमस्ते स्वागत है, शैलिन रायचन स्वीरी और साथ में गाना होगा साधना के नाम और गाना होगा निशा भवानी के नाम और पूनम गाना तो हम चला ही रहे हैं, मुंबई से लोग हमें सुन रहे हैं क्या बात है। एंड चलिए इसी के साथ हम रीटा देवी नमा के नाम भी गाना डेडिकेट करते हैं, हमारे साथ हैं यहाँ पर अकीम एंड चले तो जब बात चली है गानों की मैंने कहा ना कुछ अलग गाने होंगे तो अलग गीतों में यहाँ पर हम लेकर आए हैं दयावान फिल्म का गाना, बहुत मन था ये गाना सुनने का और सुनाने का भी, आज मौका है, मौका नहीं गवा सकते हम। वैसे माधुरी दीक्षित के जितने भी फैन है खुश हो जाएंगे अभी।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: चलिए जी, यहाँ पर अब गाना जो है हम शाहिद की तरफ से उनके दोस्त उबैद के नाम डेडिकेट करते हैं। वो भी हमें सुन रहे हैं, आपका स्वागत है प्रोग्राम में। उम्मीद करती हूँ आप भी हमें सुनते रहेंगे। चलो जी, खान कहते हैं कि भाई क्या गाना आपने चलाया, खूबसूरत आवाज़ और साथ में हम भी गा रहे हैं, आप भी गा रहे हो, मज़ा आता है ना। रायना के लिए हम नेक्स्ट गाना डेडिकेट करते हैं और साथ में यहाँ पर गाना होगा शिमला गुरंग सिंह के नाम। और दीप्ति जी कहती हैं कि हीरो फिल्म का कोई गाना चलेगा क्या? देखती हूँ, मेरे पास अभी बहुत सारे गाने हैं, पहले सुन तो लो। यहाँ पर हमारे साथ फतो मिर्ज़े भी जुड़े हुए हैं एंड गाना किसके लिए होगा? चलो भाई, मैं कोशिश कर रही हूँ नाम ढूंढने की। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं। यास्मीन होडा हमारे साथ हैं, कहती है हेलो डी, हम बैक, वेलकम यास्मीन, स्वागत है आपका। एंड साथ में यहाँ पे लैला मुदारन हमारे साथ हैं और रॉय जियावन जो कि है फ्रॉम होलैंड, यानी कि होलैंड से आज काफ़ी सारे लोग हमें सुन रहे हैं। भाई आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, हमें सुन रहे हैं, हमारा टिकटॉक लाइव है। अगर आप तक पहुंच रही है हमारी आवाज़ तो ज़रूर आप हिचकिचाइएगा नहीं, एक हेलो एक हाय ज़रूर भेजिएगा। हमें बहुत अच्छा लगेगा जानकर कि आप हमें कहां से सुन रहे हैं। चलो जी, साहिल का भी इनका लंच टाइम ख़त्म हो गया एंड काम में थोड़ा सा ध्यान देना है। थैंक यू, मुझे पता है बैकग्राउंड में म्यूज़िक चलता रहेगा लेकिन अभी के लिए उन्होंने बाय बोल दिया, तो थैंक यू सो मच। जहाँ से भी आप साथ दे रहे हैं, थैंक यू। स्वीट एंजल गोकुल गाना आपके लिए।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर
1: वेलकम स्वागत है सुहाना सफर प्रोग्राम में विदिता का साथ और यहां पर चलिए गाना जो है हम डेडिकेट करते हैं हमारे बहुत ही अच्छे प्यारे से दोस्त के लिए मिस्टर भीमसेन जो कि हमारे बहुत बहुत बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं एंड वो हमें अपनी मम्मी के साथ प्रोग्राम में सुन रहे हैं हमारे तो चाची राजकुमारी जी नमस्ते प्रोग्राम में आपका स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यार से आप हमें सुन रहे हैं अपने बेटे के साथ हमारे लिए इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या हो सकता है कि आप हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े हैं एंड हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमें बहुत सारा प्यार आशीर्वाद भेजते हैं भले उनका मैसेज नहीं आता वो हमारे साथ होते हैं प्रोग्राम को एंजॉय करते हैं सो थैंक यू सो मच यहाँ पर वी हैव सेबास्टियन एंड सेबास्टियन लगता है थोड़ा सा दिल टूटा हुआ है उनका कोई बात नहीं भी जोड़ देंगे भी हमारे पास टाइम है आधा घंटा है जोड़ देंगे दिल जाने से पहले काजल कविता थैंक यू मिस्टर सिंह हमारे साथ उनके डैड हरि सिंह चौधरी आज 80 ईयर्स के हो गए हैं तो अंकल जी आपको हमारी ओर से हैप्पी बर्थडे जन्मदिन के ढेरों शुभकामनाएं जी और चलो अभी तो आप तंदुरुस्त रहो खुश रहो और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहो हमारे प्रोग्राम को एंजॉय करते रहो अपना आशीर्वाद हम तक पहुंचाते रहो मुझे पता है 80 ईयर्स में बहुत थोड़ी मुश्किल तो होती है क्योंकि जैसे जैसे जैसे हम लोग 40 क्रॉस करते हैं 50 तक आते आते हमारे घुटनों में दर्द होने लगता है पीठ में दर्द होने लगता है इसीलिए कहते हैं तंदुरुस्त रहो एक्सरसाइज करो और यहाँ पर हम आपको यही कहेंगे कि आप तंदुरुस्त रहें एंड उम्मीद करती हूँ कि आपके बेटे जो हैं सिंघा आपका पूरा ख्याल रख रहे हैं और आपकी पूरी फैमिली आपके साथ जुड़े हुए हैं सो वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू अभी जब आप केक काटोगे या कोई भी मिठाई खाओगे हमारी तरफ से एक छोटा टुकड़ा ज़रूर खाइएगा हमारे पूरे रेडियो मनोरंजन टीम की तरफ से आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं चलो तो यहाँ पर हम डेडिकेट करते हैं गाना शर्मिला बुधन के नाम और हमारे साथ हैं प्री और गाना होगा आप सभी दोस्तों के नाम जो इस समय घर पे बैठे गर्मा गर्म चाय के साथ हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े हैं
2: RM3 रेडियो रेडियो रेडियो

0: एंड यस चलिए यहाँ पर गाना हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं हमें चाची नाजिमा हमारे साथ हैं उनका हम प्रोग्राम में वेलकम करते हैं पल्लवी आशा लखनौत सलमा एंड रिजवाना और यहाँ पर हमारे साथ देव कुमार कालीचरण है एंड यस साहिल जो हमें बाय बाय कह के गए थे स्वयंवर फिल्म का गाना सुना वापस आ गया भागते भागते और ये नमस्ते मॉरिशस साम बशीर फ्रॉम इटली हाय कैसे हो बशीर आपका हम प्रोग्राम में वेलकम करते हैं चलो जी यहाँ पर पल्लवी कहते हैं हम ऑल्सो बॉलीवुड सिंगर अच्छा आप गाना गाती हैं पल्लवी क्या बात है चलो यहाँ पर गाना जुनबा हम लोहा सिंह के नाम डेडिकेट करते हैं ओके तो ऐसा है यहाँ पर रामिनी पराग इटली से साथ दे रही हैं और यहाँ पर हमारे साथ जो हैं माधुरी जी अभी भी हैं कहती हैं कि नेक्स्ट गाना उनके लिए थैंक यू परी एंड थैंक यू माधुरी जी साहिल भी हमारे साथ अभी भी जुड़ा हुआ है अभी मैं सोच रही थी कि देखो अभी हमारा जो मूड है ना उसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं और अगर ये गाना आ गया ना तो मेरे ख्याल से आप लोगों का भी मन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा
1: story but everybody will sing with me
2: okay
1: ready come on 1 2 1 2 3

0: चलो भाई एक दूजे का दिल चोरी करके चले। और यहाँ मनीता जी का मैसेज आया, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, थोड़ी बिजी हूँ, टिकटॉक लाइव नहीं आ सकती लेकिन प्रोग्राम सुन रही हूँ। प्यारी सी नीस है शिक्षा जिनका जन्मदिन है, उनके लिए गाना सुमंती, नानी सुमंती, सभी मौसी की तरफ से आरती, सचिता, बबीता, रेखा, राहुल यादव, ऋषभ, ऋतिक, अनिकेत, अक्षय, केशा, दीक्षा, श्लेषा और सबकी तरफ से उनको बहुत सारा प्यार। ये गाना प्रवीणा कुमारी के नाम, रामा, प्रीता, दिव्या, शिरीन एंड हमारे हिमेश रेशमिया। चलिए उनके लिए गाना डेडिकेट करते हैं। एंड यहाँ पर हमारे साथ भाई नाम नहीं लिखा आपने, बस सक्सेस वाइब्स लिखा है, सो आपके लिए गाना। एंड थैंक यू फॉर लविंग द सिलेक्शन दीप्ति सिंगा जी। कहते बच्चन जी, हाँ मैं बच्चन जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं श्रीदेवी जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो दोनों एक साथ एक फ्रेम में, वाव कमाल। आदेश राज भरत, थैंक यू जी, गाना आपके लिए, एंजॉय कीजिए। चलो नाम लिखा, नाम लिखा, ये है रेशमी जी। आपके पापा को तो हमने विश कर दिया, आपके पापा का नाम भी है हमारे पास, हरि सिंह चौधरी, 80 years है ना पापा जी, हैप्पी बर्थडे। एंड पूजा आपके लिए गाना
1: कह दो।

0: यही अदा तो एक सितम है। हां जी, बहुत ही प्यारा सा गाना आपके लिए हम लेकर आए। एंड चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए एक और प्यारा सा गाना, इसके साथ हमें आपको बाय बाय कहना होगा क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है अगले गाने के साथ तो खत्म हो ही जाएगा।
1: सुहाना सफर।
0: चलिए यहाँ पर हम गाना जो है डेडिकेट करते हैं आपके लिए सरोज सुनील, जी हाँ, रानी तैयब तस्लीमा सावित्री किस्नैन और साथ में रागिनी। ये गाना बेटी परीक्षा के नाम होगा। एंड हाय एबी, थैंक यू सो मच। रुकैया की तरफ से उनकी बेस्ट फ्रेंड करिश्मा के नाम ये गाना हम डेडिकेट करेंगे। और दीपक जी, आप मुझे बहुत सारे कहते हैं कि सुनील शेट्टी कहते हैं ये धरती मेरी माँ है। हाँ, मुझे पता है। चलो, विद्यानंद गोपाल आपका स्वागत करते हैं और हमारे जाने का टाइम हो गया है। कुणाल जतन आपका थैंक यू। एंड साथ में यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि अगर आप भी आरजे बनना चाहते हैं तो ज़रूर आप अपना एक छोटा सा वीडियो भेज सकते हैं, नंबर आपको हमारे जो प्रोमो है उसमें मिल जाएगा। चलिए इसी के साथ इट्स टाइम फॉर मी टू से बाय बाय टू यू गाइस, थैंक यू सो मच। और एक बार फिर चलते चलते यहाँ पर सिंगा कहते हैं कि प्लीज़ एक बार फिर मेरे पापा को आप हैप्पी बर्थडे विश कर दो ना, उन्होंने सुना नहीं। तो हरी सिंह चौधरी जी, आपको हैप्पी हैप्पी बर्थडे हमारी तरफ से, हमारे रेडियो मनोरंजन टीम की तरफ से, हमारे रेडियो मनोरंजन टिकटॉक के सभी हमारे व्यूअर्स की तरफ से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में जुड़े रहिए। इसी के साथ गाना होगा नाजिया हसन जोहेब हसन की आवाज में, फिल्म का नाम है इल्जाम। और इल्ज़ाम हम किसी पे नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर सब ने बहुत अच्छे से हमारे प्रोग्राम को आज सुना, हमारे साथ जुड़े रहे। वैसे ये वाला गाना शुरू में थोड़ा सा ज़्यादा ही है, कोई बात नहीं, आप

एंजॉय कीजिए। आप भी सोच रहे होंगे कि पापा जी के लिए क्या गाना लगा दिया, पापा जी के लिए हमने वो गाना लगाया जिसे सुनकर पापा जी खुश हो जाएंगे। आप में से कितने सारे लोग हैं जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होंगे आज, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। परी कहते ओ मामा वाला, हाँ ओ मामा ओ मामा। इस उम्र में तो हम, उस उम्र में क्या, इसी उम्र में तो हमें माँ आइयो माँ कहने की आदत हो गई है।

0: प्रदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अशिता, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार, संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। पेंशन सुधार के विरोध में बने संयुक्त मंच के प्रतिनिधियों ने कहा है कि वे अपनी आगे की रणनीति तय करने से पहले फाइनेंस बिल के प्रस्तुत होने का इंतजार करेंगे। आज सुबह आयोजित एक प्रेस वार्ता में ट्रेड यूनियन नेताओं ने राजधानी की सड़कों पर निकाली गई पेंशन सुधार विरोधी शांतिपूर्ण रैली को सफल बताया। उन्होंने 60 वर्ष की आयु से सभी के लिए 15,555 रुपए की सार्वभौमिक पेंशन लागू करने की मांग दोहराई। साथ ही उनका कहना है कि बड़े वित्तीय समूहों पर विशेष टैक्स लगाया जाए ताकि सार्वभौमिक पेंशन और उससे जुड़े अनुदानों को बहाल करने के लिए आवश्यक संसाधन जुटाए जाए। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड देश के कई इलाकों में मरम्मत का काम चला रहा है। मकसद है बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता और सुरक्षा बेहतर करना। ये कार्य मुख्य रूप से सप्ताहांत के दौरान चलाए जा रही है, जब बिजली की मांगें आमतौर पर कम रहती है। कार्यों के अगले सितंबर महीने तक चलने का अनुमान है। और कल प्लिजोंस हवाई अड्डे पर इथियोपियन एयरलाइन के विमान के आगमन के साथ मॉरिशस की अंतर्राष्ट्रीय हवाई कनेक्टिविटी और मजबूत हो गई। इससे पर्यटन, व्यापार और व्यापार आदान प्रदान के नए अवसर खुलने की उम्मीद है। अफ्रीकी महाद्वीप में विमानों की सबसे बड़े फ्लीट रखने वाली इथियोपियन एयरलाइंस अफ्रीका की प्रमुख विमानन कंपनियों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने व्यापक तबाही मचा दी है। भारी वर्षा, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण अब तक कम से कम 51 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। देश के कई हिस्सों, जिनमें राजधानी ढाका भी शामिल है, बाढ़ की चपेट में है। हजारों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। अब तक हुई कुल मौतों में आधे से अधिक एक बड़े बाजार वाले जिले में दर्ज की गई है, जहां दुनिया की सबसे बड़ी रोहिंग्या शरणार्थी बस्ती स्थित है। पिछले सप्ताह इसी जिले में बाढ़ का पानी स्कूल में घुस आने से कई छात्रों और एक शिक्षक की भी जान चली गई थी। और उधर दक्षिणी वियतनाम में एक द्वीप के निकट भारतीय पर्यटकों को लेकर जा रही एक स्पीड बोट के पलट जाने से कम 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 21 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार नौका में 32 भारतीय पर्यटक और चालक दल के 4 सदस्य सवार थे। शनिवार को खराब समुद्री मौसम के दौरान ये स्पीड बोट

0: हम बेरूत एनगुआई द्वीप से लगभग 400 मीटर की दूरी पर पलट गई। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो। चला आपके ध्यान की धन्यवाद और नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: सबको के नमस्ते प्रणाम। आज की चर्चा कार्यक्रम में फिरों से आप सब लोगन के स्वागत बाटे। जी हाँ, आज लेंदी के दिन है, तो चला एक घंटा की जो प्रोग्राम बाटे हमने बात करी लाजा खेती बाड़ी के बारे में। हमने की जोन पर्यावरण हमने से जोन जुड़ल बातें हमने की जितना खेतीहर हवन जा काहे की खेतीहर हवा कोसो माते हवा सब हमने से एकर से जुड़ल है जा। तो आज की चर्चा कार्यक्रम में आप सबन लोगन के स्वागत बाटे। आज हमने एगो ऐसा टॉपिक तैम पर बतियाब जा जोन है हमने के मिट्टी। अभी गीतवन सुनला माटी के मोल, माटी के बड़ा मोल बाते और बड़ा ही अनमोल बाते। जे एकर मोल जानेला वही जानेला कि माटी से हमने आयल है जा और यही माटी वे में हमने चल जाब सा। और जे माटी नहीं रही तो हमने के खाए पिए के कुछ नहीं मिली। तो चाहेला माटी के निमन से उकर संभाल रखे के उनकर संरक्षण करे के। तो ए पर चर्चा करे खातिर आज फिरों से हमने के मेहमान हवन फागेदानी से गो अधिकारी हवन आप हवन श्रीमान संजय सम्भू। चला इनकर हमने स्वागत करी ला जा। शंभू जी प्रणाम, नमस्ते,
1: नमस्ते।
0: कार्यक्रम में आप सबके स्वागत बाटे। तो आज हमने माटी, हमेशा हमने माटी से जुड़ल इतना चीज पर हमने बताए ला जा। आज मटिये पर हमने जानब जा काहे कि माटी से हमने के खाए के मिलेला पिए के मिलेला। माटी जोन फर्टाइल बाटे जोन उपजाऊ हमने बोली राजा दू गो प्रकार के माटी बाटे, एगो बंजर जमीन एगो उपजाऊ जमीन। अभी बंजर जमीन जो बाटे बाद में हमने बतियाब सा, पर जोन सॉइल फर्टिलिटी के बारे में ई है

0: she has soil fertility.
1: तो जब बेगो माटी में खुजब सा एगो रोपाई करे के
0: जी
1: तो जमे निमन से हमनी के पेड़ पौधा जोन बा बढ़ी फल दे फूल दे वगैरह वगैरह तो हमनी के को माटी चाहेला जोन उपजाऊ बात है जोन फर्टाइल बात है तो एक प्रकार से सकब सब बोले कि एगो उपजाऊ माटी कौन सी है वो ऐसा एगो माटी है जेकर में सकब सा खेती बाड़ी करे
0: जी
1: एक प्रकार से सब सब बोले लेकिन सही रूप से सॉइल फर्टिल एगो फर्टाइल सॉइल एगो उपजाऊ माटी का है वो ऐसा एगो माटी है जेकर में जन जीवित बातें जेकर में जीव जन जीव लोग आए मिक्रोबा और में कीड़ा कीटाणु वगैरह वगैरह सब अगर में जीवित बातें वो माटी में वो केवल अब से वो फर्टाइल सोयल उपजाऊ माटी
0: जी।
1: क्योंकि वो लोग आज नहीं रही तब माटी में और मिक्रोब सब नहीं रही तब जाके जो बोला जैसे पा बंजर जो शुरू में बोला तब गन ला अभी वो माटी में कुछ नहीं बातें एको जीव नहीं बाकर में एको माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बा कुछ नहीं बातें तो माटी तक गन ला कैसे वो बालू पकड़ ले हुआ या कोनो ऐसे सुखल चीज जैसे
0: माने कि ओकर में कुछ नहीं सकल जाए रोपाई करे
1: नहीं तो ओकर में तो एलिमेंट नहीं मिली कुछ नहीं मिली चाहे आज ओकर में एगो जीव नहीं सकता रहे तो ओकर में एगो पौधा कैसे बढ़ी ओकर में
0: तो अब तोहर से पूछती जब बंजर जमीन की बात करत हुआ तो का एगो बंजर जमीन एगो उपजाऊ जमीन सकल जाए बनाए ओकरा
1: सकल जाए हाँ चाहे जैसे बुझा सा आमा उन्मा करे के तो एगो एगो बंजर जमीन सबसे पहला कैसे जानब से एगो माटी बंजर बाते
0: जी
1: तो आज ऐसे देखब सा कोनो एगो माटी में जाब सा एगो एगो सीट में आज जाब सा जगह में तो देखब सा वो माटी देखा तो नंगा बाते
0: जी
1: अगर में घास हुए नहीं जमाता तो आज एगो एगो माटी में घास हुए नहीं जमाता तब बोलब सही तो एगो माटी बंजर बाते ये खाली देखे से एनालिसिस ने चला करी के देखब तो जान जेब एगो माटी में देखब खूब हरियाली बाते तो जहाँ तो वो माटी बंजर नहीं बाते वो माटी उपजाऊ बाते वो माटी माटी जीवित बाते ओकर में जीव बाते
0: जी।
1: अब बंजर माटी के जीवित करे खातिर समय लगी वो कहना आज कुछ करबा काल निमन नहीं हुई तो कौन सी चाहला करे के ओकर में तो सबसे पहला तो चाहला ओकर में माछे ओगानिक आने के ओगानिक माटा क्योंकि जीव जन जन जीव लोग बातें जन जीव जंतु बातें आई माटी में रहेला वो लोगों के चाहला खाए के तो वो लोग कुछ खा लन सा वो लोग जन बोल जैसा ओगानिक माटा देबरी वगैरह वगैरह जन बा ओकर पर जी लन सा ना ओके खा लन सा कैसे कैचुआ बातें तो वो जन माछे ओगानिक बा खा ला तो सबसे पहला हमने चला माछे ओगानिक आने के अब माछे ओगानिक जब आ तो ओकर में तो जीव आज नहीं आए ना
0: जी
1: तो अब परी औसनी ही जब माछ ओगानी सब डाल दिला वगैरह तब सिंचाई भी सब करवा जब माटी चला इमी दूर रखे के तो अब परी इंतजार करे के कब कैंचुआ लोग आए कब माइक्रो ऑर्गेनिज्म लोग आए तो जब माछ ओगानिक दल कैसे गाय के ओकर फीमिया दल तो गाय के फीमिया में देजा ओकर में बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिक्रोब है निमन मिक्रोब है तो जब और फिमियोवा लेके तू बंजर माटी में डाला तो फिमियोवा के साथ साथ ये जो निमन मिक्रोब बाते वो के डाला तो
0: जी
1: तो हाउ जो जीवा चाहेला मिक्रोब के तो वो लेके आना तो अब गते गते कौन चोला जब माटी बंजर हो जला तो लाहो से इसे बंजर हो जला नीचे जला तो कौन चोला कि जो जो जो चीज रहेला मटिया में तो वो लोग भागे लगे तो उसे किला नीचे चला तो जैसे नीचे चला तो अब एकदम से नीचे ले ढेर प्रॉब्लम हुई तो सकेला मरियो जाए सब
0: जी
1: तो अब माटी के जब तू रेफेयर करे लगला फीमिया लेके आके डाले लगला ओकर में आई मिक्रोब आए लगल लिमिजिते बाते हम मटिया इमिद बाते तो गते गते जो हम जी भागल रहा जितना मिक्रोब भागल रहा तो गति ले तो ले समय ले लेकिन गते गते गते गते फिर से आए लगी तब जाके माटी आए उपजाऊ हो और एगो दूसर रूप से सकबा बोले एगो ऐसा माटी के बोलब जा उपजाऊ बातें यानी कि बोले सा जीवित बातें तो एगो एगो उपजाऊ माटी में बंजर के आज उपजाऊ कर दिला तो देखबा जब एगो पेड़ पौधा रोपत हुआ तो ठीक से आए बढ़ाता ठीक से फूल होता फुलाता ठीक से फर धरता
0: तो हबी बोलला कि कैसे एगो बंजर जमीन के उपजाऊ

0: जमीन बनाई बा, पर एगो बंजर जमीन वो कैसे बनेला? जैसे बोले थे वर्कर में जोन कीड़ा मकोड़ा जोनो कुछ रही नहीं रही, तो कौन कौन फैक्टर ओकरा बंजर बनावेला?
1: ये अनेक प्रकार के है कारण बाते। एगो कारण क्लासिक ले ला सा, जैसे बोला सा किला कॉन्टामिने होगा, अंपॉइजने होगा।
0: अच्छा,
1: कैसे अंपॉइजने? सकेला गो माटी हुई, सकेला एगो एक्सीडेंट हुई, एगो एक्सीडेंट से कोनो स्पिल ओवर होगा, कोनो एगो प्रोड्यूस शिमिक कौन हो रहा है, कोई वॉलंटियरमैन इधर ले माना, मैं लेकिन आके गन लो वहाँ पर ही पड़ गल माटी में, तो हो माटी वहाँ में नेट कॉन्टामिने होगा, तो हो वहाँ के जो मिक्रोब सब बा जितना चीज रहे ला उसमें तब मर जाए। हाँ, एगो का एक्सीडेंट वगैरह से, लेकिन नॉर्मल में अब कैसे होगा? एगो देश के नाम लासा कैसे ऑस्ट्रेलिया बा, वहाँ पर ही माटी खोद बता होगा में तो निमक मिलेगा।
0: अच्छा,
1: निमक खाद कहे कि वहाँ के माटी में इतना ले खाद के प्रयोग होगा वो कारण से। तो एगो माटी में आज हमने बहुत खाद डाला सा, आबीजे कहते हैं सा, कैसे बोला सा आबीजे कहते हैं सा, हाई फैचिलिजा डाला था सा, तो गते गते तो फैचिलिजा तो शिमिक है ना, तो गते गते आज इतना ले आबीजे कहते हैं सा सही मात्रा में डालते हैं सा, तो गते गते गते गते हम मटिया एगो प्वाजों कहते हो जला। कैसे उदाहरण के रूप से सकाप सा बोले, कल एगो गिलास पानी में तनिशु नमक डालनी, तनिशु नमक डाल के घोलनी ओकर में, तो जब हम आज तनिशु पियब पिए के नहीं चला, मैं पुले खाते नहीं से बताए वो उदाहरण जो होता है पियब चाहे तो तनिशु साले बाते नमकीन बाते तो पिए ला, ओके पी ले ला, प्रॉब्लम नहीं बाते। अब हवे पंजा में डन ला हम 10 कुए 15 कुए लेके डाल के घोड़ा था, हवे लेके तो करा बोला पिए के कबू नहीं पीबा। हाँ, तो वो और आज पीबू करा था सकेला और पाजुन में कहते हो जाए, बस इतना ले कॉन्सेंट्रे बात है। तो हवे प्रकार से जब खाद जो फिर चीज ऐसे डालब सा अभिषेक करब सा, तो इसे हो जो निमक के जो कॉन्सेंट्रेशन बा माटी में वो बढ़ चला, तो जब बढ़ जला तो सब चीज़ डिबालांस हो लगेला, जितना मिक्रोब वगैरह वगैरह बा सब भागे लगे सब मरे लगे सा। अब एक अलावा ढेर चीज ऐसा बा जो शिमिको से जुड़ल बात है, कैसे कोई कोई हर्बिसाइड लेबिसिड के प्रयोग करेगा। अब एकाध गो लेबिसिड है जो उनके जो मेरा सा रेमानोस, यानी कि आज आज हम माटी में डालब एकाध गो लेबिसिड गला सकेला तीन समय 3 हफ्ता या 4 हफ्ता के बाद गला लेबिसिड के लेफे जाए लगेगा, लेकिन एकाध गो है 6 महीना 9 महीना बरिस भर ले ओकर लेफे रहेला। तो आप गल एक जनाब बा जो ऐसा ने लेबिसिड के प्रयोग करा था जो लंबा के मानोस बाते और उसकी रेपेची में हर घड़ी ओकर प्रयोग करा था, तो माटी गते गते गते गते जो जी बाते हाँ तो अफेक्टिव होता है बंजर हुई लगेला, तब देखो ओकर में कुछ नहीं जमेला
0: जी,
1: तो कुछ रोबू कर बा सकेला फिमियाओ दल्ले हुए बा, तो थोड़ा सा घड़ी खाते नहीं से मोते हुए तब देखा पाची हुए लगल मुरझा जला ऐसे हुआ। तो इस प्रकार से सका सब बोले कि कोनो कोनो पेस्टिसाइडो जन महाराज डालब सा माटी में, तो ऐसे एक रो में प्रॉब्लम हुआ। अब एक अलावा एक आगो चीज बा जो फिनोमेन नेचुरल सा हुआ, कैसे बा सुखारी
0: जी,
1: जब सुखारी आल और इरीगेशन ने बातें पानी ने बदा लेके माटी में, तो माटी तो ऊपर से अब सूखे लगा सूखे लगा सूखे लगा, तो जैसे बोलने से तो माटी तो जीवित बा ना और कितना मिक्रोब बातें, तो जब सूखे लगा वो लोगों के पानी चाहेला
0: जी,
1: तब बोलो कि पानी नहीं मिली तो लोग भागे लग जाए सा, या ऐसा नहीं को काल जो गला बहुत से वेया बात ऐसा मरे लग जाए सा, तो जब भागे लग जाए सा या मरे लग जाए सा, तो हो माटी वहाँ में तो हो गला अब जीवित नहीं बातें
0: जी,
1: तब कुछ हुई तब हुई तब बंजर हुई लगी। अब दूसरा एक आध गो फेनोमैन बा गते गते एक आध गो आदमी लोग खुशी ला अपन खेत के निमन से तैयारी कर लें फर्स्ट क्लास, तो कुछ कर लें सब घास लेके निकाल देवे लें, जब सब घास निकाल देवे तो माटी नंगा रहेला
0: जी,
1: और जब माटी ढेर नंगा रहेला तो ऊपर से सूर्य जो धूप रहेला तो मारेला, तो माटी तो अब अथी तापमान बढ़ेला जो माटी जो पानी बा माटी में एवापोरे होला, जो हवा बाते एगो हवा जब झोंका हुआ था तेजी से तब लाहो की माटी जो छोटा छोटा बात कब धूल उड़ेला
0: उड़ेला
1: अब लाहो के माटी कुछ टोपसोला वही सबसे निमन माटी है
0: जी,
1: हवा में रोपाई केला सा 20 से 30 सेंटीमीटर

0: डाला इसे टॉप सॉइल तो हाउ जब नंगा कर दिला माटी अब हवा मारी तो निमन माटी धूल की तरह से उड़ता
1: जी
0: तो निमन माटी तो और जाता तो कौन ची रहता जब माटी निमन नहीं बा वर्षा भी हुआ तब भी ऐसे हुआ निमन माटी भाई के चल दिला तो अनेक कारण बा का है जी
1: तो चलो हमने के जितना जना अभी सुना था वन जा 402-80-85-402-80-85 आर पाँच पर सक बजा हमने के फ़ोन करे कुछ हो रही आज हमने मिट्टी जन ओकर उपजाऊ मिट्टी पर हमने बतिया था जा सकेला तोहर लगे तो सुन माटी बातें रुपाई करे कि मन बा पर नहीं सकत हुआ करे सकेला कोनो प्रॉब्लम बातें तोहर जमीन जन बातें वो बंजर बातें कुछ हो रही पूछा हमने के मेहमान हवन श्रीमान संजय शंभू तो 402-80-85-402-80-85 भाई संजय हबी बोला कि फर्टिलाइजर के मानी कि पेस्टिसाइड के इस्तेमाल होला तो एक से जितना इस्तेमाल करते जाएबा हमने की जो माटी बातें ओकरा अफेक्ट करता और वो बहते फर्टिलाइजर के बाद जब करत हुआ तो जब फर्टिलाइजर के बाद करत हो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर सबसे आगे चाहेला जाए कि दुगो अलग चीज़ है हाँ
0: दो अलग चीज़ है
1: जी
0: फर्टिलाइजर में तो मिनरल्स मिला मिनरल मिला खाए के मिलेगा
1: जी
0: तो जो पौधा लोग बा जब खाद के फर्टिलाइजर के माटी में डलबा तो जब सिंचाई करवा या पानी बरसा या माटी में निमिजते बातें तो वो जो फर्टिलाइजर पिघल डाला पिघल के कुछ सोल्यूशन हो जाला
1: जी
0: तब घासन जो जर बा जरी बा तो वो तू तक मुँह ने माना खाए के तो सोल्यूशन में हिंचेला
1: जी
0: तो जब हिंचेला पानी के तो वो सोल्यूशन को हिंचेला तो जो खाद में जो एलिमा रहा तो मिलेगा खाए के
1: सकब सब बोले फर्टिलाइजर जो बातें माटी के उपजाऊ बनावेला
0: नहीं माटी के बिल्कुल उपजाऊ नहीं बनावेला फर्टिलाइजर सिंथेटिक केमिकल है ओकर में एक आधगो मिनरल्स बाटे कैसे एन पी का मैग्नीशियम बोरॉन माइक्रो एलिमेंट सब ओकर में बाटे डिपेंड कौन फर्टिलाइजर से प्रयोग कर लो जैसे बोली गन्ना गन्ना एक मुठा खाद लेके तू एक जगह में डाल लो
1: जी
0: तो एक मुठा खाद हुआ जब सिंचाई होल तो पिघली ओकर में से हो खादवा में से सकेला आधा आधा से ज्यादा सकेला डिपान कौन खाद प्रयोग हो रहा है आज नाइट्रेट बेस रही था सकेला वो ले में वो जाए चल जाए बोला चिली हो जाए अब जो बचल वो माटी में गल एन पची धुआ के चला तब एन पची खाली हो जो जर बात है वो हिंची लेकिन जहाँ पर दल्ला हो एलेमावा वो एलेमावा तो हुए परी बा अब जब हो एलेमावा हुआ परी बा तो वो खाली जन जरबाओ की हिंची ये तक वो माटी में एको कॉन्ट्रीब्यूशन ने करी जीव जंतु लोग के आने के हाई हाई ये कर में फर्क बात है
1: जी
0: फिर चीज जन बा वो तो हर वो खेत के ज्यादा जीवित नहीं बना वाला खाली को एलिमा दे होता
1: जी
0: हाई तोहरा खाई खाते कैसे तो एको विटामिन ले बा
1: जी
0: तो होगा सप्लीमेंट नियन हो जाए जिसके आप पेस्टिसाइड्स की पूछ रहा वो केमिकल्स गंदा कुछ के मुआई के
1: जी
0: कैसे मारू घास के मुआई के बाद एबिसिड के प्रयोग करवा कीड़ा के मारे के बाद या बीमारी के से लिपटे के बाद तो ऐसे चीज या फोजिसिड के प्रयोग कर
1: अच्छा एक जना हवन उनका से हमने बताया आप जा हेलो
2: हेलो वी
1: नमस्ते
2: हम पहुंचो बीमार है ला
1: बोला भाई नमस्ते
2: नमस्ते
1: नमस्ते हाँ बोला
2: हेलो
1: हाँ बोला सुना था जा
2: हाँ थोड़ा प्लांटेशन बैगन कर ले रही गांचियन फरे लगे तो सुखा जाला
0: हाँ अच्छा
2: गांचियन सुखा जाला सब नहीं सुखा ला
0: हाँ
2: वो पौधी सुखा जाला और वो एकाद गोड़ा जाला
0: हाँ
1: एकर कारण
0: हाँ एकर में जहाँ तो सब माटी वे में से आवेला ता जन हमने के जन खेती बाड़ी करी ला जा जन सब्जी खाए ला जा ओकर में से ओकर में एक आध गो वंचन जन बहुत ही कना नाजुक रहे लंसा
1: जी
0: ओकर में है बैगन तब बैगन कुन चुला जब रोपाई कर बा तब दिखबा खूब हरा रहेला बड़ा होला लेकिन ये जन भैया बोला तो ये समस्या ये खास कर आवेला जब फुलाला या फर धरेला तब होला तो ये कारण कुन छा उस समय जब बैगन के जो पौधा बाटे फुलाता फर धरता उस समय हो जो डेवलपमेंट प्रोसेस बाटे बैगन के ओके भी ऐसा वेरी एनर्जी डिमांडिंग है तो उस समय वो जितना कर

0: okar
1: la fusion bate u dalata u poita dalata pulai khatin aur phade khatin aur how is amai stressé hogal kono prakar ke stress al us taki mati me pani ke stress hol us taki jan kheti har bate sakela earthing up karta mati chadhawa ta ya kono tarah ke stress al ta debalance ho jaye वो कारण सूखे लगे ला
0: तो हमने आशा करे थे जब भाई जी की उनका सवाल
1: उस समय चला वो सब आई माटी ने चढ़ाई के चला माटी की स्ट्रेस ने कराई के जितना लिमिट जितने चला उतनी ही आई ज्यादा भी नहीं चला डाले के पानी कम भी नहीं चला डाले
0: जी जी और लोगी एग्रीकल में सब मिले
1: ला हां सब मिले ला
0: वेबसाइट पर भी जो बातें मिले ला भाइयों तो हमने मांग कर अब जा जे कुछ जाने खोजत हुआ और तो देखिए लोगी एग्रीकल एक और जना हवन हेलो हेलो
2: हेलो बहन जी
0: नमस्ते जी
2: नमस्ते भाई जी नमस्ते बहन जी
0: बोला जी नमस्ते
2: हम आप तीन गो के शो बा
0: बाप रे बाप तीन गो
2: हाँ देखा पहला क्वेश्चन ये है काहे चाहेला हमने के लाते मिजेते में फूल या कुछ भी रोपे की दूसर बा जे तीन दिन के बाद कि चार दिन के बाद चाहेला को कुछ प्लांटों में पानी डालेगी और तीसरा जो है जे काहे मट्टी के चाहेला आग में भूंज के तोल में डाल के चूल्ही बना के भूंज के वो मटिया में डाले की हाँ ये हम जाने खोजे थे काहे अंतर बे इतना
1: तीसरा तीसरा फिर से बोला था तीसरा कौन सा
2: तोल में लंबा तोल में नीचे आग डाला और मटिया के खूब भूंज भूंज के छोड़ दा और कैसे भी बेचा था ना मट्टी पर पागे करा हाँ,
1: हाँ, अच्छा,
2: सब हम यही जाने खोजे थे काहे इतना अंतर बा
1: अच्छा सबसे पहला बोला काहे को माटी के चला इमिद रहेगी जहां तो जैसे अभी शुरू में बोलनी एगो एगो पौधा के एगो पेड़ के ओकर जड़ी रहेला जड़ी माटी में बाते जन जड़ी बाते हमनी कलिते जानवर की जानवर कलिते ओ लोग के मुँह ने बाते खाए के तो वो लोग कैसे खालन सा वो लोग के जन जड़ बाते ओकर में दिखबा आज एगो एगो कैसे एगो लाके जोयों के कबर बा दिखबा ओकर जड़ बाते खूब फिन फिन रहेला उज्जर उज्जर रहेला तो हवे द्वारा वो लोग खालन से तब कैसे खालन सा जड़ियों के तब उन्हें बातें तो वो कुछ कहला वो खाए के अब्सोर्बे कहला उस सोल्यूशन के रूप में ले वेला तो जब एगो माटी में तो खाए के रहेला ना एगो माटी सूखल रही तो के तब पानी नहीं मिली पिए के घासीनुआ के जब पानी नहीं मिली भाई घासीनुआ के पिए के तब खाइयों के नहीं मिली आ जब एगो माटी में लिमिजते रही तनिशन पानी रही एक्सेस पानी ना जाए लिमिजते बातें तो जो खाए के बातें माटी में तो वो लिमिजते में मिलल मतलब मिलावल बातें एगो सोल्यूशन के रूप में होगा बात जब घासीनुआ जो जड़ी बातें अब जब हो पानी हिंची वो अपन पिए खातिन तो साथ साथ सोल्यूशन के रूप में जो खाए के बा माटी में वो भी हिंच देवेला तो वो कारण चाहला वो माटी के इमिद रहे के हाई एगो दूसरा चीज बोला कौन सा दूसरा चीज
0: चाची
1: ये हुआ कि चल गया
0: अच्छा
1: अच्छा तीसरा चीज रहल तीसरा चीज रहल माटी के भूंजे के
0: जी
1: हाई वो हाई हमने जाता ले
0: पहला
1: हम सुन ले हाई लेकिन देखा हम थोड़ा एगो दूसर एगो योजना है समझाएला माटी के कैसे सुलागिजाशन कर देला
0: मतलब
1: सुलागिजे सावेजे धूप के किरण से माटी के ओकर तापमान बढ़ा के जन कीड़ा कीटाणु बा के मारे के
0: हयो होला
1: हाँ तब हमर हमर ख्याल से शायद है जन भुंजे के बुलाता शायद कोई निकते बातें लेकिन है भुंजे के हमने जानी ला तब कुछ कहला सा माटी के एगो प्लाज्मान बनेला तो इत हाउ गन्ना माटीवा में जब कुछ सेमे कैला कुछ है बीज डाले ला ओकर में तब बीज उठ के तब देखा तब मर जला तो एकर एकर कारण बाकी शायद माटी में है अनेक प्रकार के शायद बीमारी वगैरह ओकर में हो कैसे पिचम बाते वगैरह वगैरह बीमारी के नाम है तो कैसे लिपटे खाते हैं जन जैबा एगो फौजी फौजी डाले रासायनिक रासायनिक पदार्थ डाले तो सबसे सहल सबसे सरल चीज बा हम हो प्लाटबनवा के एगो एगो प्लास्टिक से ट्रांसपारेंट प्लास्टिक ट्रांसपारेंट से जन बेचाला लेकिन ढक दिया ढक के ओकर चारों ओर ओके कना एमेचिक कर दिया फेमे कर दिया ओकर पर पत्थर माटी वगैरह वगैरह चढ़ा दिया चारों ओर जब ओकर में धूप मारी

0: तो जन प्लास्टिक के नीचे जन माटी बा तो कहता तापमान बढ़ी तब देख बा तरे में ट्रांसपिरेशन गुटले पानी सब बाते क्योंकि माटी तो ट्रांसपिरे होता ना एवापोरे होता ना ट्रांसपिरे नहीं सॉरी एवापोरे होता लेकिन क्योंकि वो प्लास्टिक बा कर में तब हो पानी नहीं सकता बाहर निकले
1: वो
0: पर ही हाँ ट्रैप बाते तो हाई से जब हफ्ता दो हफ्ता तीन हफ्ता से छोड़ दिला तो ओकर तापमान जब बढ़ी बढ़ी तो जन कीड़ा कीटाणु लाहू में मटिया में बा तो मर जाला तब सब अपन प्लास्टिक निकाल के तो ओकर में माछे ऑर्गेनिक डाल के बीज ओकर में सेमे करे तब जाके तोरा निमन से हो जेमिनाशो हुए
1: जी हुए हाँ। तो हम आशा करे थे जा जो न चाचे होवन उनकर सवाल के जवाब मिल कर बाटे एक और जना होवन नए का दे बोले था नहीं होवन तो चल हमने के साथ दिया जा आज हमने माटी जो उपजाऊ माटी है सोल फर्टिलिटी के बारे में बताया था जा एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक के बाद वापस आएला जा

0: बहुत बहुत धन्यवाद हमने संगे जुड़ल हवा माटी के मोल कार्यक्रम तो नहीं बा लेकिन हाँ माटी के मोल हमने बात कर रहे जा जब सॉइल फर्टिलिटी है और अभी एगो चाची पूछलन कि माटी के बुंझाल जाला अभी लेक हो प्रश्न हुआ हमारे दिमाग में बातें भाई शंभू एक बारे में तनु सुनो और कुछ बोल बा
1: हाँ हाँ जैसे आगे एगो उदाहरण ले सुला जाशो हाँ और एगो चीज बा जो किसान लोग सक्यान जा करे वह जब कैसे योगिक फार्मिंग वेला जा
0: योगिक फार्मिंग जैविक फार्मिंग तो जानिला
1: हाँ योगिक फार्मिंग एक वो चीज बा ओकर नाम हो अग्निहोत्र अग्निहोत्र अग्निहोत्र ता ओकर में सूर्य देव के पूजा कर ला ता ओकर में एगो मंत्र भी बाते और जन चीज जन जलाए ला जा
0: जी
1: गाय के जन गोबर रहला एगो केक की तरह रहला ता ओके एगो मंत्र के साथ जन जलाए ला जा तो ओकर राख जो मिलला सकब जा साथ में लेके एगो पानी में डाल के छोड़ के तब फिल्टरे करके तब ओके अपन पेड़ पौधा पर सिंचाई करे या फिर माटी में डाले
0: अच्छा।
1: वैसे ही सकब जा कैसे कबो हमने के जन मिला सा आश जो आसान मिलला हाउ सकब सा प्रयोग करे
0: जी इधर निमन बात है कितना चीज हमने आज जान ली जा तो चलो 402-80-85-402-80-85 पर कुछ पूछे के बाद माटी से जुड़ल भाई शंभू हवन तो हर प्रश्न के जवाब दिए एगो प्रश्न हावेला है जा परी जब हमने रुपाई करे थे जा खेती बाड़ी करी ला जा आजकल ढेर हाइड्रोपोनिक्स हमने देखा थे जा सगरो सगरो बातें तो हाइड्रोपोनिक्स में वो लोग फर्टिलाइजर इस्तेमाल करी ला तो हौजा के माटी जिन बातें फर्टाइल बातें और कई जना जो बातें जो हाइड्रोपोनिक्स प्रोडक्ट्स के बातें वो लोग के बोले ना जा आज वायु एक बारे में कुछ बोलो
1: दोनों गलत बातें
0: कैसे
1: सबसे पहले तो हाइड्रोपोनिक्स में जैसे बोला जा वह सॉइललेस कल्चर तो सॉइललेस कल्चर में तो पहला तो माटी में नहीं रुपाई होता
0: जी
1: हाँ तो हाइड्रोपोनिक में कैसे रुपाई होता या तो फिर जो जैसे बोला साख कोकोपीट में कोकोनट कॉयर बाग्स में हाई एगो या फिर दूसरा एक्वापोनिक के सिस्टम में पानी से किले होता तो ओकर में जो पौधा बात रखल बात ओकर रुपाई होता दोनों में यानी कि सॉइलेस कल्चर में जैसे तू ही बोला फर्टिलाइजर डाल लाता जैसे शुरू में बोले नहीं था एगो एगो एगो उपजाऊ माटी कुंचा एगो माटी जो जीवित बात
0: जी।
1: जो में जीव बात कोकोनट कॉयर बाग्स में कौन जीव बात है तो नहीं बा जो एक्वापोनिक होता होता चियो में बात है में कौन जी बात है नहीं बा जितना चीज हाइड्रोपोनिक में बा सब सब आर्टिफिशियल कोकोनट कॉयर बाग में कुछ नहीं बात है आज फर्टिलाइजर नहीं डाला जाए कुछ में नहीं हुई एक्वापोनिक में आज फर्टिलाइजर नहीं डाला जाए तो एक पौधा ओकर में नहीं बढ़ी तो ईगो कैसे बोला सको भ्रम है कि हाइड्रोपोनिक फर्टाइल वगैरह वगैरह ये सब नहीं है
0: अच्छा
1: बिन फर्टिलाइजर कल आज कल आज एगो एगो दुविधा हो एगो समस्या हो बाहर गनल हमने हमने के जो फर्टिलाइजर मंगाएला सब बाहर से कोनो ओकर में समस्या हो गल पहला सेक्टर जो आज आफेक्ट हो वह हाइड्रोपोनिक क्योंकि वो 100% फर्टिलाइजर खाद पर निर्भर करेला
0: जी
1: है एगो दूसरा बोला बियो हमरो देखले है एक आध जगह में हाइड्रोपोनिक के ओकर जो फौजी बात है राप कर पोमनामू बात है वगैरह बकेट में ओकर में डाला सब फौजी नेचुरल एक आध जगह में फौजी बियो सब बा ये भी गलत बात है सबसे पहला आज फैचिजा साइड चिक के प्रयोग होता हाइड्रोपोनिक में तो यहीं पर तो नहीं सकेला बियो रहे क्योंकि उतर साइंटिचिक का ना शिमी का ना तो यहीं पर ही तो भांडा पूज जला ना नहीं नहीं नहीं छावा एक बोला जैसे बोला सा एगो मिसलीडिंग मार्केटिंग एगो इलिसिट मार्केटिंग
0: कॉन्ट्रावेंशन कुछ बाय कर बारे में कई की हाँ, जैसे बोले तो वो बियो नहीं बातें पर बियो बतावल जाता
1: हाँ तो जन यानी के जन ऑथोरिटी हो जन इंस्पेक्शन करेला जन जन यानी के खाए के चीज बेचाता जन लास्ट के अफेक्ट करेला या जन मार्केटिंग जैसे बोली मिसलीडिंग मार्केटिंग होता तो सब ऑथोरिटी बात जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन वगैरह सकेला हुई तो वो लोग के चलान देखे के तो एक में और एगो चीज देखा कैसे खेलन था

0: शब्द से हम तो के काल कोनो प्रकार के एगो पोमनामो बेचब तब बोलब देखा लिख दे भोजू नेचुरल कुछ नहीं सक बकरे का है तो सच्चे के नेचुरल ना प्लास्टिक नहीं है ना
1: नेचुरल तो बा
0: लेकिन शब्द के जो प्रयोग करवा नेचुरल
1: तो जब तो जब
0: इंटरप्रेट करवा तो ये नेचुरल लिखवा बी यू सके लाओ
1: माने कि इमे कुछ ना डालर कर बातें
0: हां ऐसे देखा कैसे शब्द से खेले लंचा तो हाय सब हमारे देखे मैं हिसाब चीज जहां नए डाले के ये सब के जहां बांध आए एगो रिस्ट्रिक्शन डाले के कि ऐसा नहीं शब्द नए चांगा प्रयोग करे के और जो जे बी यू डाला था तो उतना जस्ती खराब बात है
1: जी
0: क्योंकि फर्टिलाइजर के प्रयोग पर नहीं सकेला बी यू रहे बाहर में लेकिन इसे एगो दोस्त पामर से शहर में वहाँ पर ही इधोपनिक करा था लेकिन वहाँ पर ही इधोपनिक करा था लेकिन उनका जो खाद बहु खाद के प्रयोग नहीं करेला वो जो वो वर्मी कंपोस्टिंग करेला जब वर्मी कंपोस्ट से जो लीचे तावेला जो सोल्यूशन मिलेला हवे जिलिए करके विदा करेला अपन सिस्टम इधोपनिक में यानी कि ओकर जो एलिमेंट जो खाद प्रयोग करा था वो नेचुरल
1: नेचुरल बात है तो चलो जो काम करवा ईमानदारी से करवा
0: ईमानदारी से करे के
1: जो चीज करत हुआ जो कुछ डालत हुआ तो चाहे ना जाने के चाहे ना लिखे के अब हम निजाब सा खेत में ढेर जना ढेर खेतीहर वो लोग अपन खेत की जब तैयारी करत हुआ जा उपजाऊ उस सब करत हुआ रोपाई करत हुआ जा तो अर्थ वर्म्स मान की लेवे है ना लेवे वो सब कैचवा वो सब लौकेला तो वो सब देख के वो लोग के कौन चीज बुझाला डेरा चालन सा ई कौन चीज चाहेला करे कौन चीज है एकर उचरीते कौन चीज एकर लेपोतोस कौन चीज है माटी में
0: सच्चे के ढेर कोई कैचवा के देखेला या डेरा चालन सा या सोचेलन जा कि हमारे खेत में कैचवा बा हमारे हमारे जन सब्जी बाओ के खा ले बिल्कुल ऐसे नहीं बाते जब तक कैचवा बाते तो हर माटी में ई एगो संकेत करता कि तो हर माटी उपजाऊ बाते
1: अच्छा
0: देखा जन कैचवा बाते वो एगो जन माटी में माचे ओगानिक ने बाते वो वहाँ कबू नहीं रही सबसे पहला ये तब एगो कैचवा देखला माटी में तो एक संकेत था कि तोहर माटी में माचे ओगानिक बाते तो अच्छा चीज बा हाँ एगो दूसर चीज हाँ जन कैचवा बा वो तो माचे ओगानिक ओकरे चला खाए के ना
1: जी कौन चीज खाला माटी में
0: सब खाला माचे ओगानिक डेब्री वगैरह जन नेचुरल से बोला जाए सा वो बा खाला जो माटी में मिलेला लेकिन जब खा के जब निकालेला तो वो तो एगो कंपोस्ट काफी नहीं करते तो हाथ दे होता तो देखा कैसा निमन काम कर रहा था तोहर का दिन तो यानी कि हमने के पेड़ पौधा लोग के वो एलेमो दे होता दस्ती काफी ने और लोग के एकदम प्रयोग कर दिया हाय दूगो तीसरा चीज कैचवा माटी में रहे खाते तो वो तो एकदम से एक एक जगह में नहीं रहेला ना
1: जी।
0: तो चलेला चल जब चले लाता जिसे बोला सर जब टनलिंग कर रहा ना
1: जी
0: हाँ जब टनलिंग कर रहा था कौन चोता आयराशो में रहता क्योंकि हम जन जन जर बा ओके चाला ओके चाला भी आए रिस्पिरे करके ओके भी आए चाला रिस्पिरे के जिए के हाँ तो आज ऑक्सीजन नहीं मिली ओके तो
1: नहीं जी
0: हाँ तो देखा कैचवा कैसे हम हमने की सहायता कर रहा था आए आशो माटी में लाओ था तो कैचवा संकेत करता तोहर तोहर जन माटी बा उपजाऊ बा ओके संगे दिराए के नहीं चाहला ओके मारे की भी नहीं चाहला ओके चला छोड़ दे के
1: जी तो चलो जितना जना अभी कैचवा देखा तो वह अपन खेत में अपन कारों में बातें तो ओकरा उठा के नहीं फेंकिया वो तो हर माटी के बढ़ियार बनावे के मदद पहुंचा हुआ था। अच्छा आजकल हमने टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे जय शंभू जी और हमने ढेर जाने मेकानिजेशन ढेर हुआ था क्या कि मैदेव के प्रॉब्लम बातें आजकल खेत में जहाँ जैब देखब तो जो ताकते वो सब बातें हमने के माटी के जैसे बोली ला जा प्लाउइंग करें ना तो एक बारे में तनि सुन बताओ माटी खातिर अच्छा है कि अच्छा नहीं है

0: जी की बात कर रहे थे जय शंभू जी और हमने ढेर जाने मेकानिजासू ढेर हो था कह कि मैदेव के प्रॉब्लम आते आज का खेत में जहाँ जैब दिखब तो जो थकते वो सब बातें हमने के माटी के जैसे बोली ला जा प्लोइंग
1: प्लाउइंग
0: प्लाउइंग करें सब तो एक बारे में तनि सुन बतावा माटी खातिर अच्छा है कि अच्छा नहीं है
1: बातें तो सब अब माटी अब एक्सपोज है बात धूप में तो जो निखो बा कुंच हुए तो माटी में से जो निमिचते बा कुंच हुए सब एवापोरी हुई लगल तो जन जन जीव बातें तो भागे लगे तो जैसे नीचे जाए लगी तो हायो हायो हुला हवा बातें जैसे बोलनी शुरू में हो जन धूल कहते रहला तो उड़ेला तो माटी के जब बीने कर देला एकदम से फिन वगैरह सब माटी के ऐसे छोड़ दिले हुआ तो वो देखो हवा में लगता ऐसे धूल ऐसे उड़ा था दिखा था लाहौ के मटिया को धूल हुआ टॉप सॉइल ऐसे उड़ा था ऐसे चल रहा था खूब ऐसे तैयारी कर दिले हुआ तूफानी मौसम के समय चला बा तूफान आल तो क्योंकि सब माटी खुल गलवा कसी जब मशीन पास हुआ खुल गलवा ना तो जब एक बार आए तो कुंच कला सब माटी लेके चल जाए तो ये कार्य नहीं था हमने कि जहाँ तक हो सकी हाँ देखा हम नहीं बोला था नए चाहला करे के क्योंकि कम करवा के कम ही बातें तो आज पढ़ी करे के तो पढ़ी करे के लेकिन हम बोलिए जहाँ तक नए चाहला करे के तो नए करिया कैसे एगो माटी में गनला दरी एगो सब्जी बा जन दरी से होला दूर दूर में रोपाई होला तो उस अखबा ओकर में ओसन एगो माटी में एगो तोंदेज की तरह पासे ओकर में चला दे
0: जी।
1: तो जितना घास पाता नीचे से काट दे ना तब दरी कर दे बा तब दरी दूर दूर में अपन जन जिस तरह उस बाई एक मीटर में या दो मीटर में वगैरह वहाँ पर ही तुरू करके खोद के तब वहाँ पर ही अपन रोपाई कर देबा तो इसे माटी के नहीं हिलैला तो इस प्रकार से तोहर माटी भी सुरक्षित बातें ओकर में घास बातें ऊपर से धूप ने मार ओकर में नहीं मारता वगैरह वगैरह।
0: अभी धूप के बात कर रहे थे अभी सांस में लेता हूँ कि हमने बात कर रहे थे जब जब मोटका पानी आवेला हमने कबू कबू देख लीजा कि कोनो कोनो कारों में खेत में जो पानी बा ऊ रमासल कर बातें ऊ जो बातें और कोनो कोने में ऊ जैसे हम बोली ला सब हाँ भीतर चल जा हाँ
1: एक में हवे है मेकानिजेशन वगैरह से जुड़ल बातें आगे हाउ आगे जो बोला था नहीं ऊपर ऊपर और एक चीज बोल दिला है जो टेक्निक बोलनी कि जो माटी के सब नए काम करे ओकर में नए हिलाए खाली जहाँ चाहे ला हुआ अपन दरी करके बना अपन दरी कोड़ के वहाँ रोपाई करिया एक नाम है मिनिमम टिलेज
0: जी
1: है एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में कनाला मिनिमम टिलेज अब एक दूसरा जीरो टिलेज ये भी है तो जीरो टिलेज में माटी के बिल्कुल भी नहीं कोड़ा डाला माटी के ऊपर जो माचे ऑर्गेनिक बा सूखल पत्ता बा वगैरह वगैरह डाल के एको एको बिस्तर की तरह बनावल डाला तब हवे में पौधा वाला डाला तो माटी में नहीं कोड़ा तो ये जीरो टिलेज होगा अब मिनिमम टिलेज में जहाँ खाली चाहेला वहाँ कोड़बा इस सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में है तो माटी के सुरक्षित रखे खातिर अब जब थकते पासे हुला जब बड़का बड़का मशीनरी बा तो भारी देला ना जब पासे हुला तब माटी के कॉम्पैक्शन कर लन सा पासे माटी दबता एगो दूसरा चीज एगो एगो चीज है फाइन दी कोकिंग यानी कि जो माटी में हो छोटा छोटा पत्थर तो बड़का निकल ही जा निकाल जाता तो यहाँ पर फाइन दी कोकिंग जो पीटी पीटी छोटा छोटा पत्थर बा ओके भी निकाला जाता तो जब भाई सब निकाल दिला छोटा छोटा पत्थर वगैरह तो कुंची लगा
0: बोतोस बात है ना
1: लोगों के लिए पहुंचा तो जब कुंची होगा तो खाली जन माटी लगलवा हवे लगलवा अब ओकर में मशीन पासे होला
0: तो सुपो नहीं रहेला माने की अंदर
1: जस्ट इको हां कॉम्पैक्ट होता अब जस्ट इको कॉम्पैक्ट होगा जब पानी बरसल जब वर्षा हो तो कुंची हो और जितना हो माटी बा पहले तो पत्थर वगैरह रहल तो पत्थरवा गला एगो गांपा के तरह माटी से की ढूके
0: जी
1: और जब खाली माटी बातें तो सब तक लाकुल की तरह गना कोले हो गलवा ऐसे चिपक गलवा सब तो जब पानी बढ़ सका तभी तो लौकेला लाहो में बासे हो जाता क्योंकि नीचे अंदर नहीं जाता
0: जी। तो कबो कबो हयो देख लीजा कि कबो कबो पानी जब बरस गल बाते तो कोनो माटी दो तीन दिन बाद ही ऊ सूख गल बाते क्रैक होए लगल बा जबकि दूसर लगे हमार पड़ोसी लगल ओकर माटी जो बाती मॉइस बाते वो कैसे
1: हाँ तो ये हो खातिर धूप भी चाहला तगर ना वर्षा हो जैसे बोलला दो तीन दिन बाद देखो तो माटी सूखे लगा क्रैक हो लगा कैसे होला जब माटी में पानी बरसल तब भीगा रहल इमिद रहल

0: अब ओकर बाद जब धूप निकलल सूर्य आल तगनला इसी वजह से हॉडसन जैसे गर्मी के मौसम में तापमान भी ज़्यादा बा 30 डिग्रीज करता वगैरह तब या ज़्यादा 34 वगैरह ऐसे करता तो माटी जो बा ओकर में जो निमिजते बा तो इवापोरे हो लगा इतना ले गर्म करता अभी कोई पानी बचा अभी एक कुछ पानी आ गए होगा एक कुछ आ गए होगा रुक गल अब खाली धूप बाते तब तक इवापोरे होता इवापोरे होता इवापोरे होता जब इवापोरे होगा तो जब माटी अब देता देता से हुए इमिट माटी थोड़ा सा संगे रहेगा तो देता से हुए लगा तो जरा वही हो लालिन
1: क्रैक
0: हाँ एक रेखा की तरह लगे ऐसे निकल क्रैक हो जाएगा तो है आज ज्यादा सिचुएशन बिगड़े स्थिति बिगड़ते जाए तब तरह जैसे फिल्म में लगे ऐसे सकड़ो ऐसे लालिन बा फाटे लगल ऐसे तरह लोग की अब कोई लगे जैसे बोला अच्छा से बोला कोई लगे सकेला माटी फाटे थे कोई लगे शायद नहीं फाटे थे अभी ले इमिन बातें तो दोनों माटी में तुलना करब तो कहाँ पर ही अंतर बातें तो जो माटी अभी ले इमिन बातें ओकर में जस्ती माचे उगाने की बातें जो माटी में माचे उगाने की नई बातें तो वो सुखारी से जस्ती प्रभावित होलन सा
1: अच्छा
0: क्योंकि हम माचे उगानिक में ओकरे होल ओकर कैपेसिटी बातें लिमिटे के चिन्ही करेगी
1: जी
0: जो माटी में माचे उगानिक नई बातें तो कब नहीं सकी पानी के चीनी करे रखे
1: माने के कड़े धूप जन बातें घामा जन बातें और मोटका पानी दोनों हमने के माटी के खाली निफास बातें
0: हाँ ढेर पानी रहला तो अंगोजे हो जला तो पानी से गला जमा हो तो उसे तो जड़ी जन बा तूफे हो लगी नहीं सकी रेस्पिरे करे तक समस्या बातें या फिर बारूद रहता ढेर पानी बातें तब कुछ हुए और निमन माटी लेके जाता धोआता जैसे जैसे लाबू पानी जाता कीचड़ सब लेके जाता तो मैं धोआता आई ढेर पानी
1: जी।
0: पानी नहीं बाते तो सूखा था जब सूखा था तो जड़ी के नहीं मिली लिमिजते शुरू में जन बहन सोने के लिए रहा तो बोलते से ना काहे लिमिजते के लिए पोता काहे बाते बस की जड़ी के था खाए के मुँह ने माना सुरेशों में ले तो देखा हाई बातचीत में एक और संकेत होगल कि एगो माटी जन हाली फाटेला ये संकेत करेला कि वो माटी में माचे उगाने के कमी बात है
1: तो जब रोपाई करत हुआ तो कितना मेद सोच में चाहेला एगो माटी के ऊपर रखे के और हमेशा हमने सुनने है जा कि चाहेला कानाल सब बनाए के जी मोटका पानी आए तो हो पानिया में तो कितना जब रोपाई करत हुआ मटिया जो सोच में कितना चाहेला ऊपर रहेगी
0: ऐसे बोला सा कि जो 20 से 20 सेंटीमीटर तक वो हमने के टॉप सॉइल है सबसे उपजाऊ माटी है
1: जी
0: लेकिन 20 एगो लगभग एगो एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है सके 30 सेंटीमीटर ले चल रहा है लेकिन जैसे नीचे जाए तो उपजाऊ नहीं रहेगा अब काहे लाहो के माटी उपजाऊ रहेगा
1: जी
0: क्योंकि जब माचे उगाने का अनुभव तो कहाँ पर डाला सा ऊपर डाला सा ना खेत में आज मिलाई भी करब सा पियूष लेके आज बीने करब सा या एगो होते बात या पास करते लाहो में बीने होता ना तो माचे उगाने का लाहो में तो लाहो टॉप सॉइल ले ला अभी को जंगल के ले ला
1: जी
0: एगो जंगल में उतना हरियाली रहेला उतना जानवर रहेला जब पत्ता गिरेला पेड़ गिरेला एगो जानवर मर जाला कहाँ गिरेला माटी पर ऊपर गिरेला तो सर के कहाँ पर ही रहेला माटी के ऊपर ही रहेला तो वो कहते हैं ऊपर की जो माटी है वो सबसे उपजाऊ रहेला
1: पर एगो हैजा पर ही हमने सोची ला जा जब बोले ला जा जे गासिन में सब कुछ मिलेला गासिन हुए से तो सब कुछ होवेला पर अभी बोला था वह टॉप सॉइल चाहेला जो ऊपर की
0: सब्जी वगैरह के जब देखी ला सा के जो जड़ी बातें उतना नीचे नहीं जालन सा जितना पौधा बातें कैसे लाके जुयो के लिए लेबा कितना नीचे जाए इतना लगभग नीचे जाए 10 सेंटीमीटर वगैरह जाए एगो जजाम ले लेबा एगो जड़ी कोड़ ले हुआ जजामा के जब आज कोड़ के दिखबा जब बड़ा हो गलबा तक जड़ी कितना बहुत नहीं रहला तन दे दूर नहीं चला तो सब्जी खाते 20 से 30 सेंटीमीटर तक ये हमने के फर्टाइल जोन है अब जन जन पेड़ रहला वृक्ष रहला अब देखा वृक्ष के दो तरह के जड़ी है एक हुआ जन सीधा नीचे चला
1: जी
0: वो टापरू सिस्टम नीचे चला तो वो जस्ट खास खातिन कामे आवेला खंबा की तरह भूखा गलवा एगो दूसरा की वो नीचे चला पानी भींचे
1: जी
0: क्योंकि लाहौर में पानी नहीं मिली ना, अब सोचा एक

0: लेकिन ऊपर में रहेगा।
1: तो चलो अभी इस सब पर हमने बतिया ली जा, अब चाहेला जाने के हमने की जो माटी के सुरक्षित रखे के ओकरा फटाल रखे के कौन चीज चाहेला करे के।
0: हाँ, तो सबसे पहला कब्बू अपन माटी में माच उगाने की कमी नहीं हो दिया
1: जी।
0: आज घाटे कर दिला तो तुम्हार माटी गला शुरू कर दिला अब बंजर हो के। हाँ, तो हमेशा चाहेला माच उगाने डाले के। अब माच उगाने देखा अनेक प्रकार के है, सकवा जा गाय के फीमिया जैसे हम हमेशा बोला सबसे बेस्ट है, हो मिली तो डाल दिया, नहीं मिली तो सकवा कोम्पोस्ट करी। खेती हर होता जितना घास सब तुम्हार कारों में बाप बुझिया में सकवा अपन से घास रोपे, अपन से
1: जी
0: सकबा निमन निमन घास रोपे बोझिया की तरह, कैसे लेबिए बाले जैसे बोला सकवा माला वगैरह बा तो कि सकबा तब काट काट के रख दे एक कोना में कोम्पोस्टी हुई खातिन हाई खेत में घर पे सब बचा अपन किचन वेस्ट के लेके ऑर्गेनिक किचन वेस्ट लेके कैसे कंपोस्ट बनाए, लेकिन की सब प्रयोग करे
1: जी।
0: घोड़ा के जो फीमिया बा सब बचा प्रयोग करे। अब देखा एक जो फीमिया बा वह मुर्गी के
1: जी,
0: मुर्गी के फीमिया में बहुत नाइट्रेट था, वो गनला वो फीमिया हुए नहीं वो गन्ने को फर्टिलाइजर कहते हैं।
1: अच्छा,
0: हाँ तो कोई ओके अकेले नहीं प्रयोग करिया जा, हाँ चाहला हाँ कुछ में मिला दे के सब बजा गाय के फीमिया में मिला दे, सब बजा दूसरे फीमिया में मिला दे या को कंपोस्ट में मिला दे तो ओकर में ढेर लाजो था। एगो ऑप्शन एगो फीमिया जब प्रयोग करब तो जो वेजिया है जन लेकिन फै है वेजिया कैसे टुम्पूस वगैरह वगैरह बात है शॉर्ट साइकिल वन सर में तो खाद ही नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि में देजा खाद बात है ओसन। अब है माचे उगाने के दूसरा है तो माटी के चला कबू सुखाने छोड़े के, एगो माटी के सूखा छोड़ब तो जो जीव बातें भागे लगेला
1: जी,
0: तो लाहों में नहीं रही बीतरे बीतरे चले जाए तो जो रुपाई करब तो समय ले फिर से आए के तो चला ओके इमीद रखे के। अब इमीद रखे खातिन और ओके सुरक्षित रखे खातिन माटी के कभी कभी भी नंगा नहीं छोड़िया, कैसे बोलनी चाहे बाहर आवेला था माटी धोआला धूप रहेला था जो ऊपर में जो माटी रहेला तो तापमान जब बढ़ जाला तो जो निमिजते रहेला ये वाप हो गए हो जाला
1: जी।
0: हाँ तो कैसे चला बचाए के, जब घास रही तो घास वास सकबा छोड़ दे ताइए कर दिया
1: जी,
0: या फिर घास वो नहीं छोड़िया सकबा को रुपाई कर दे जैसे बोला सा लत्ती के। अब लत्ती के तो अनेक प्रकार के सब्जियों के सकबा करे
1: जी।
0: या गल हला दिया बोला जैसे जौताक वगैरह तो जौताक डाल के छोड़ दिया, जौताक मिली खाए के वो तो हाली हाली बढ़ी तोहर तोहर खेत के भी उपजाऊ बनाए तो ये भी सकबा करे। जन हैवी मशीनरी बा माटी के आज नहीं चाहेला हिलाए के तैयारी करके जैसे बोझा सा बीने सब खेत के तो नहीं करिया
1: जी।
0: आज सकबा जा खाली चुरु खोदे जैसे बोझा सा रोपाई करे खाते तो खाली हवे करिया तो माटी उतना नहीं हिली ना
1: जी,
0: तो है सब ओकर बाज बाते। अब सकबा जा जाना तो नहीं सुन माटी के कुछ बाग हाँ फोसे करे कि अब तनि सुन ओके ओके में जीव लाए के तो चला मिखो बने के
1: जी,
0: तो कहाँ से अनब माटी के जो गाय के फीमेल में जैसे बोले जाओ ओकर में तो मिखो बाते
1: जी,
0: तब ओकर माटी में दलब तो कभी मिखो बा चलाए, या फिर आजकल जहाँ रिटेल आउटलेट्स बा ओकर में रहेला बायो फर्टिलाइजर जैसे बोला ओकर में मिखो बाते
1: जी,
0: तो वो सब माटी में डाले लेकिन ऐसा मिखोब के जिए खातिन
1: जी
0: कुंजी चाहला माचे उगानी।
1: तो चलो अभी हमने के प्रोग्राम जो बातें आज की चर्चा कार्यक्रम हजे परी समाप्त होला, संक्षिप्त में जल्दी जल्दी हमने के बोला अभी अपन मिट्टी जो हाथ में लेबा तनी सुन अपन कारों से अपन आंगन से वो कैसे चाहला हो कि कैसे जानब सकी। अच्छा। हाँ उफ टाल हा कौन सी कौन सुगंध बातें कौन सी बातें कैसे महसूस होला
0: हाथों में आज लेबा तो जान जेबा।
1: हाँ
0: सुगंध आज ओकर में माचे उगाने के रही निमन से या कंपोस्ट ओकर में रही तो अच्छा मौकेला
1: जी,
0: लेकिन आले गनला खाली आई किसी इमेजिने करो
1: जी
0: माटी के ले लेला हाथ में माटी सुखल बा रोखड़ बा छोड़ बा धूल की तरह गिर जाए सब
1: जी,
0: कुछ नहीं रहला हाथ में तो ये माटी नहीं छपाते
1: जी।
0: माटी के लेला ओके ऐसे जब दबाइला पचपच पानी निकला था या फिर गोला की तरह कोले उगल बा चिपक गल बा ये भी नहीं छवाते, ये को माटी में बहुत पानी बा। अब एगो माटी ले लो जब इसे पकड़ ले हुआ बुझाता था निशुन इमित बा जब ऐसे खाजे करके इसे करा तो आगे की तरह सुखल रुखर के तेने गिरा था
1: जी।
0: भिंजल भिंजल गिरा था मैं भिंजल भिंजल कहते
1: पानी नहीं
0: बासे मैं

0: और जब गिरल तो हाथ में देखबा लिमिजते रगल और माटी के जो पचकिल बाकर में चिपकल बा तनी सुन हाई सबसे अच्छा बात है।
1: तो चला आज हमने यही पर बतिया लीजा जो माटी बाटे उपजाऊ और अब हमने आशा करे थे जान गएला कि कैसे एगो बंजर जमीन रहेला कैसे एगो उपजाऊ जमीन रहेला। तो निमन से रोपाई करिया खेती बाड़ी करिया और सबकी भलाई हो। आज के चर्चा कार्यक्रम है जे परी समाप्त होला। श्रोतागण दर्शकगण बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान संजय शंभू फागे से हुआ और जितना जना हमने के सुनन देखलन पार्टिसिपेट करलन सबको की हमने की टीम दने से प्रणाम नमस्ते।

0: Center, 95.5. North, South, 95.6. East, West, 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night.
3: आइए सुनते हैं समाचार आशिता के साथ. नमस्कार.
4: नमस्कार गिरीशा, श्रोताओं को भी नमस्कार. संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोग का स्वागत है. हालिया संसदीय सत्र के दौरान प्रांतीय प्रशासन मंत्री राजीव उचित ने रिवियर चौक बाजार मामले पर चर्चा की. लगभग 51 मिलियन रुपए के मूल्य का एक ठेका वर्ष 2003 में दिया गया था, जो दो दशक बाद बढ़कर 580 बिलियन रुपए से अधिक के निपटारे तक पहुंच गया है. सांसद संदीप प्रयाग के अनुसार जिन्होंने पिछले मार्च में इस मामले को लेकर सरकार से सवाल किया था, ये स्थिति मुख्य रूप से एक गलत तरीके से तैयार किए गए कॉन्ट्रैक्ट का परिणाम है. उन्होंने इस मामले में कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों और उससे जुड़े वित्तीय प्रभावों पर सवाल उठाए थे. कूटनीति के क्षेत्र में अंगोला गणराज्य के नए राजदूत डोमिंगोस दे अल्वेदा दा सिल्वा कोएलो ने आज सोमवार 13 जुलाई 2026 को मॉरिशस के गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोखुल को अपने परिचय पत्र सौंपे. ये समारोह रेंजवे स्टेट हाउस में आयोजित किया गया. बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई, विशेष रूप से व्यापार और खेल के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया गया. और पेंशन सुधार के विरोध में बने संयुक्त मंच के प्रतिनिधियों ने कहा है कि वे अपनी आगे की रणनीति तय करने से पहले फाइनेंस बिल के प्रस्तुत होने का इंतजार करेंगे. आज सुबह आयोजित एक प्रेस वार्ता में ट्रेड यूनियन नेताओं ने राजधानी की सड़कों पर निकाली गई पेंशन सुधार विरोधी शांतिपूर्ण रैली को सफल बताया. उन्होंने 60 वर्ष की आयु से सभी के लिए 15,555 रुपए की सार्वभौमिक पेंशन लागू करने की मांग दोहराई. साथ ही उनका कहना है कि बड़े वित्तीय समूहों पर विशेष टैक्स लगाया जाए ताकि सार्वभौमिक पेंशन और उससे जुड़े अनुदानों को बहाल करने के लिए आवश्यक संसाधन जुटाए जा सके. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने व्यापक तबाही मचा दी है. भारी वर्षा, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण अब तक कम से कम 51 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं. देश के कई हिस्सों जिनमें राजधानी ढाका भी शामिल है बाढ़ की चपेट में है. हजारों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं. अब तक हुई कुल मौतों में आधी से अधिक एक बड़े बाजार वाले जिले में दर्ज की गई, जहां दुनिया की सबसे बड़ी रोहिंग्या शरणार्थी बस्ती स्थित है. इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला. आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार.
5: चौरानवे 95.6 98.2

0: के सितारे
1: सोमवार 13 जुलाई घड़ी मिला लीजिए सुबह के 4:10 यहां पर आपके सितारे इस प्रोग्राम में आप सभी लवली लिसनर्स का वेलकम हम करते हैं सुमिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें चलिए आपके सितारे इस प्रोग्राम को लेकर हम आ गए हैं आपका साथ देने के लिए कैसे हैं आप सभी ठीक है ना तो चलिए यहां पर जो है खूबसूरत गानों का सिलसिला जारी हो चुका है मतलब कि शुरू हो चुका है और आज जो है हम बात करने वाले हैं एस जानकी जी के बारे में एस जानकी जी जो है पिछले शनिवार को उनका निधन हो गया तो हमने सोचा कि आज का हमारा प्रोग्राम इन पर क्यों ना किया जाए ऐसे एस जानकी ने बॉलीवुड में काफ़ी गाने गाए हैं 23 अप्रैल 1938 को इनका जन्म हुआ 11 जुलाई 2026 को ये चल बसी यानी कि शनिवार को ये चल बसी इंडियन प्लेबैक सिंगर है और इन्होंने कुछ म्यूज़िक भी कंपोज किया है ये जानकी अम्मा के नाम से जाने जाती है जिस तरह से लता जी नाइटिंगल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती थी एस जानकी जी जो है नाइटिंगल ऑफ साउथ इंडिया के नाम से जानी जाती है और जो है भारतीय संगीत के इतिहास में इनका नाम बड़े ही गर्व से लिया जाता है तो चलिए आज इनके गाए हुए कुछ खूबसूरत बॉलीवुड गाने आपके लिए हम चलाएंगे

0: के सितारे।
1: चलिए चाप के सितारे ऑन रेडियो मनोरंजन, और आज हम बात कर रहे हैं एस जानकी जी के बारे में। और जानकी जी के बारे में बात करें तो एक बहुत ही मशहूर प्लेबैक सिंगर रह चुकी है। इनका जन्म 23 अप्रैल 1938 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। उन्होंने अपने करियर में 6 दशक से भी ज़्यादा समय के लिए गाने गाए हैं, और इन्होंने 48,000 से भी गाने रिकॉर्ड किए हैं, जो अपने आप में इन्हें एक लेजेंड बनाता है। अब 48,000 गानों की अगर हम बात करें तो सिर्फ हिंदी फिल्मी गाने इसमें शामिल नहीं होते हैं। जितने पॉपुलर हिंदी गाने इन्होंने बॉलीवुड के लिए गाए हैं, हिंदी सिनेमा के लिए गाए हैं, उससे भी कई ज़्यादा गाने इन्होंने जो है साउथ इंडियन फिल्मों के लिए गाए हैं। ये वहाँ पर ज़्यादा लोकप्रिय रही है, लेकिन काफ़ी ऐसे इनके गाने जो है जो 80s के सालों में आए हैं, जो 90s के सालों में आए हैं, लोगों ने काफ़ी पसंद किए हैं। और ऐसे में जो है हमने सोचा कि क्यों ना एस जानकी जी को याद करते हुए आज का हमारा प्रोग्राम हम करें। सो चलिए खूबसूरत गानों का ये जो कारवा है आगे ले जाते हैं, और एस जानकी जी के बारे में कुछ और बातें ऐसे ही जोड़ते रहेंगे। आप भी हमारे इस प्रोग्राम में साथ दे सकते हैं ऑन 4028070। यू कैन इवन सेंड योर मैसेजेस ऑन 5250620 पर।
2: Story, but everybody will sing with me.
3: Okay.
2: Ready? Come on. One, two, three, four.

0: के सितारे।
1: चलिए उम्मीद करते हैं 80s के इन गानों को आप एंजॉय कर रहे होंगे जो एस जानकी जी की आवाज़ में हम आपके लिए चला रहे हैं। और जानकी जी को ज़्यादातर लोग नाइटिंगेल ऑफ साउथ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने हिंदी यानी कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी अपनी खास पहचान बनाई है। उनकी आवाज़ की खासियत उनका एक्सप्रेशन, उनका वॉइस मॉड्यूलेशन है, जिससे वो हर इमोशन को परफेक्टली अपने आवाज़ के ज़रिए दिखाया करती थी। तो चलिए अभी के लिए हो जाए जमाई राजा फिल्म का ये तराना एस पी बालासुब्रमण्यम, एस जानकी और साथियों की आवाज़ों में।

0: के सितारे।
1: चलिए आपके सितारे और इस समय गानों का मजा उठा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अनीता जी मोदाल भी ऐसे साथ दे रही है, कह रही है कि बहुत सुंदर गाने हैं। तो चलिए ऐसे में अगला गाना जाता है अनीता जी आपके नाम, और यही गाना जाता है करुणा जी आपके लिए भी और अमृता जी आपके लिए भी। और इसी गाने के साथ हम बढ़ेंगे आपके सितारे इस प्रोग्राम के सेकेंड आवर की ओर। तो आप हमारा साथ यूँ ही देते रहे और रेडियो मनोरंजन इन योर आप।

थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग दिस सिलेक्शन. आपके सितारे इस प्रोग्राम में आप जुड़े हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. एस जानकी जी के गाने जो है हम आपके लिए चला रहे हैं, और उनका बॉलीवुड करियर साउथ इंडस्ट्री के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा रहा है, लेकिन फिर भी काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा है. उन्होंने ज़्यादातर लेट 70s 80s में काफ़ी गाने गाए हैं, और एक अपनी अलग ही एक अनग ही एक यूनिक सी पहचान बनाई है, और अपनी आवाज़ से सभी का दिल जीता है. 80 के दौरान उनका कोलैबोरेशन काफ़ी पॉपुलर म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ रहा बॉलीवुड में, खासकर बप्पी लाहिरी जी के साथ, जिसके साथ उनके बॉलीवुड के करियर को एक अलग ही पहचान मिली थी. उन्होंने डिस्को और मॉडर्न स्टाइल के गाने भी गाए हैं, जो उस वक्त काफ़ी ट्रेंड में था. तो चलिए हो जाए ये तराना साहिब फिल्म से लिया गया, बप्पी लाहिरी और एस जानकी जी की आवाज़ों में. चलिए आज के इस प्रोग्राम के ज़रिए हम एस जानकी जी को एक ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं. 11 जुलाई को वो चल बसी थी इस शनिवार को, तो हमने सोचा क्यों ना आज का आपके सितारे उनको डेडिकेट किया जाए. तो ऐसे में ये खूबसूरत सा तराना आप सभी के नाम और एस जानकी जी के सभी फैंस के नाम हम करते हैं. दिस इज़ योर आपके सितारे ऑन रेडियो मनोरंजन.

0: के सितारे।
1: चलिए हम आपसे दूर तो बिल्कुल नहीं है, आपके रेडियो सेट के जरिए हम आपके दिल के बहुत ही करीब है और दिल से इस प्रोग्राम को आप पसंद कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए आज का हमारा जो आपके सितारे प्रोग्राम है, थ्रू दिस प्रोग्राम वी आर पेइंग अ ट्रिब्यूट टू एस जानकी जी। जी हाँ, और एस जानकी जी के गाने काफ़ी लाजवाब है, और ऐसे में चलिए अगले गाने की ओर हम बढ़ते हैं। मैं तेरे लिए फिल्म का ये जो तराना है, इसे आप सुनेंगे एस जानकी और अमित कुमार जी की आवाज़ों में। और इस समय रेडियो मनोरंजन पर हमारा और आपका साथ बना हुआ है। जानकी जी की एक ख़ास बात ये थी कि वो किसी भी लैंग्वेज में गाने को अपना बना लेती थी। हिंदी उनकी मदर टंग नहीं थी, लेकिन फिर भी उनकी प्रोनाउंसिएशन और उनके इमोशंस इतने नेचुरल होते थे, ऐसा लगता था कि वो इन्हीं गानों के बीच पली बड़ी है और इन्हीं गानों को गाते हुए वो बड़ी हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है, ज़्यादातर जो है इन्होंने साउथ के गाने गाए हैं, लेकिन हिंदी फिल्मों के भी जितने गाने गाए हैं वो काफ़ी कम नहीं हैं और काफ़ी लाजवाब है। आप तो सुन ही रहे हैं, पिछले एक घंटे से जो है इनके गाए हुए गाने हम आपके लिए चला रहे हैं और गानों का सिलेक्शन आप पसंद कर रहे हैं, इसके लिए थैंक यू सो सो मच। हमारे साथ जुड़े हैं आप ऑन 5250620 पर। बढ़ते हैं इस अगले तराने की ओर।

0: के सितारे।
1: सभी गानों को सुनते सुनते कब ये जो प्रोग्राम है इसके अंत की ओर हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। चलिए जानकी जी की एक ख़ास बात ये थी कि वो हर एक गाने को अपने एक अलग रंग एक अलग रूप में ढाल दिया करती थी। बॉलीवुड की बात करें तो उन्होंने रोमांटिक सैड डिवोशनल हर तरह के गाने उन्होंने गाए, स्टबी स्टाइल में उन्होंने जो है गाने गाए हैं। उनकी आवाज़ इतनी वर्सटाइल थी कि वो छोटी बच्ची की आवाज़ से लेकर मैच्योर आवाज़ तक भी इजीली स्विच कर सकती थी। और आप तो देख ही सकते हैं उनकी आवाज़ में कितना जोश, कितना उत्साह, कितनी खुशी हमें महसूस होती है। फिर भी बॉलीवुड में उनको उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली जितनी कि साउथ की फिल्मों में इन्हें गाने गाकर मिली, जहां पर वो टॉप सिंगर्स में से एक थी। ये एक और बात हो सकती है कि जिस समय ये बॉलीवुड में आई थी उस समय ऑलरेडी काफ़ी एस्टेब्लिश सिंगर थे, जैसे कि लता जी, आशा जी। तो चलिए अभी के लिए एक और तराना हो जाए यहाँ पर एस जानकी जी की आवाज़। मेरी जंग फिल्म से लिया गया और किशोरदा साथ में इनकी आवाज़ को भी आप सुन पाएंगे।
2: वेलकम फ्रेंड्स टू द शो दैट नेवर एंड्स। आई हैव टेकन द चांस टू मेक यू डांस। यू विल मूव योर फीट एंड ग्रूव टू द बीट। सो देन व्हिच बीट वुड यू लाइक? दोस्तों कौन सा डांस पसंद करेंगे आप? रॉम्बा?
3: नो।
2: सांबा?
3: नो।
2: रॉम्बा?
3: नो।
2: सांबा?
3: नो।
2: टेक्विला?
3: नो।
2: टैंगो?
3: नो।
2: चार्ल्सटन?
3: नो।
2: पोल्का?
3: नो।
2: नो? तो फिर क्या हो? वन
3: राउंड

चले हैं यहाँ पर। ये गाने आज सुनने को बड़े अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि एस जानकी जी की बात करें तो आमतौर पर उनके गाने उतने हम चलाते नहीं हैं, कभी मौका मिलता है तो एक आध गाने कभी काफ़ी समय पर चलते हैं, लेकिन आज दो घंटों के सफ़र में इनके गानों को हमें सुनने का मौका मिल रहा है और जानकर अच्छा लग रहा है कि इतने प्यारे प्यारे गाने हैं जो इनके गाए हुए हैं। तो चलिए, ऐसे में अगला तराना जो है बादल फिल्म से लिया गया है, एस पी बालासुब्रमण्यम और जानकी जी की आवाज़ों में आप सभी के नाम।

0: के सितारे।
1: चलिए आज का हमारा आपके सितारे प्रोग्राम वाज़ अ ट्रिब्यूट टू एस जानकी जी, जिनका निधन 11 जुलाई को हुआ यानी कि शनिवार को। और एस जानकी जी के करियर की बात करें तो उनका पूरा करियर देखा जाए तो बॉलीवुड में उनका जो करियर रहा है, बॉलीवुड एक उनके जीवन का हिस्सा रहा है, बस एक सफ़र रहा है, लेकिन उनकी असली पहचान एक ऑल इंडिया सिंगर के रूप में रही है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ साउथ की भाषाओं में या हिंदी भाषाओं में गाने नहीं गाए हैं, कई अन्य भारतीय भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं और लाखों करोड़ों दिलों को उन्होंने छुआ है। जानकी जी ने बॉलीवुड में कम काम करने के बाद अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो आज का हमारा जो ये जो स्पेशल आपके सितारे प्रोग्राम रहा वो ट्रिब्यूट टू एस जानकी जी, और इस अगले गाने के साथ आज के इस प्रोग्राम को हम समाप्त करते हैं। घायल फिल्म से लिया गया अमित कुमार एस जानकी जी की आवाज़ों में। उम्मीद करते हैं जो दो घंटों का सफ़र रहा आपको पसंद आया होगा, आपने साथ दिया, इसके लिए धन्यवाद। 6 बजे जो है आप सुन पाएंगे पूरा समाचार MBC रेडियो पर, और हम आपसे दोबारा मिलेंगे, जी हाँ, नई सोच और दिलों की आवाज़ इस प्रोग्राम में। सो रात के 9 बजे तक रहने वाला है हमारा और आपका साथ ऑन रेडियो मनोरंजन। ऐसे ही जुड़े रहिए, धन्यवाद।
2: You're listening to RM3 Radio Man.

0: घर मिलाते चलिए, शाम के ठीक 6 बजे हैं।
1: 819 किलोहर्ट्ज़
0: तेरह जुलाई सोमवार का दिन, इस सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। ओमनिकिन में 2026 की गन्ना कटाई अभियान की शुरुआत, अंतर धार्मिक प्रार्थनाओं से की गई। इस वर्ष ग्रुप अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर रहा है और बदलते चीनी उद्योग की चुनौतियों का सामना करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहरा रहा है। रिविया जॉब बाजार परियोजना एक बार फिर सुर्खियों में। राष्ट्रीय सभा में इस मामले पर जानकारी देते हुए सरकार ने बताया कि वर्ष 2003 में दिए गए करीब 51 मिलियन रुपए के कॉन्ट्रैक्ट के बदले 20 साल बाद 580 मिलियन रुपए से अधिक का भुगतान करना पड़ा। प्लेटफॉर्म को मैसेजिकल फाइनेंस बिल पेश होने का इंतजार कर रहा है। संगठन का कहना है कि इसके बाद ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। साथ ही 8 वर्ष की आयु से 15,555 रुपए की पेंशन की मांग के एक बार फिर दोहराई गई। अमेरिका ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जहाज़ों पर हमलों के बाद अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर नए हमले किए हैं। जवाब में ईरान ने भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक पब में लगी भीषण आग में कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई। उधर वियतनाम के एक द्वीप के पास एक पर्यटक स्पीड बोट पलटने से 15 भारतीय पर्यटकों की जान चली गई। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। ओमनिकेन में आज से 2026 की गन्ना कटाई अभियान की शुरुआत हो गई। एक अंतर धार्मिक प्रार्थना के साथ शुरू हुए इस अभियान का इस वर्ष विशेष महत्व है क्योंकि ओमनिकेन ग्रुप अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर रहा है। बीते सफर को याद करते हुए ग्रुप ने बदलते चीनी उद्योग की चुनौतियों का सामना करने और भविष्य की ओर आगे बढ़ने का संकल्प भी दोहराया। साहू की रिपोर्ट पर रजनी बेकर का विवरण।
2: प्रार्थना कर जुटना और आशीष प्राप्त करना, एक अंतर धार्मिक समारोह के जरिए ओमनिकेन ने औपचारिक रूप से 2026 की कटनी की शुरुआत की। ये एक प्रतीकात्मक समारोह रहा, साथ में इसलिए भी क्योंकि 1926 में स्थापित ग्रुप इस साल अपने अस्तित्व के 100 साल पूरे कर रहा है। एक सदी बीते जिसके दौरान ओमनिकेन मॉरिशन गन्ना उद्योग के बगल में विकसित होता गया। धीरे धीरे इसने अपनी गतिविधियाँ डायवर्सिफाई की और साथ में ईख के गन्ने को अपने विकास के केंद्र में रखा। घोषित परियोजनाओं में लिक्विड शक्कर उत्पादन की एक इकाई कायम करने की बात भी शामिल है। ओमनिकेन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राग जुनियाविल ने कहा,
3: Sommes en train d'installer dans la raffinerie maintenant une unité qui pourra produire du sucre liquide.
2: अभी रिफाइनरी में एक इकाई कायम कर रही है जो लिक्विड शक्कर पैदावार कर सकेगी और इससे ये लाभ होगा कि इससे रिफाइनरी की क्षमता प्रभावित नहीं होगी, उल्टा इसकी बदौलत अभी की तुलना में ज़्यादा निर्यात कर सकेंगे। 100 वर्ष बहुत सुंदर सफर है, टिके रहने का प्रतीक है और एक ऐसी कंपनी है जो नवाचार लाती रही है, ऐसा करना जानती भी है, समय के साथ अपने आप को ढालती रही है। अब हमारी जिम्मेदारी है बेहतर बुनियाद हो अगले 100 वर्षों के लिए। सरकार के लिए एक मजबूत गन्ना उद्योग का बना रहना एक अहम चुनौती बनी हुई है, चाहे अर्थव्यवस्था के लिए हो कि नौकरी, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा को लेकर हो। कृषि उद्योग मंत्री डॉक्टर अरविंद बुले ने कहा,
4: Nous sommes innovants, nous sommes dans le maillon, nous sommes dans ce travailleur, artisan, laboureur, les planteurs, celui qui gère l'entreprise, les administrateurs. Donc c'est un maillon très fort. Et aujourd'hui, le planteur peut être premier 60 tonnes de sucre, 35 000 roupies la tonne. Okay? Et nous peut donner beaucoup de sucre.
2: इस कटने की शुरुआत से ओमनिकेन के इतिहास में एक नया अध्याय खुला है जो अपने अस्तित्व की दूसरी सदी आरंभ कर रही है। वो बदलाव

0: संकल्प जारी रख रहा है और साथ में देश के विकास में अपना योगदान भी बढ़ा रहा है।
1: प्लेटफॉर्म कॉमर्स सेंजिकाल के प्रतिनिधियों ने आम हड़ताल के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। हालांकि उनका कहना है कि वे पहले फाइनेंस बिल पेश होने का इंतजार करेंगे और उसके बाद ही आगे की रणनीति पर अपनी अंतिम फैसला लेंगे। आज आयोजित एक प्रेस सम्मेलन में संगठन के प्रतिनिधियों ने पेंशन सुधार के विरोध में पोर्ट लुइस में निकाले गए शांतिपूर्ण मार्च को सफल बताया। उन्होंने 60 वर्ष की आयु से 15,555 रुपए पेंशन की मांग दोहराई। साथ ही 1,00,000 रुपए से अधिक आय वालों पर टैक्स लगाने का सुझाव भी दिया ताकि पेंशन और अन्य सब्सिडी को बनाए रखा जा सके। कुणाल गोजी की रिपोर्ट पर यशरा मिश्रा का विवरण।
0: प्लेटफॉर्म कॉमर्स सेंजिकाल के प्रमुख वक्ताओं ने राजधानी की सड़कों पर आयोजित मार्च के बाद अपने भावी कदमों का उल्लेख किया। नरेंद्र नाथ गोपी ने कहा, सरकार द्वारा प्रस्तुत फाइनेंस बिल में बजट भाषण में घोषित कदमों को अमल में लाए जाने का प्रावधान है। फाइनेंस बिल के प्रस्तुतीकरण का इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने एक आम हड़ताल के लिए वोट डाला। उन्होंने फाइनेंस बिल के पारित किए जाने के दौरान नेशनल प्रोविडेंट पेंशन फंड के उन्मूलन का प्रस्ताव रखा। राधा कृष्णा साध्या ने कहा,
2: cause réforme dans sa globalité. Et ça même gouvernement qui dit que la démocratie dit qu'on ne peut pas respirer. Mais quand un mouvement syndical, comme un partenaire social, le dimanche pour être convoqué dans une réunion et quand nous cause freedom of information, nous avons un accès et que l'information nous décide ensemble.
0: आबादी बदलाव और नौजवानों तथा भावी पीढ़ियों पर बोझ से जुड़े प्रश्नों का जवाब देने के लिए ये कहा गया। रियाज चतु ने 1,00,000 रुपए से अधिक की आय प्राप्त करने वालों के लिए एक नए प्रकार के टैक्स का प्रस्ताव रखा है।
3: Tout le monde qui paye taxe, je peux payer 0,5% l'aux autres income tax. Ça veut dire comme une separate ban qui je peux retourner ban government subsidy. Moi, parce que je pense que je gagne l'eau d'iril, la farine, l'eau gaz. Je retourne parce que moralement, je ne pas mérité.
0: Manch qui anusar, pension qui financing, vriddhi ka. पक्ष लेते हुए 22.5% को कॉर्पोरेट टैक्स को लागू करने से गुजरती है। साथ में विदेशी कामगारों के वित्तीय मुनाफे से फायदा उठाना चाहिए और ऐसी पहल करनी चाहिए जिससे नौजवानों को देश में ही रहने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाए।
1: रुपया चौंपा बाजार का मामला एक बार फिर चर्चा में है। राष्ट्रीय सभा की पिछली बैठक में मंत्री रंजीव उचित ने इस मामले पर जानकारी दी। वर्ष 2003 में करीब 51 मिलियन रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, लेकिन 20 साल बाद उसी मामले में 580 मिलियन रुपए से अधिक का भुगतान करना पड़ा। इस विषय पर सवाल उठाने वाले चुनाव क्षेत्र के सांसद संदीप प्रया का कहना है कि इसकी एक बड़ी वजह शुरुआत में तैयार किया गया कॉन्ट्रैक्ट था। एमर्शस से जुड़े एक मामले में आज जिला अदालत में सुनवाई हुई। एफसीसी ने एमर्शस के पूर्व जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटर सतो हाजी अब्दुल्ला पर वर्ष 2020 में कंसल्टेंसी सेवाओं के लिए 3.6 मिलियन रुपए लेने का आरोप लगाया। आयोग का कहना है कि ये कंसल्टेंसी सेवाएं प्रदान नहीं की गई थी। आज दोनों पक्षों के वकीलों ने अदालत में अपनी दलीलें पेश की। अदालत इस मामले में 27 अगस्त को अपना फैसला सुनाएगी। मॉरिशस के लिए अफ्रीका दुनिया की ओर एक नया द्वार खुल गया है। इथियोपियन एयरलाइंस की पहली उड़ान सर शिवसागर रामगुलाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंची। इसके साथ ही मॉरिशस की एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क व्यवस्था और मजबूत हुई है, जिससे पर्यटन, व्यापार और व्यापारिक आदान प्रदान के नए अवसर खुलेंगे। इस पर प्रस्तुत है अब्दुल बुलाकी की रिपोर्ट पर यह विवरण।
0: अफ्रीकी महाद्वीप पर एक नया द्वार खुला। इथियोपियन एयरलाइंस ने कल अपनी पहली उड़ान के अंतर्गत अदिस अबेबा और मॉरिशस के बीच का सीधा फासला तय किया। दिन के सवा

0: 3 बजे शशि सागराम गुलाम हवाई अड्डे पर वाटर सल्यूट के साथ इसका स्वागत किया गया। पहली उड़ान के तहत 148 यात्री करीब 5.5 घंटे का फासला तय करते हुए मॉरिशस पहुंचे। उच्च स्तर पर ये परियोजना साकार हुई। असल में 2025 के फरवरी महीने में इथियोपिया में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने इथियोपियन एयरलाइंस के ग्रुप CEO मेस्विन तैशो के साथ इस विमानन संपर्क का उल्लेख किया था। महाद्वीप के लिए सबसे अहम खेप यानी कोई 170 विमानों का इस्तेमाल और 30 से अधिक के ऑर्डर दिए गए। इथियोपियन एयरलाइंस अपने एडिस अबेबा के हब यानी बोले आधुनिकतम हवाई अड्डे के जरिए 165 गंतव्यों के लिए उड़ान निर्धारित करता है। इस नए हवाई मार्ग से मॉरिशस को अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी प्राप्त होगी। पर्यटन मंत्री ऋषभ जीवाल ने कहा, ये बहुत खुशी की बात है कि इथियोपियन एयरलाइंस जैसी बड़ी कंपनी वर्ल्ड क्लास एयरलाइंस है मॉरिशस के लिए उड़ान भर रही है। हमारे विचार से पूर्वी अफ्रीका और अन्य इलाकों के लिए अहम है। अमेरिका के लिए इसके साथ समझौता बातचीत की जाएगी ताकि अमेरिकी पर्यटक भी मिले। पहले तो कंपनी मॉरिशस की ओर 3 साप्ताहिक उड़ान भरेगी, बुधवार, शुक्रवार और रविवार के दिन।
1: Et mon pensée que c'est de bon augure qu'il nous gagne un grand aircraft comme ça, une grande compagnie comme ça.
0: इथियोपिया के विदेशी मामलों के मंत्री हदेरा अदमासू ने कहा, एक दशक से अधिक समय से इसकी कोशिश की जा रही थी। करीब 10 वर्षों की समझौता बातचीत, आखिरकार ये साकार हुआ। मॉरिशस अहम पर्यटन गंतव्यों में से एक है।
2: मॉरिशस is one of the, you know, the great destinations of tourism.
0: Ethiopian Airlines ke group chief commercial officer Lema Yadecha ne kaha, इथियोपियन एयरलाइंस की कड़ी में केवल मॉरिशस की ही कमी थी। अब मिशन पूरा हुआ, मॉरिशस को इथियोपियन एयरलाइंस के नक्शे पर रखा गया है। सभी गंतव्यों के लिए जिस तरह करते हैं निवेश करेंगे ताकि लोगों के बीच संपर्क हो सके, ताकि मॉरिशस और अन्यत्र से लोग इथियोपिया में आकर निवेश कर सकें और पर्यटकों को अफ्रीका तथा अन्यत्र से यहां ला सकें।
3: इन्वेस्ट इन इथियोपिया एंड बियॉन्ड एंड आल्सो वुड लाइक टू ब्रिंग टूरिस्ट्स फ्रॉम अफ्रीका एंड बियॉन्ड टू मॉरिशस।
0: इस नए हवाई संपर्क के साथ इथियोपियन एयरलाइंस और आगे जाने का इरादा रखते हैं। वो अब से मॉरिशस के लिए दैनिक उड़ान भरने की इच्छा रखती है और आने वाले दिनों में इस सिलसिले में मॉरिशन अधिकारियों के एक मांग भेजने वाली है। इस संभावना के अंतर्गत मॉरिशस अफ्रीका और दुनिया के बाकी देशों के साथ पर्यटन और व्यावसायिक आदान प्रदान मजबूत करने तथा निवेश बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है।
4: मॉरिशस और अंगोला के संबंधों को आज नई मजबूती मिली है। अंगोला के नए राजदूत ने आज स्टेट हाउस में गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोखुल को अपना परिचय पत्र प्रस्तुत किया। इस अवसर पर दोनों देशों के बीच विशेष रूप से व्यापार और खेल के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। रिया रामभुजन, यात्रा मिश्रा।
5: मॉरिशस और अंगोला गणराज्य के बीच कई साझेदारियां हैं, सांस्कृतिक विरासत से लेकर वित्तीय क्षेत्र में सहयोग तक। मॉरिशस में नियुक्त अंगोला के नए राजदूत का एक प्रमुख उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की दिशा में ठोस पहल शुरू करना है। हमारे दोनों देश स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाना चाहते हैं, साथ ही हम अंगोला में व्यापारिक मिशन आयोजित करने की संभावना पर भी काम करेंगे। मेरा मानना है कि ये दोनों देशों के लिए कई बड़े अवसर लेकर आएगा। मॉरिशस और अंगोला के बीच द्विपक्षीय संबंधों का इतिहास लगभग 4 दशक पुराना है और अब इस साझेदारी को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।
4: सौर ऊर्जा अब समाज सेवा के एक और मिशन से जुड़ गई है। पिछले 40 वर्षों से विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों और युवाओं की सहायता कर रही जॉर्ज शॉल फाउंडेशन में अब सौर ऊर्जा की व्यवस्था की गई है। MCB के सहयोग से संस्थान में फोटोवोल्टाइक पैनल्स लगाए गए हैं। मॉरिशस में किसी गैर सरकारी संगठन के लिए अपनी तरह की पहली पहल मानी जा रही है। जॉर्ज शॉल फाउंडेशन ने MCB के लगभग 20 लाख रुपए के वित्तीय सहयोग से और ऊर्जा को अपनाते हुए फोटोवोल्टाइक सोलर पैनल स्थापित किए हैं। इस बदलाव से बिजली का खर्च कम होगा और बचने वाले संसाधनों का उपयोग फाउंडेशन में रह रहे बच्चों के कल्याण पर किया जा सकेगा।
6: C'était extrêmement important pour nous de financer ces fameux panneaux photovoltaïques pour la Fondation Georges Charles.

0: dans la mesure où ils avaient besoin d'être autonomes en production d'énergie.
1: अनुमानित बचत से आगे बढ़कर ये परियोजना एक दीर्घकालिक सोच को दर्शाती है। इसका उद्देश्य फाउंडेशन को अधिक आत्मनिर्भर बनाना है, साथ ही उसके दैनिक कार्यों के केंद्र में सतत विकास को स्थापित करना भी है।
2: Ça projet là, il donne un grand soulagement et surtout que tout bon étudiant capable profite de ce financement là, qu'on est capable d'investir dans l'autre projet.
1: इस पहल के कार्यक्रम में मौजूद सभी अतिथियों ने सराहना की। अधिकारियों का कहना है कि ये उपलब्धि साबित करती है कि ऊर्जा परिवर्तन केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सामाजिक संस्थानों और समाज के सबसे जरूरतमंद वर्गों के लिए भी एक प्रभावी साधन बन सकता है।
3: गवर्नमेंट पे बेकुल एम्फेसिस लो बन प्रोजे alternative en ce qui concerne l'électricité parce qu'il y a un problème électricité ça nous a reconnu et m'espérer que sa initiative là va être suivie par d'autres ONG.
1: खर्च में कमी लाना भविष्य की तैयारी का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फाउंडेशन को अब उम्मीद है कि उसके भावी विकास कार्यों के लिए नए सहयोगी और साझेदार आगे आएंगे।
4: Tous les mois, on a une facture de 26 000 roupies, hein? Et donc qui est assez énorme. Pour une petite ONG comme la Fondation Georges Charles, et là maintenant, on va presque plus payer, je dis presque plus payer.
1: सौर पैनलों की स्थापना केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये फाउंडेशन के बच्चों के भविष्य में किया गया एक महत्वपूर्ण निवेश भी है। आज परिवार और फाउंडेशन की पूरी टीम इसी उपलब्धि का जश्न मना रही है।
5: Bon, ça fait assez le moment, parce que, comme on a dit, c'est la première fondation dans mon risque qui fait ça, mais on reste un vrai honneur.
6: Je suis content de continuer, amène mes enfants dans une bonne manière, une bonne habitude pareille.
1: अब यहाँ सूरज की हर किरण सिर्फ बिजली ही नहीं पैदा करेगी, बल्कि फाउंडेशन के बच्चों के लिए नई उम्मीदें और बेहतर संभावनाएं भी लेकर आएगी।
7: विदेश की खबरें जो आज सुर्खियों में हैं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से कई दुखद घटनाओं की खबरें सामने आई हैं। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर करीब 4,500 हो गई। वहीं बैंकॉक में भीषण आग, वियतनाम में नाव हादसा और इंग्लैंड में हीट वेव से बड़ी संख्या में मौतों की खबर है। और साथ ही बात कर रहे थे सुर्खियों में, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाज़ों पर हमलों के बाद अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर नए हमले किए हैं। जवाब में ईरान ने भी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है।
8: अमेरिका ने कहा कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। अमेरिकी सेना के अनुसार इन हमलों में वायु रक्षा प्रणाली, तटीय रेडार, मिसाइल और ड्रोन ठिकानों के साथ साथ छोटी सैन्य नौकाओं को निशाना बनाया गया। इन अभियानों में लड़ाकू विमान, युद्धपोत और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। अमेरिका का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है और इस पर किसी एक देश का नियंत्रण नहीं हो सकता। उधर ईरान ने दावा किया है कि उसने जवाबी कार्रवाई में जोर्डन, बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। साथ ही ओमान में कुछ रेडार प्रणालियों को भी निशाना बनाने की बात कही है। दोनों देशों के बीच तनाव पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम अब समाप्त हो गया है। इसके बाद दोनों ओर से हमले तेज हो गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम का असर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर साफ दिखाई दे रहा है। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक माना जाता है। जहाजों की निगरानी करने वाली संस्थाओं के अनुसार इस समुद्री मार्ग से गुजरने वाली व्यापारिक जहाजों की संख्या घट गई है। कई जहाज सुरक्षा कारणों से अपनी स्थिति बताए बिना इस रास्ते से गुजरे। हालांकि तनाव कम करने के लिए कूटनीतिक प्रयास जारी हैं, लेकिन अब तक कोई सहमति नहीं बन सकी है। विश्लेषकों का मानना है कि फिलहाल दोनों पक्ष पूर्ण युद्ध से बचना चाहते हैं, लेकिन जवाबी हमलों का सिलसिला जारी रहने से पूरे क्षेत्र में तनाव बना हुआ है।
7: इसके साथ अब हम बढ़ते हैं मौसम के हाल की ओर याचना मिश्रा के साथ।
9: उत्तर पूर्व से आ रहे सक्रिय बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात और कल सुबह ऊंचाइयों पर और पूर्वी इलाकों पर बादल घिरे रहेंगे और हल्की बारिश

आती रहेगी। कल दिन के दौरान धूप खिली रहेगी, मात्र दक्षिण पश्चिमी इलाकों में कुछ बादल घिरा सकते हैं। हवा उत्तर पूर्व की ओर से 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे दक्षिण पश्चिमी समंदर में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 17 से 19 और अधिकतम 20 से 23, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 21 से 23, अधिकतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह सूर्योदय 7:45 बजे, शाम को सूर्यास्त 6:45 बजे होगा।

0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का सहयोग प्राप्त हुआ, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। कंसल पर हमारे सहयोगी फैजन हैं, उन्हें भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे और साथ देने के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, हम बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। एम्पास उजिया बुआ शेरी में 73 साल की, 73 years old की फरीदा उजिया पैदाश नाम गुलाम हुसैन और जिन्हें फरीदा के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज रात 10 बजे इनके शौहर फिरोज उजिया के मकान बुआशेरी से उठाकर दफनाने के लिए गांव वाक कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुनाइट एट 10 PM। पुचिकॉन ग्रांगुब में 55 साल की 55 years old की श्रीमती सीता चतुरी जिन्हें सीता के नाम से ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 2 बजे उनकी माँ लक्ष्मी चतुरी के घर ग्रांगुब से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 2 PM। सीते उदेसे नंबर 22 पीतों में 58 साल के 58 years old के श्री सनासी रासी जिन्हें रामायण के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल 1:30 बजे उनकी बेटी पल्लवी एस्मियत के घर पीतों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लेस्पेरांस पीतों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 1:30 PM। बोबासे में नंबर 14 नैन बिल्डिंग बोबासे में 80 साल की 80 years old की श्रीमती कमला देवी चरितर पैदाशाम रामजीन और जिन्हें साकुन के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल 2:30 बजे लाशा पे लौदांतिलियन स्वयं बुबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शेबेल की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 1:30 PM। इसकी रोड पाए में 72 साल की 72 years old की श्रीमती देवंती अकू पैदाश नाम लोफा और जिन्हें मैडम गौजिया के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10:30 बजे उनके बेटे महादेव अकू के घर पाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिश्लु एक शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 10 AM। मकाओलेन त्वाबुचिक यूनियन वेल में 81 साल की 81 years old की श्रीमती सुबामा मुतुसामी पैदाश नाम सावरी और जिन्हें सिंधा के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10:30 बजे उनके घर त्वाबुचिक यूनियन वेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्वाबुचिक की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 1:30 AM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: KHz ये है रेडियो मॉरिशस।
2: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
3: मॉरिशस क्रिकेट फेडरेशन गर्व के साथ सूचित करती है कि मॉरिशस को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC में 111वां सदस्य मनोनीत किया गया है।

0: सेबी अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से इन इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। बुधवार 15 जुलाई 2026 सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक मोंट ब्लांक, शामुनी और आसपास के इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना सूचना दिए ही बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी और सीबी अपने ग्राहकों से क्षमा चाहते हैं और अपना इंतजाम कर लेने की मांग करते हैं। शुक्रिया।
1: 95.6 East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: सोमवार 13 जुलाई, रेडियो मनोरंजन पर आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। आप सभी का प्यार भरा वेलकम हम करते हैं ऑन रेडियो मनोरंजन। दिस इज़ योर नई सोच, सुमिता की ओर से नमस्कार स्वीकार करें। नई सोच इस प्रोग्राम को लेकर हम आ चुके हैं, आपके साथ जुड़ चुके हैं, आपका साथ देने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। जी हाँ, नई सोच इस प्रोग्राम में अभी से लेकर 7 बजे तक चंद खूबसूरत गाने आप सुनेंगे और 7 से 9 बजे के बीच दिलों की आवाज़ इस प्रोग्राम को सुन पाएंगे। तो चलिए इस पल को हम यादगार बनाएंगे खूबसूरत गाने तरानों के साथ, और जहाँ कहीं से भी आप जुड़े हुए हैं, आप सभी के प्यार भरे साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
5: You're listening to RM3 Radio Mana.

यकीनन चले खूबसूरत गानों का जो सिलसिला है मशाल फिल्म का ये तराना अभी आप सुन रहे थे किशोरदा की आवाज़ में जिंदगी आ रहा हूँ मैं। नई सफ़र नई सोच कहे या नया नज़रिया कहे, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ नया हमेशा होना चाहिए। ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो आपको एक्साइटेड करे ज़िंदगी को जीने के लिए। नई सोच ऑन रेडियो मनोरंजन। नई सोच जो प्रोग्राम है शाम के 6:30 से 7 बजे के बीच चलता है ऑन योर रेडियो मनोरंजन, और मैं हूँ सुमी, आप सबका साथ दे रही हूँ हर मंडे की तरह। और सोमवार का दिन हर एक जो है सभी को थोड़ा सा भारी लगता है, क्योंकि सैटरडे संडे वीकेंड के बाद जब मंडे आता है तो ऐसा लगता है कि दिन अभी अभी तो शुरू हुआ है, इतना लंबा दिन है, और शाम आते आते थकावट और बढ़ जाती है। तो चलिए, ऐसे प्रोग्रामों के ज़रिए हमारी कोशिश होती है

0: आपकी सभी थकावट को हम दूर करें और कुछ ऐसे गाने तराने चलाए जो सूदिंग हो, जो दिल को भाए, जो दिन भर की थकावट को मिटाए और कहीं ना कहीं मौका भी मिले कुछ यादों को ताज़ा करने का। तो चलिए, जहाँ कहीं से भी नई सोच इस प्रोग्राम में आप हमारा साथ दे रहे हैं, आप हमारे साथ कनेक्टेड हैं, थैंक यू वेरी मच। अगला जो गाना है ये भी बहुत ही खूबसूरत सा तराना है, ऑब्वियसली ज़िंदगी पर ही बेस्ड है। प्रेम योग फिल्म का ये गाना है, अनुराधा पौडवाल और बाबुल सुप्रियो जी की आवाज़ों में आप सभी के लिए।
1: नहीं सो, नहीं सो, नहीं सो, नहीं सो।

0: चलिए यहाँ पर नई सोच, ये प्रोग्राम चल रहा है और नई सोच में कुछ खूबसूरत गाने भी आपके लिए बेशक हम चला रहे हैं। और गानों की बात करें तो जो अगला तराना है आप सभी के नाम हम करते हैं और यहाँ पर खूबसूरत गानों के इस सफ़र में, खूबसूरत प्रोग्राम में आप जुड़े हुए हैं। दिलों की ये जो दिलों की आवाज़ जो प्रोग्राम है 7 बजे से शुरू होगा, लेकिन उसके लिए मैसेजेस अभी ही से हमें मिल रहे हैं, सो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी ही देर में आपके डेडिकेशंस को हम इंक्लूड करेंगे। अभी के लिए जो गाना है इसी के साथ नई सोच इस प्रोग्राम को हम आगे ले जाते हैं और इस गाने के तुरंत बाद जो है शुरुआत होगी दिलों की आवाज़ इस प्रोग्राम की, जहाँ पर दिल से दिल मिलेंगे। तो चलिए अगला जो तराना है आप सभी के नाम हम करते हैं और इसी के साथ प्रोग्राम को हम आगे ले जाते हैं।
1: नई सोच

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: सोमवार 13 जुलाई घड़ी मिला लीजिए शाम के 7 बज रहे हैं।

0: चले यहां पर दिल के दर्द को बढ़ाने नहीं बल्कि आपको सुकून देने आए हैं दिलों की आवाज इस प्रोग्राम के साथ आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऑन रेडियो मनोरंजन मैं हूं सुमी और रात के 9 बजे तक जो है हम आपका साथ देने वाले हैं और चलिए जहां कहीं से भी आपका साथ हमें मिल रहा है इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया चलिए साथ मिलकर इस इवनिंग को मेमोरेबल बनाते हैं यादगार बनाते हैं खूबसूरत गाने तराने यहां पर आपके लिए आपकी फरमाइश पर आपके रिक्वेस्ट पर हम चलाएंगे आपकी डेडिकेशंस को हम शामिल करेंगे नॉट टू फॉरगेट 4028070 है नंबर हमारा फॉर योर फोन कॉल साथ ही यू कैन सेंड योर मैसेजेस ऑन 5250620 पर भी थोड़ी ही देर में जो है विल बी लाइव ऑन आवर टिकटॉक पेज तो वहां पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं तो चलिए शुरुआत हो चुकी है बढ़ते हैं आगे इस खूबसूरत गाने के साथ
1: You're listening to RM3 Radio Man

0: दिलों की आवाज की आवाज।
1: जी हाँ, मोहब्बतें लुटाऊंगा, ये खूबसूरत सा तराना अभी आप सुन रहे थे अभिजीत सावंत की आवाज में। अभिजीत सावंत उन सिंगर्स में से एक है जिन्होंने रियलिटी शो जीत कर जो है अपना नाम बनाया था, और उनका ये जो एल्बम है मोहब्बतें लुटाऊंगा, ये जो गाना है आपका अभिजीत इस एल्बम का तराना है, और ये गाना

बहुत ही पॉपुलर हुआ था तो चलिए खूबसूरत गानों का ये जो सिलसिला है यहाँ पर जारी रखते हैं आगे बढ़ते हैं हम और जितने भी हमारे टिकटॉक के फॉलोअर्स इस समय हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं आप सभी के प्यार भरे साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी हाँ इस समय हम रेडियो मनोरंजन के टिकटॉक पेज पर लाइव है आप भी हमारा साथ दे सकते हैं हमारे इस पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा हमारे इस लाइव को शेयर करना और रिपोस्ट करना और लाइक करना मत भूलिएगा सो चलिए डेडिकेशंस का सिलसिला जारी है टिकटॉक के लाइव पर तो हम लाइव डेडिकेशंस ले ही रहे हैं साथ ही आपके मैसेजेस भी हमें मिल रहे हैं ऑन 5250-6200 पर तो चलिए अगला जो तराना है सोल्जर फिल्म का ये गाना होगा अलका याग्निक कुमार सानू जी की आवाज़ों में ऑब्वियसली सोल्जर फिल्म में से कौन भूल सकता है बॉबी देओल नजर आए थे इस फिल्म में साथ में प्रीति जिंटा थी सोल्जर फिल्म का ये टाइटल ट्रैक जाता है गुलशन जी आपके नाम आपकी ओर से आपके मामा प्रभा के लिए सिस्टर है दीक्षिता साथ में आयशा है सभी बोला फैमिलीज के नाम हंसनी के लिए और जितने भी सुनने वाले इस समय साथ दे रहे हैं जितने भी हमारे फॉलोअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये गाना आप सभी के लिए चल पड़ा

चलिए सोल्जर फिल्म का ये खूबसूरत सा टाइटल ट्रैक अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और कुमार सानू जी की आवाज़ों में। तो चलिए ऐसा ही कोई लवली सा तराना आप सुनना चाहते हैं या किसी के नाम डेडिकेट करना चाहते हैं, जुड़ जाइए हमारे साथ इन दिलों की आवाज़। चलिए दिलों की आवाज़ में अगला जो तराना है बड़े दिल वाला फिल्म का ये गीत है उदित नारायण अलका याग्निक जी की आवाज़ों में। जाता है स्वेनल आपके नाम, गुड इवनिंग आपको भी, आपके भाई श्रवण के नाम, ही विल बी सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे ऑन दिस वेडनेसडे। ऑलराइट, आपको हैप्पी बर्थडे इन एडवांस श्रवण जी। शुभकामनाएं आई है कृति की ओर से, साथ में अभिनव है, कियान है, नव्या है, सभी तिलक फैमिलीज की ओर से। और खास बेस्ट विशेज आपको आई है यहाँ पर स्वेनल की ओर से। साथ में यही गाना अंतिश राम शरण आपके नाम भी जाता है। इस समय स्विट्ज़रलैंड से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें सुन रहे हैं। सो चलिए यहाँ पर बहुत सारे हमारे फॉलोअर्स हमारे टिकटॉक पर लाइव पर भी जुड़ चुके हैं। आतिश है, मनीषा है, खेमराज है, श्रेया इज़ सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे टुडे। हैप्पी बर्थडे श्रेया, आपको विशिंग यू लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, लॉट्स ऑफ सक्सेस। आंच हमारे साथ है, तिलक कुमार जी, अनीता प्रताप जी, डी सी आर बी, साथ में नाजीमा है, दिनेश गोपी जी, यही गाना आपके नाम। मंजुला जी शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए। अमन है, प्रबोध है, अश्विन है, प्रीति, थोड़ी सी थकावट है, उम्मीद करते हैं इस गाने के साथ आपकी थकावट जो है दूर हो जाए। गाविन तिलक जी आपका भी स्वागत हम करते हैं। राजेश है, हरीश है, सभी बड़े प्यार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमीगो जो है रोशनुआ से हमारा साथ दे रहे हैं। और अगला गाना आपकी प्यारी बेटी वेदना के नाम हम करेंगे। ऑलराइट, जो इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई है, यही गाना कुसुम आपके नाम भी करते हैं, बड़े ही प्यार से हमारा साथ दे रही है। और एजे आपको भी हम नहीं भूले हैं।

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: चलिए इस समय सुदेवी जी वाकवा से हमारा साथ दे रही है, कह रही है कि एंजॉयिंग योर प्रोग्राम। अगला गाना जाता है दीदी ललिता के नाम सभी कुशल फैमिलीज के लिए, आत्माराम भैया के लिए। यही गाना दीदी सुनीता, शोभा, देवीना मालिंगा से, बिहारी आशना, नीरज, सभी राम रतन परिवार के नाम। ऐसे सुदेवी जी जो गाना आपने मांगा है इस प्रोग्राम में तो हम नहीं चला पाएंगे, क्योंकि पुराने गानों का प्रोग्राम नहीं है। कल दोपहर को जब हम 12 से 2 काम करेंगे इन सुहाना सफ़र, तब हम कोशिश करेंगे। ऑलराइट, सो चलिए जो लवली सा तराना है आपके नाम हम करते हैं सुदेवी जी। यही गाना राजेश और माया, आप दोनों के नाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू दीप्ति जी गानों को पसंद करने के लिए। वी हैव पिंकी कुर्सी जी ऑस्ट्रेलिया से इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। गाना जाता है प्रीति के लिए, ऋषि के लिए और राहुल के लिए, जो बड़े ही प्यार से हमें सुन रहे हैं और साथ ही टिकटॉक के जरिए हमें देख भी रहे हैं। यही तराना शालिनी जी, रवि जी और नीरव जी, आप लोगों के लिए भी चल पड़ा। और साथ ही गाना भाई सन के लिए, शिवानी जी शुक्रिया साथ देने के लिए। और यहाँ पर रैड 29, ये गाना खासकर आपके लिए, ये वादा रहा फिल्म का तराना है। और यहाँ पर येशना और महेश जी अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप दोनों को हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी रेडियो मनोरंजन की पूरी टीम की ओर से। रिया बुधन जी शुक्रिया साथ देने के लिए। भाऊ ये गाना आपके नाम, यही गाना शुद्ध के लिए और हमारी प्यारी भाभी के लिए भी। ओके सो नॉट टू फॉरगेट 5250600 है नंबर हमारा, आप हमें मैसेज कर सकते हैं फॉर योर डेडिकेशन। साथ ही इस समय टिकटॉक पर हम लाइव है, आप वहाँ पर भी हमारा साथ दे सकते हैं।

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज।
1: और चलिए यहाँ पर आप लोगों के साथ, कब समय बीत जाता है पता ही नहीं चलता, देखते ही देखते रात के 7:45 बज चुके हैं। दिस इज़ या दिलों की आवाज़ ऑन रेडियो मनोरंजन। मैं हूँ सुमी और आप लोगों का साथ दे रही हूँ। रात के 9 बजे तक जो है हम आपके साथ रहने वाले हैं। इस समय सूरज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, त्रियोली से हमारा साथ दे रहे हैं। ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल शो, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर ये जो गाना है यहाँ पर जाता है आपके नाम, आपके बेटे निशाल के लिए, सभी बिसेसर पर ही बिसेसर फैमिलीज़ के नाम और पूरी मनोरंजन टीम के लिए, थैंक यू सो मच इसके लिए। और चलिए ज्ञाना जी, अगला गाना आपके नाम, फरेब फिल्म का ये तराना है, आंखों से दिल में उतर कर तू मेरी धड़कन में है। उज्ज्वल जी, यही गाना आपके नाम भी हम करते हैं। कुणाल नारायण जी, शुक्रिया आपके प्यार भरे साथ के लिए। डीवा गर्ल, थैंक यू सो मच, और हमारे इस लाइव को शेयर करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड वी हैव रेशमा, वी हैव स्वीटी, मिस्टर किंग है, अंतिश है, दिलान है, आयजा, ये गाना आपके लिए। चलिए यहाँ पर हम हैं तो आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं हम हैं, गाने हैं यहाँ पर, और इतने सारे फॉलोअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुसुम, अगला गाना आपके नाम, आपके प्यारे हबी कृष्णा के लिए और प्यारे से हायान के लिए। परदेसी राजन जी, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो इसके लिए शुक्रिया। रिबेल है, श्वेता है, सभी ही बड़े प्यार से हमारा साथ दे रहे हैं। और चलिए यहाँ पर फरेब फिल्म का ये तराना चल पड़ा, कुमार सानू, अलका याग्निक जी की आवाज़ों में, आप सभी के नाम।

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज
1: चलिए आपके दिल की आवाज हम तक पहुंचाने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपके डेडिकेशंस के जरिए आपकी फरमाइशों के जरिए दिस इज योर दिलों की आवाज ऑन रेडियो मनोरंजन और यहां पर जो है बहुत प्यारा प्रोग्राम चला रहे हैं थैंक यू सो मच गाना जाता है पति शिनान के नाम बहन है माला बेटी है रोशनी विश्वात्मा फिल्म का ये गाना है सात समंदर पार में तेरे खासकर अपनी बेटी के यहाँ मतलब कि विदेश जा रही हो छुट्टियां मनाने अपनी बेटी के यहाँ और राइट अनीता जी उम्मीद करते हैं कि वहाँ से भी आप हमारे साथ जुड़ेंगी मुझे पता है पूरा यकीन है आप बेशक जुड़ेंगी ही नो डाउट चलिए अगला गाना प्रिंसेस डेजी आपके नाम आपकी ओर से काजल और नंदिनी के लिए विजय जी हमारा साथ दे रहे हैं अब्दुल रशीद जी आपको भी हम नहीं भूले हैं लीना जी यही तराना आपकी ओर से आपके पति के लिए साथ में ये गाना अलीशा और साइलेश आप दोनों के नाम हम करते हैं हेमा आपकी ओर से गाना आपकी बेटी शेषनी के लिए आपने कहा था कुमार सानू की आवाज़ में कोई गाना है ऐसे तो ज़्यादातर गाने 90s के जब चलते हैं तो बैक टू बैक कुछ गाने कुमार सानू के ही होते हैं लेकिन अभी जो गाना है वो साधना सरगम जी की आवाज़ में है उम्मीद करते हैं ये गाना आपको और आपकी बेटी को ज़रूर पसंद आएगा नास है अरविंद है विक्रम है राम है सभी बड़े प्यार से हमारा साथ दे रहे हैं तो चलिए यहाँ पर विश्वात्मा फिल्म का ये गाना चल पड़ा आप सभी के लिए
2: You're listening to RM3 Radio.

चलिए यही गाना सलीम और हुस्ना आप दोनों के नाम भी हम करते हैं। अरविंद जी यही गाना आपकी ओर से सभी बिसुनी परिवार के नाम जो दागोचिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं।

0: दिलों की आवाज की आवाज
1: की आवाज। सोमवार 13 जुलाई घड़ी मिला लीजिए रात के 8:03 होने का है। देखते ही देखते दिलों की आवाज़ के इस सेकंड आवर में हम आ गए हैं और बस और थोड़ी देर में हमारा आज का प्रोग्राम भी खत्म हो जाएगा। इनफैक्ट आप लोगों के साथ जुड़कर ये टाइम कैसे बीतता है, इन गानों को सुनते सुनते, गानों को आप लोगों के लिए डेडिकेट करते करते हमें भी अंदाज़ा नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पर आपके प्यार भरे साथ के लिए शुक्रिया। स्वीटी जी हमारा साथ दे रही है, गाना जाता है आपके नाम स्वीटी जी, धड़कन फिल्म का ये तराना है। प्रतिमा जी गाना आपकी ओर से आपके हस्बैंड कृष्ण के लिए, मामा बसंती के लिए, सभी दुखित राम परिवार और सभी रामसरण परिवारों के लिए। राजेंद्र जी, राकेश जी आप भी हमारा साथ दे रहे हैं। रूपा जी यही ब्यूटीफुल सा तराना आपकी ओर से आपके हस्बैंड के लिए। साकुन जी मुझे पता है आप भी यही हैं तो आपको भी हम नहीं भूले हैं, तो ये गाना आपके लिए भी। और यहाँ पर जो है जितने भी हमारे सुनने वाले हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसके लिए भी शुक्रिया। देवाकिरी जी सेंड टू माय फ्रेंड इन यूके, ओके थैंक यू सो मच। अखियों से लीना जी आपने कौन सा गाना मांगा है मुझे समझ में नहीं आया। शोले फिल्म का गाना, ऐसे तो यहाँ पर हम पुराने गाने नहीं चलाते हैं। विक हुलास जी यहाँ पर हम 90s और थोड़े नए गाने चलाते हैं। जस्ट फॉलोड यू हमारे साथ जुड़े हैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू कविराज मोहन जी गानों को पसंद करने के लिए। और चले धड़कन फिल्म का ये गाना चल पड़ा अभिजीत जी और अलका जी की आवाज़ों में।

0: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज।
1: चलिए यहाँ पर ये है दिलों की आवाज ऑन रेडियो मनोरंजन और मैं हूँ सुमी, आप सबका साथ दे रही हूँ। चलिए तुम बिन फिल्म का जो अगला गाना है चित्रा जी की आवाज में, तुम बिन जिया जाए कैसे, जाता है आरोही और कविश आपके नाम रोजबल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए जो भी दूरियां आई है आप दोनों के बीच वो मिट जाए, आप दोनों एक हो जाए। राइट, नीलिमा जी गाना चाहता है बेटा मानव के नाम, साथ में अक्षय है, श्वेता है, साजिद जी, ज्योति जी आप भी हमारा साथ दे रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया। विदुर जी आपका बर्थडे है, सो वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे आपको हमारी पूरी टीम की ओर से। शकुन जी यही गाना आपके नातिन के नाम हम करेंगे, साथ में रेनु जी हमारे साथ जुड़ी है। विधि जी गाना जाता है आपकी ओर से आपके मामा के नाम। दीना जी आपकी ओर से गाना जाता है किसना के लिए। तेज की ओर से गाना जाता है उनके मामा पापा के लिए, उनके दादा दादी के लिए, सभी सनातन परिवार और सभी राम गुलाम परिवारों के नाम। अमृता जी आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए शुक्रिया। और ट्विंकल जी हमारा साथ दे रही है, स्वीटी नेक्स्ट गाना होते होते प्यार हो जाए। ऑलराइट, विल ट्राई टू प्ले दिस सॉन्ग। अभी के लिए गाना आपकी ओर से आपके दो बेटों के लिए, वी हैव गोविंदा सामी, हेलो गोविंदा सामी, अगला गाना आपके लिए भी हम करते हैं। रेखा रामा जी शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए।

0: this was a beautiful track taken from the movie Tum Bin, Chitra ji ki awaaz mein.
1: दिलों की आवाज़
0: चलिए यहाँ पर दिलों की आवाज़ है इस समय. आप उम्मीद करते हैं कि आप सबने अपना डिनर कर लिया होगा और हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसके लिए शुक्रिया. गाना चाहता है विश्वकर्मा जी, आपके नाम दिलवाले फिल्म का ये तराना है. जीता था जीता हूँ जिसके लिए मरता था, कुमार सानू एंड अलका जी की आवाज़ों में. यहाँ पर थोड़ी देर पहले किसी ने कुमार सानू जी की आवाज़ में गाने की फरमाइश की थी, तो ये गाना आपके लिए भी. रेखा जी गाना चाहता है आपके नाम, संजय जी आपके लिए भी, शबी जी आपको भी हम नहीं भूले हैं, अनिष्ठा गाना आपकी ओर से मामा देवंती के लिए, सभी मुन की परिवार के नाम. ट्विंकल जी दिस वन इज़ फॉर योर हस्बैंड, योर डॉटर, योर सन एंड योर मामा. हाय निशी, हाय गिरीश. रीता देवी जी शुक्रिया साथ देने के लिए. लालिनी की ओर से गाना जाता है फॉर लव राज. सारिका जी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए. विकास जी, निशा जी, समीरा जी, आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. रूपा जी आपकी ओर से गाना जाता है मुकेश के नाम. प्रतिमा इस समय हमारा साथ दे रही है प्लान मायों से. गाना गोज टू काजल, रेशमा, पूजा, रिया एंड द होल फैमिली. चलिए बदवाग विदेशी जी, आपका मैसेज हमें मिला. गाना आपके लिए भी हम करते हैं, सभी विदेशी परिवार के लिए भी.

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज।
1: चलिए अकेले हम अकेले तुम फिल्म का ये खूबसूरत सा गाना भी आप सुन रहे थे। और अब बढ़ते हैं इस अगले तराने की ओर। दुश्मन फिल्म का ये गीत होगा चिट्ठी ना कोई संदेश। गाना जाता है यहाँ पर

फिर एजे आपकी ओर से अंजू के नाम। कभी कभार ऐसा होता है कि जीवन भर हमें किसी का साथ नहीं मिलता, लेकिन उनके यादों के सहारे कभी कभार ज़िंदगी काटनी पड़ती है। तो चलिए, आपके अपने अगर किसी कारणवश आपसे दूर हो गए हैं तो ये गाना उनको याद करते हुए हम चला रहे हैं।

0: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज।
1: यकीनन ये गाने जो है कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी का हिस्सा तो है ही और साथ ही हमारे जीवन से जुड़े हुए भी है, इसलिए भी जब भी मौका मिलता है इन गानों को हम सुन लेते हैं और ऐसे में आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए एक और गाने की ओर हम बढ़ते हैं और खूबसूरत गानों का ये जो सिलसिला है जारी रहने वाला है रात के 9 बजे तक इन दिलों की आवाज़ ऑन रेडियो मनोरंजन।

0: दिलों की आवाज की आवाज दिलों की आवाज।
1: तो चलिए डियर लिसनर्स, विद दिस वी हैव कम टिल द एंड ऑफ दिलों की आवाज़ ऑन रेडियो मनोरंजन। शाम के 6:30 बजे से अभी तक आपका साथ हमें मिला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते ये लवली सतराना आप सभी के नाम हम करते हैं। इसी के साथ आज की हमारी जो मुलाकात है वो ख़त्म होने को चली। जल्द हम आपसे मिलने फिर लौटेंगे, यानी कि कल 12 बजे रेडियो मनोरंजन पर हमारी मुलाकात होगी इन सुहाना सफ़र। तो बिल्कुल हमारा साथ देते रहिएगा जब भी मौका मिलेगा, और रेडियो मॉरिशस, रेडियो मनोरंजन, MBC रेडियो से हमेशा जुड़े रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, गुड नाइट आप सभी को। और ये गाना आप सभी के नाम करते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। बाय।

0: Marxist.
1: Center 94 North South 95.6 East West 98.2. You are listening to RM3 Radio.
2: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा
3: सब संगत यारों के आज प्रताप सिंह की ओर से प्यार भरा नमस्ते और सलाम। यह तुल के मनपसंद रेडियो चैनल रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन रात के 9:02 और अभी से लेकर रात के 11 रे भोजपुरी तड़का प्रोग्राम नाच अब सा गाव अब सा झूम अब सा कमरवा डुराव अब सा और ये प्रोग्राम से आता रेडियो मॉरिशस से जी मनोरंजन पर और साथ में रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर भी यानी कि इनकी सगबा देखे और सुने भी ए हे हे। और मन का जा कोनो गीत मांगे के तह इनके टिकटॉक पेज पर मंगिया SMS कर जाओ या फिर हमने की टेलीफोनी कर दिया काट जाओ देवी जगह विद सैंक पर। आज है लिंडी के रात 13 जुलाई 2026 और बेशक हम हैं प्रताप सिंह आ रहे गमट करे तेरों के संगे संगे। ये पहल का कहना राजकुमार चिंतामणि गैरवन हेलो है गीत चली ये सब संगत यारों के नाम जो हमने के साथ जुड़ा रहा जा आप हवंजा उमा आरुष दीपशिखा आरती राम सहाय वंशिका दानो फिर बीना सिचन रिकॉर्डो लुई फिर हवन कमला बाय देवजी बबीता ननकु स्वीति इंदिरा सायरा दाहू गीत मंगले हवन अब्दुल और सायरा बानु खातिर और भाई अबू है गीत तोहर खातिर खासम खास और तोहर पत्नी तोहर सब परिवार के नाम शोभा भिवनन के साथ इंदिरा जी गीत राजेश उगर और सब उगर परिवार के लिए और इंदिरा जी के नाम देवन नदी वाला है गीत और खातिर दीपशिखा है गीत और नाम और है गीत चलावजा जिया हुसैन मोहम्मद भाई गुप्ता खातिर भी गुप्ता जी खातिर राकेश खातिर और सरिता सिबारत खातिर चल एक साथ सुने हेलो

0: हाँ तो लेंदी के रात बात है गमत के रात नाचब सा गावब सा झुमब सा तो लोग के संगे संगे आज उतना ठंडा नहीं कर रहा है ना दिन के ना सांस के आज मौसम खूब खूब घमा कर रखा आज और उतना ठंडा भी नहीं चला अच्छा अच्छा भाई से मौसम रही था वरना ढेर ठंडा का तो कंप्लेन कर सकती ठंडा का तो आज उतना मौसम मौसम बड़ी जरूरी रहा है तो दिन अच्छी तरह से बीतल हो और आशा करते अभी रात भी अच्छी तरह से बीजी एगो संगत जवाब लाइन पर से मिलब जा हेलो हेलो
1: नमस्ते
0: नमस्ते भाई संजय रोज बेल से कैसे समाचार अच्छा हुआ ना
1: अच्छा
0: अरे अगला गीत था मंगा द सुम्बावती
1: दुमन
0: पकई भात पकई कोकम के साथ अरे खोजब सा क्या कर खाते
1: बिना बिना बिना
0: बिना खाते हाँ
1: स्वीट स्वीट स्वीट मामा शुभिन
0: तो हर माँ खाते हाँ
1: हमारी बहन दीपिका
0: और
1: दीपिका दीपिका
0: हाँ और क्या कर खाते
1: मैं भूल राधा राधा
0: राधा खाते
1: हाँ आपके लिए निम्चन परिवार
0: ओके और खासम खास संजय तो और खाते ओके बहुत बहुत धन्यवाद संजय हमने के लिए फोन
1: किया मौसम
0: यहाँ मौसम अच्छा बा उतना गर्म नहीं कर लग बा जिस उतना ठंडा उतना ठंडा नहीं कर लग बा गर्म कर लग
1: बा
0: अच्छा बा गर्म कर लग बा अरे बहुत धन्यवाद बा भाई अच्छा भाई संजय रोजबेल से हाँ तो बोले थे आज उतना ठंडा नहीं कर लग बा अच्छा बा ठंडा नहीं कर लग बा तो इसे सकबा अभी ठंडा नहीं करी तो सकबा हम किसी फिर कह के ठंडा कहते सब कोई लोहे हो के सुझ जरा बुने रही मंगा द नौ लाख के हरवा संजना परगा से गीत और खातिर फिर शोभा गीत और नाम है ये गाना हम चला ठीक मीनाक्षी खातिर और है गीत चली अरबीना बानु सुखिया गीत और खातिर फारूक मिर्जा और एक गीत चलाता मामा इंद्रानी बिहारी जो नहीं कौची मिनी चे और है गीत मसूद खान के नाम स्वीटी है गीत और खातिर और तोहर पति और तोहर दुगो बेटा जो नहर पति और है गीत चलावती स सुशील शेष खातिर है गीत चली जयराज रानी अंतिश अंकुश नेहा और सब दुरार परिवार के नाम जो नहरा नालमाची रितेश के साथ हाय रितेश शासन पोष है गीत हरो नाम और शोभा जी हवन उस्मान अजीज फिर एम डी अजहर और कविता भी उनके साथ देवत हवन है गीत

ये रीता की ओर से कर दुगो बहन अमृता और रेणुका खातिर और भाई राजीव भी हमने के साथ देव थवन बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना कोई भी हमने की सुनता है रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर और हमने की दिखाता टिकटॉक पेज और रेडियो मॉरिशस पर तय गीतों के नाम मंगा द नौला के

ऐसे तो सब कोई सकेला माँ बाप बने और सब कोई सकेला माँ बाप बने पर माँ बाप के फर्ज भी चहला निभाए के जब एगो लड़का के धरती पर अन्य हुआ तो चेहरा लड़का के परवरिश करे के लड़का के देखभाल करे के लड़का के पढ़ाई लिखाई के लड़का के अच्छा शिक्षा दे के लड़का के अच्छा संस्कार दे के हमने में से कितना कोई लड़का के सच्चे में परवरिश करेगा सर लड़का करे के तो सबको लड़का करेगा बायोलॉजिकल बात है पर जब वो लड़का के अनले हवा तो लड़का के चेहरा होकर उत्तरदायित्व भी निभाए के लड़का के छोटा से बड़ा ले थोड़ा चेहरा होकर देखभाल करे के तो सब माँ बाप से प्रार्थना करें हम जान ही ना सकते अपन लड़का के दिखे रह सर पर दिखे रह सर ढेर कोई अपन लड़का के बरिए नहीं दीजिए करे रन सर

0: Orang bila itu lagu sangat jasa minam cha Lalita Hawan Trio Lese. Chachi Lalita namaste.
1: Namaste beta namaste.
0: Kaise chachi acha wana?
1: Acha beta acha aap kusal mangal.
0: Ha. Aaj utna thanda nahi lagwa ha ki nahi?
1: Nahi nahi tani jimi nahi hulba.
0: Anke hum bole the kamagadan ke aman ke dilag. Hum bote pegai manga se bole we do do hum pegai buku mang ek sak mang.
1: Ha ha. Pharal ba am pharata.
0: Na hama khati nai rakhle ke chachi akre akre khali re. और चाची बोला अगला गीत अभी दाल पकाई चला था दाल पकाई री
1: हाँ अति विनोद सिवदत्त के गोगी
0: चला अरे कौन गीत सुन बा बोला बोला चाची
1: बोला
0: दागादेले रे सुनर वाकेर खाचेर
1: बहिन सुदेवी ज्ञानी छोटी दीदी दादी प्रभावती हरीश भैया आत्माराम भैया और सुखलाल मौसी
0: चाचा आत्माराम कैसे गया अच्छा हो ना
1: तनी बीमार हो बोला
0: नहीं नहीं गेला देखे
1: नहीं बेटा कहाँ उतना दूर
0: जाइबो ए ताजा के देख लिया के चाचा
1: बेलिया बगल रहेलन ना
0: और कहाँ रहेलन
1: बेलिया बगल
0: आ बेलिया बगल
1: हाँ
0: आले चाची तो हगी चार दिन अब से थोड़ी घर में
1: बेटा आले शुभ रात्रि
0: आले बहुत बहुत धन्यवाद हमने की तेरे फोन कर ले आले बहुत बहुत धन्यवाद इधर चाची दारी जा और है कि जाने चाहते इस रोबे दिनु खातिर निर्मला हीरा है गीत और नाम और गीत चली मारवी दुमार के अवसे है गीत चली सियान केयान मेविन आकिर प्रियंका डुमर और सब डुमर परिवार के नाम ओके यो है गीत तोहर खातिर कैसे भाई यो यो यो है गीत तोहर प्यारी अनिशा खातिर और जन्मदिन बा अनिशा जी जन्मदिन बहुत बहुत अभिनंदन ढेर माना प्यार मेरा आशीर्वाद हाय आतिश कैसे बा आतिश आतिश है गाना खासम खास स्वर खातिर चला अभी एक साथ सुने गीतवा कीर्ति गोपी भी हमने के साथ देवतावन मिझा रामचरण भी हमने के साथ जुड़ल हवन जा और है गीत चलावत है जा सैतुबे एसएसएस कॉलेज के सब अध्यापक लोग के नाम और वहाँ के रेक्टर मिस्टर रूबेन मुनसामी के नाम भी बहुत बहुत प्यार के साथ चला गीतवा सुने दाल पकाई दी

बोला चला कि दुनिया में सबसे बड़ा दान है कन्यादान। जब एगो बाप अपन बेटी की शादी करे रहा तब अपन बेटी के हाथ दूल्हा के हाथ में देके बोले रहा हम अपन बेटी के तोहरा समर्पण करत है। हमार बेटी के निमन से देखिए छोटा से बड़ा ले हम देख ली अब हमार बेटी शादी के जो घोल बा तो आज से हमार बेटी तोहर हाथ में बात तू हमार बेटी के अपन मान्य में अन्य। तो हमेशा याद रखिए कि बेटी जो है एक दिनों के छह हिला माँ बाप के घर छोड़ के जाए के अपन ससुराल तो अपन लड़का में हमेशा निमन संस्कार दे लिया अच्छा बात बोलिए लड़का लोग के ताकि तोहर बेटी जब दूसर के घर में जाए तो काल के तोहरा को ओढ़न नहीं मिली। और जितना माँ बाप लोग बात जकर बेटी लेकर बा खासकर है संदेश है तो लोग के कि अपन बेटी के जहाँ ले सकब पढ़ै लिखै बड़ा आदमी बनैए ताकि जब अपन ससुराल में जाए तो ओकरो मान सम्मान रही। अब लड़का लोग को नहीं पढ़ेब लड़का खाली घर में रही हम नहीं बोलते हैं कि जो छोकरी घर में रहकर पाले नहीं बा पाले बा पर आज की दुनिया में अगर लड़का लोग के छोकरी के पढ़ेब छोकरी शादी करके अपन लायक लगे जाए तो ओकरो मान सम्मान रही हाँ कि नहीं। तो हमेशा याद रखिए सबसे बड़ा दान है कन्यादान। और हाँ आतिश हमसे सहमत बा बहुत बहुत धन्यवाद आतिश और विमला हमने के साथ देवत हवन और अभी ढेर कोई हमने के सुनत हवन रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर अच्छी बात बा। और अगला गीत है दगा देले रे सुनरवा हरीश नारायण अभी हमने के टेलीफोन कर लन और बोलन गीत मांगत हवन सब चुरन परिवार के नाम आप हवन ऋषन योहान लर्वेश याश और साइलेश हरीश नारायण हमने के बेस्ट फ्रेंड हवन जा ओकरा मन करता है गीत सुन के त चल सब चुरन परिवार के नाम ऋषान योहान लर्वेश याश और साइलेश दगा दिलेरी सुनरवा है गीत खासम खास तोहर खातिर। और रामनगर हमके साथ होथन अंजल प्रमीला ओम प्रकाश कृष्ण दुमाले है गीत राम तीरो माया हयो गीत तोहर खातिर खासम खास रावते जा। और जितना कोई अभी हमके रात के सुनता हमके आवाज़ जहाँ ले पहुँचता देश विदेश में भी था गीत लोग के नाम दगा दिले रे सुनरवा तो रजा दिलावते जा कि हमने लाइव है इसे टिकटॉक पेज पर हमने की सक बजाय देखे हमने से बात करे एसएमएस करे टाइप करिया टिकटॉक फिर दलिया रेडियो मॉरिशस

0: कभी सोचा है
1: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।
2: 819 kilohertz. This is Radio Mauritius. Radio Mauritius. RM3 Radio.

रात के वक्त जब ऐसे ठंडा ठंडा करेला और पानी बरसेला तो मन करेला गर्मा गर्म चाय पिए के या गर्मा गर्म भजिया खाए के या तो मन करे लोहे होड़ के सूते के काम करे के नहीं मन करेला कोई के बोला भी जाके बर्तन धोई के बाप रे बाप महाभारत हो जाए। अब मैडम बोली भी ऊ बकार

Là-haut? Monsieur ne me dit pas mon travail, ça. Allez, bah, Burton, manger que quoi que travail, hein. Jab dekho patni thak gal ba bichari, ta tu dho diya. Jab dekho pati thak ba, ta patni dho dei. Ab pati pati duno thakal ba, ta ke dhoi. Tab chha leka lo ke dhoi ke. Par abhi Burton manjer ke baap hai panniya se glass se ba, oh ho ho ho. फासिल नहीं पा बर्तन धो के अगला गीत केने केने खुजब कुको तेरी सुरतिया और है गीत वा बेचू फिर जानन गए लेवन बहुत बहुत प्यार से और है गीत के मांग कर ले हवन आतिश बुलाता सच के अभी बर्तन अभी को नहीं सकी धोई अभी जैसे पानी गिलासी भा तो आतिश सोचते तोहर लगे मुका तुम्हें बर्तन वहां धोई ले आज कि नहीं सन हीरा लाल है गीत और खातिर रिपन रतन खाट का गीत और नाम जी हाथ को दे रही अंजल प्रेमिला है गीत और नाम उर्वशी सुखी उमा दर्शन है गीत और खातिर सब दर्शन परिवार के नाम जोनल कटबोन कटबोन बासे रोड और राम दुनिया परिवार के नाम और अभी ये कब से हाँ यश हवन लिवरपूल इंग्लैंड से कैसे भाई यश भाई गीत हो नाम एंजो लेनो गीत हो नाम और जितना कोई बर्तन नहीं खुज रहा धोई के गीत लोगों खातिर केने केने खुजब को तोरी सुरतिया हम केने केने खुजब को तोरी सुरतिया

किने किने खुजब कोको तोरी सुरतिया और अब हम तुमको कहानी सुना मुर्गा और कुत्ता की कहानी। तो बहुत साल पहले की बात है, एक गांव में एगो मुर्गी और एगो कुत्ता रहा था। दोनों अच्छा संगतिया रहन सा। मुर्गी रोज फजीत के अंडा देवता है, दाना चुगत है, और जब कुत्ता वो सब रखवाली करे। एक दिन मुर्गी दाना चुगते चुगते खेत से बाहर दूर जंगल में निकल गए। वहाँ पर एगो चालाक लोमड़ी ओके पकड़े की कोशिश कर लग और खोजता मुर्गी के खाए के। तब मुर्गी डर के मारे जोर जोर से कुकुरुकू कुकुरु कुकु करे लगल। मुर्गी की आवाज़ सुन के कुत्ता दौड़ा लाल और वहाँ पर जोर से भौंके लगल। कुत्ता के भौंक सुन के लोमड़ी भाग गल। तब मुर्गी राहत के सांस लेलक और कुत्ता के धन्यवाद देलक। बोलक सच्चे दोस्त हमेशा मुश्किल समय में एक दूसरे के मदद करे रहन सा, और आज तू साबित करे थे कि तू हमार सच्चा दोस्त हवे। उस दिन के बाद से कुत्ता और मुर्गी की दोस्ती और गहरा हो गल और लोग हमेशा साथ साथ रहे लगल। तो ये कहानी की सीख कौन सी है संगतिया लोग कि सच्चा मित्र उ रहेला जौन संकट के समय में तोहर काम आवेला। जब कोनो मुश्किल में रहबा एगो व्यक्ति तोहर सहायता करी तो उ तोहर सच्चा दोस्त कहलाई। वाह क्या बात है, मुर्गा और कुत्ता की कहानी, मुर्गी और कुत्ते की कहानी, मुर्गी और कुत्ता की कहानी, ठीक बा। अगला गीत मरैया में आग लगल बा। हैगीतवा खासम खास मुकेश कुमार खातिर, अतिशा राम डेजी हैगी तोहर खातिर, रजनी हैगी तोहर खातिर, फिर सब शिव बुदत परिवार के नाम और मेरे होश के सब परिवार खातिर, रामशरण नंदलाल और रेणुका दुबरी हैगी तोहरों खातिर, और हे गीत हमेशा तो संजय यादव खातिर, अंजू है गीत और नाम आशना नुशा रक्तवा है गीत और खातिर, और छोटे भाई पदम है गीत और नाम बहुत बहुत प्यार के साथ, और है ये गीतवा चलावप सा हुमान खातिर मरैया में आग लगावा। संजय हरिचंद है गीत और खातिर, और पत्नी संध्या तोर बेटी हुविष्का और सब हरिचंद परिवार के नाम का जगो देव जगो सकबा जाते फिर करे या हमने के टिकटॉक पेज पर सकबा एसएमएस करे। चला गीतवा सुनम जाए मरैया में आग लगल बा।

भूख के मारे पेटवा में आग लगा और जब भूख लगेला तो चूहा दौड़ेला तो भूख जो है वो इंसान की तरपा के रख देवेला। ये खातिर हम हमेशा बोईला कि फजीर के अगर बुनरे उजेब तो सकब साँझ खातिर कौन चीज़ पका दे क्या कि थे कोई फाची को क्या बोला तो खुशी रह रहे सर साँझ के जो है खाए के तो बेशक पका के रख दिया थोड़ा सुनजस्ती जमी साँझ के लड़का लोग का या तो घरोला या तू ही ब तक मोटी खाई की मिली कहे कि कबो कबो भाड़ा के खाई की ढेर कोई नहीं सकेला खाई हमने जानी जा सब पर अगर घर में बस साँझ के कढ़ाही खोल बस देखती खोल खाई के को जाना नहीं रही तब बड़ी खींच लगेरा। और हम सुन रहे हैं आजकल ढेर कोई ठंडा के कारण नहीं नहाता वन सा तो ये बहुत बुरी बात है काहे चाहे नहीं छह नहा के चेहरा नहा के ऐसे नहीं करिए अच्छा स्वास्थ्य में रहे खातिर छहना फजीर साँझ के नहा के तोहर शरीर स्वस्थ रही त तोहर मन भी स्वस्थ रही। और ये खातिर चहला नहा के अरे भाई आजकल तो गर्म पानी भी बा काहे बोल सक कि नहीं नहावत तो से नहीं नहीं नहीं ऐसे नहीं करे के ऐ तो कोई बोली हम नहीं नहाते ठंडे ठंडा करता नहीं ऐसा बात नहीं बा है फजीर के साँझ के चेहरा नहा के अरे ठंडा पानी में नहीं से बनाए तो गर्म पानी में नहा लिया इसी तरह स्वास्थ्य ठीक रही पारिश नहीं करिए है कोरिया राजा नहीं बन गया। अगला गीत मरमीत में गर्म पानी चढ़ल बाहर गीत अनिता लाल जी खातिर हेलो लाल अनिता लाल जी है गीत तोहर सब परिवार खातिर चलावत है अनिता लाल जी फिर अनिता हम पी कॉम्प्लेक्स से लव ना है गीत तोहर खातिर तोहर पति विकास तोहर माँ आशा और सब फकीर परिवार जुन रहन पिछड़ा फ्रे और है गीत से महा महादाव परिवार जुन रहन सैंपिये और मुकेश कुमार भी हमने के साथ देवतवन बहुत बहुत धन्यवाद जया देवी सोभा गीत हो नाम और जियो नान बॉस है गीत और खातिर साइद हजरत है गीत और खातिर क्लाहल भी हमने के साथ देवतवन यादव चांदनी नावीन भी हमने के साथ देवतवन और प्रवीण बुधन हवन तायाक से कर्मा कर पापा वो सब बुधन परिवार के नाम है प्रवीण बुधन है गीत तो हर नाम खास

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर। कमट धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर।
2: भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा।
3: संगचल घड़ी मिला लाई बखत रात के ठीक 10 बजल बा और तू सुनते हुआ रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन और हमें के टिकटॉक पेज पर दिखाते हुआ रेडियो मॉरिशस के सब संगचलों के सब भाई बहनों के हम स्वागत करते हैं जा और भोजपुरी दर का प्रोग्राम से रात के 11 बजे ले तो हर पसंदीदा भोजपुरी गीत का जगह दे विद जगह विद सैंक पर सकबा टेलीफोन करे या हम के टिकटॉक पेज पर मैसेज भी जा करिए। अगला गीत मार ताली मार हमर संगे बहुत ही प्यारा सन गाना कुणाल हिलाल गईले हो ना और गीत चलावत है सा अनिता पैटोप खातिर रवि को संगत लाइन पे कर से मिले अब जा शोभा हवन काटो बोन से। हाय शोभा।
4: हेलो नमस्ते।
3: नमस्ते शोभा, कैसे समाचार?
4: कैसे है? ठीक है।
3: हम ठीक हैं, तू कैसे हुआ?
4: ठीक हूँ।
3: गमत हुआ था कि नहीं?
4: हाँ,
3: आज के लिए तो अच्छा रहा है।
4: हाँ,
3: गरम करी रहा ना?
4: नहीं बात ना।
3: नहीं, आज उतना ठंडा नहीं कर लगभग। अच्छा
4: हाँ,
3: बना
4: नहीं, नहीं उतना ठंडा नहीं हुआ।
3: अगे माँ एक दूसरे में से पानी बरसा लुगा नहीं सुखाता। अच्छा
4: पानी आज... नहीं बरसा था, कहाँ पानी बरसा
3: था? नहीं हमने बगल को पानी रहा लुगा नहीं सुखाता है पर आज सब लुगा लाकोर मिले सब लुगा सुखा गल। उतना पानी नहीं बरसे रहा, उतना नहीं पर हमने पानी बरसा लुगा सब
4: पानी
3: नहीं बरसता है हमने जगह बरसाता है थोड़ा बहुत। अरे बोले तो आज के दिन कैसे भी चल
4: पानी मिटा के
3: गीत

0: Gitar?
1: Hai gitu ah. Ayo. Bulveni.
0: O de pula gida.
1: Ay. Jeli jeli pula pule la. Madame Benoît.
0: Kon pula pule la.
1: Kon pula pule la.
0: Sunan no yen.
1: Bulveni.
0: Na ki.
1: हाँ तो
0: गिटार रोज किसे लगा वो भुला जाए ऐसा कौन फुलवा ना
1: हाँ तो लोग के याद रहेला ना
0: हाँ तो मेरे रोज किसे रहा ऐसा गिटार ना जानी ऐसा
1: हाँ
0: आई गिटार के कर खातिर
1: सब कोई खातिर जितना कोई रात के काम करता जितना कोई सुनता से एमपीसी के टीम के लिए सभी जितना लोग सुनता सभी पूरी के दोस्त के लिए
0: सब कोई खातिर सब भोजपुरी प्रेमी खातिर बहुत बहुत धन्यवाद हमके सुनने कर ला शुभा शुभरात्रि बाय बाय
1: शुभरात्रि धन्यवाद
0: और है गीत दिखलागल खातिर लकी वुमन है गीत हो रहा मनीता पेटोब और है गीत चलाओ अब जा सब संगत यारों के नाम और है गीत चली है गीत चलाओ तेज खासम खास प्रिट्स खातिर हेलो प्रिट्स जी भी हेलो हरे कृष्णा जी भी और अंजवी सरस बोधलू हमने के साथ देवत हुआ ना और है कि चली जिमी दुखिया की ओर से है कि जिमी दुखिया सावन दुखिया सब दुखिया परिवार सुदेश जसवा हमने के साथ देवत हुआ हेलो है कि जुकरमा राजकुमारी चिबुग लॉन्ग राजा स्टीव नानो है कि तो लोग के नाम भी और जितना कोई राजमन्ना भी उनके साथ हुआ था हेलो राजमन्ना है गीत और खातिर खासम खास और है गीत यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के फैकल्टी ऑफ सोशल स्टडीज एंड ह्यूमैनिटीज के बीए फ्रेंच एमए फ्रेंच और पीएचडी फ्रेंच के सब लेक्चरर स्टूडेंट्सों के नाम और श्रीमती तरुणा पदारा जो लेक्चरर हुआ एम जी आई में गीत और खातिर सब परिवार के नाम सलोनी बंगारू है गीत और नाम Tarimar, Mar, Tarimar.

जब बत्ती से धुआं निकलने लगी तो तेल डालने से क्या होगा। जब असर के भूत सर से उतर गया तो अरे गुनी बुलाने से क्या होगा। जब देवता देवी आसन छोड़ दिया तो खीर पूरी चढ़ाने से क्या होगा। आ भर पेट जब भात खा लिया तो अब खुदी चुनने से क्या होगा। अरे गंदे पानी पीकर प्यास बुझा लिया तो कुआं में डुबकी लगा।

अरे रिश्ता जोड़ने से क्या होगा, अपने घर के कुत्ता जब काट दिया तो पुलिस को बताने से क्या होगा। अरे सफेद चादर में दाग लग गई तो अरे नदी में जाकर धोने से क्या होगा, जब घर की चौकट साफ किया नहीं तो आंगन झलकाने से क्या होगा। जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या होगा, जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या होगा।

0: संगतियारों का भी जहां दुनिया चला बात है नहीं सब कोनो चीज की भी गैस प्याज करे जी हां गैस प्याज ये बीजे करिया जैसे लालमिया नहीं सेवी करता था ताकि वह टैंक कर दिया और जब गोभी ने नहीं सेवी करता तो गोभी ने वह बंद कर दिया और बेशक खा के जब पकाई बात अजीज खा के पकाया ढेर नहीं पकाया कि परी खा के सब बिके कब खा के गाते हो जरा तो घर में चार जना बात अगर सांस के वक्त भात पकेला तकारी पकेला तो को हिसाब से पकेला तमी गैस प्याज नहीं हुई और लड़का लोग से मांग कर अब सके जब खाते हुए तो राशिद में माता जी या पिताजी खाए के दिन बस सब खेवा के खा लिया थे लड़का लोग कहा कर रहा खेवा के लेके गिंजे रन सा और आधा खा रन सा आधा खेवा के बिक देवे रन सा कोनो कोनो देश में देखे आदमी लोग के खाए के नहीं बा गरीब गरीब देश में आदमी पुबेल में से खाए के निकाल के खाता बहुत ही दयनीय स्थिति में पर मॉरिशस में हमने की भरपूर खाना मिलेगा हम लिकुलों में दिख रहे हैं लड़का लोग रोटी खा के जो है डिस्कारी में बिक देवेलन से या पुबेल में देख कबू आधा रोटी में बर्गर बा या कोनो चीज तो घास प्याज ढेर होला घास प्याज नहीं करे भैया घास प्याज कर बा और प्लेया हो महंगाई के जमाना बा महंगाई के जमाना दुनिया भर में महंगाई के जमाना बा खाली मॉरिशस में नहीं है दुनिया भर में जब लागे होल वहाँ पर ही ट्रंप झगड़ा के मौसम कर लगता है तब से महंगाई महंगाई चारों ओर बाय देखो सोचे रहा खाली मॉरिशस में महंगा बा नहीं दुनिया भर में फ्लाशों के कारण महंगाई बढ़ रहा था तो एक तरफ तो लोग घास प्याज करे रहे और बोले से महंगाई बात कैसी बनी बोले था तो सब चीज़ हिसाब से मुझे हाशों से इस्तेमाल करिया और अभी एगो संगत जब लाइन पर से मिला जाए सुनीता हुन में बर्ग से हाय सुनीता नमस्ते
1: हेलो जी नमस्ते
0: कैसे समाचार
1: कैसे हो
0: हम ठीक

0: कहीं तू कैसे हो तू गैस प्याज तू गैस प्याज नहीं करे ना सुनीता गैस प्याज नहीं करे के माँ देखे ला सब चीज महंगा बा ना तो अभी के लड़का लोग तो आधा रोटी खा के बिक दे
1: ठंडा
0: होता तो हर लगे पानी बरसता माई बूम पानी बरसता तभी चार आपसे गीत ठंडा ठंडा पानी न न न मेरी जान शशि सुहादी
1: ठंडा ठंडा पानी से नहाना चाहिए
0: हम सच्चे बोल रहे हम रोज
1: कुमार
0: हम रोज के गर्म पानी से नहाए ला भजीर कर शांत के हम पर ठंडा पानी में बाप हम तो ग्लासों में भोजा बन जाए
1: वही बाप हाय
0: देर कोई कुछ ठंडा में देर कोई कुछ ठंडा में नहाए की ना
1: जी और मुकाम में बहुत ठंडा
0: है नहीं आज आज मुकाम में मौसम बड़ा प्यारा बा ठंडा नहीं कर लग बहुत ना जिस
1: जी मैं एक गाना की
0: मांग कर रही हूँ हाँ बोला कौन गीत सुन बा
1: भोजपुरी के गीत बहुत सुहावन लगेला
0: के गई लग बा
1: नहीं जाना
0: थे अतन भोजपुरी के गीत सुहावन भोजपुरी के गीत आलिंग अगर खाती गीतों मंग लिया हुआ
1: मेरे लिए
0: हाँ
1: मेरी हरदम गायत्री मेरी भगिनी है
0: अच्छा और भगिनी है गायत्री कहाँ रहे राहु
1: वो नुवेलगांव फ्रांस रहती है
0: क्या काम करती है वो
1: काम नहीं करती है
0: घर में
1: वो मुझसे बड़ा है
0: बड़ी है ओके ओके
1: तू बड़ी से बड़ी है
0: आवेला घूमे तो और
1: नाता के मेरे पति के
0: हाँ तो आवेला घूमे तो और लगे
1: हाँ आवेला ओकर बेटे अजय के लिए जो नुवेल फ्रांस रहती है आपको भी अभी सभी सुनने वालों को भी हाँ। और मेरे देश को मेरे दोस्त को नहीं भूलना चाहिए
0: कोई हाथ और दोस्त हो
1: मैं नहीं जानती उसका नाम
0: अगो खास दोस्त हाँ क्या बात है
1: एक खास दोस्त है एमबीसी में
0: खास दोस्त एमबीसी में ओके
1: आप जानत हो
0: नहीं हम नहीं जानते हैं फिकर खतीर
1: मैं उसका नाम नहीं जानती हूँ
0: उसका नाम नहीं जाने
1: वो इंडिया में रहते थे
0: ओके
1: वो इंडिया में रहते थे मैं उस हरदम उसका नाम मैं डालती थी ओके उसके नाम रहा रमेश कश्यप
0: ओके ओके ओके तक खासम खास
1: ओके ओके हरदम मैं बोलती थी
0: हाँ ओके
1: उसके लिए को भी हाँ, और आपको भी और सभी सुनने वालों को
0: सो स्वीट बहुत बहुत धन्यवाद
1: अच्छा जी okay. नमस्ते
0: नमस्ते शुभ रात्रि हाँ तो अभी चला सुनब जा ठंडा ठंडा पानी हरगिजवा चलावत ऐसा बबीता चुलन के नाम हेलो बबीता जी कैसे बस समाचार खुशी उदुम और यश अलोल लरबीच चुलन साइलेश सुकन और ये सब संगतिया लोग बड़े प्यार से इनके सुनतवन चला गीत चला जा और ये लोग भोजपुरी गीत बड़ी प्यार से सुने न रोज रात के लेंदी से लेके दिमासली तब बबीता चुलाए नौ तो और सब परिवार खातिर गीत ठंडा ठंडा पानी न न न न न न अरे चले गीत संग संग आप सर ओके प्रताप की ओर से ओकर बेस्ट फ्रेंड हिरीश के नाम भी गीत हिरीश भोजन करता मच्छी की तकारी और भात बना पे ची

हिरीश चले हम संगे गावा लल्ले मेरी जान कमा हिरीश तेरे बिन लागे न जिया हमा ठंडा ठंडा पानी दिलाने मेरी जान सब चुलन परिवार हम के संगे नाचता गावता बबीता चुलन नाच मोरी जान जाले मर जान ठंडा ठंडा पानी हे हे बबीता चुलन जी नाच खुश उदुम या शर्लो लर्विस चुलन साइलेश सुकन सब कोई कमरवा डुलावता ए हे

0: ना कोई भोजन करता बोन आप शुभ आहार सुरुचि
1: आपकी कस बुझा दे मेरी जान ठंडा पानी
0: ठंडा ठंडा पानी तू गरम गरम पानी पिया ठंडा ठंडा पानी नहीं पिया अभी खोके लगभग हो गरम पानी पिया है

हमने के देश में सब कोई काम करेगा सब कोई काम करवाई सर कोई दिन के काम करेगा कोई रात के काम करेगा कोई शिफ्ट में काम करेगा और हर प्रकार के काम करवा लोग बा डॉक्टर अध्यापक क्लीनर हमने के सफेद टैक्सी लोग भी काम करे रहन सर हमने के कंडक्टर सफेद कंट्रोलर तो सब कोई हमने के देश में बहुत मेहनत से लगन से काम करे रहन सर कामासुत हवन सर बहुत मेहनती हवन सर और सफेद लोग तो फजीर के बोने रे कबू डिजाइजी मारते हैं थोड़ा डिजाइजी मारते हैं कबू रात भर काम करे रहन सर और अभी जितना सफेद टैक्सी लोग सुनाता तो अगीते तो लोग के नाम चली जितना कोई वान में काम करे जितना कोई सोफे हवन सा है हमने की सुना तो हवन सा तगला गीत लोग के नाम जोली छोकरी से प्यार करीला जकर कतिर हम रोज जीला सब काम करवा लो खाते जितना कोई काम करे रहा हमने की देश में सब काम करवा के सलाम देखा कोनो काम अपन आप में छोटा या बड़ा नहीं बा वो काम करते हुआ अपन परिवार का पैसा आनते हुआ खाई पी के आनते हुआ यही काफ़ी है शर्म की बात नहीं है कि हाउ जून काम करवा टॉयलेट धोवेला और हाउ जून काम करवा बीरो में काम करेला सबके समान रूप से हमने कुछ आदर सत्कार करी थी जरा सोचा हो प्लौते हुआ लेकिन नहीं प्लौती तो हमने कौन सी मिली खाई की और सुबह टैक्सी वाला काम नहीं करी तो कैसे से कब से एगो प्लास से दूसरे प्लास जाए हाँ कि नहीं तो हर काम के अपन महत्व हो चाहे बुलौजे हो टॉयलेट क्लीनर हो टैक्सी ड्राइवर हो अध्यापक हो हमने के देश में जितना कोई जितना काम बा सब काम के हमने पूरा जो है मान सम्मान दे रहा सर देखा काम में शर्म नहीं बाए काम करब तो पैसा मिली भैया काम नहीं करब तो का करब चोरी करब नहीं ना तो काम जो है ओके अंग्रेजी में वर्क इज़ वर्शिप

0: तो जितना काम करो लोग सुनता है गीत लोग ना जोली छोकरी से प्यार करीला और गीत वा खासम खास हमने चावते इस वीना कुपुसामी के नाम आप रहन में बाग कर सब परिवार का तेज सुरमा दुखे ते गीतोरो नाम फिर हवन लाहौजा के संगीता अमीरन है गीतोर का ते तोहर मामा तोहर भाई दान आजी तोहर बहिन शांति और हेमा वंशिका रक्षिता और सब अमीरन और मोहन परिवार के नाम है गीत और है गीत हिरीश की ओर से संगीता के नाम भी हिरीश अपन संगत्या के नहीं भूलैया और अभी एगो संगत्या वाला लाइन पे राधा हवन विल्फोंसो को से मिल जा हेलो राधा जी नमस्ते
1: राधा मिलते
0: नहीं तो देखा अभी टिकटॉक चलाता और निमरो भी चलाता था जैसा हो में टिकटॉक में
1: नहीं हमको जाता है हम नहीं जाने ला देखे
0: और नहीं जाने आली पाफे नहीं आली बोला बोला
1: प्रणाम भैया
0: प्रणाम कैसे अच्छा हुआ ना
1: हाँ
0: दिन के बाद हाँ सच्चे के बोला
1: मुबारक हो
0: बहुत बढ़िया बहुत बहुत धन्यवाद बोला अगला गीत
1: भाभी कैसे भाभी
0: भौजी अच्छा बाप भौजी भी रात के भी अभी छोटा हूँ सो का है अभी शादी की जा रहा तो
1: हमके बोल देना शादी में बोल देना
0: नहीं तो अभी से करा ये पूरी खाई
1: अब हम ये सो के देखे काजू लेके
0: हां हां काहे नहीं काहे नहीं देखा आज आज है ना सुनो ना अब लामुद बा काजू नहीं बोले लंचा नो गिफ्ट बॉक्स प्लीज एनवेलप में ये काजू हबीला हेने सुन हेने सुन गे बहिनवा आगे सब ने अब लामुद बा देख आज कत मौजाज में
1: और
0: अगला गीत
1: बोला गीत माना था राधा
0: गीता में क्या बोले गीता में क्या बोले
1: बोलेला
0: राधा के सोभेला
1: हां हरमान सिंधुवा कृष्णा के सोभेला आंटे बतुरिया और दादा नाचेला टिकटॉक में वीडियो कॉल देखते थे दिखे मारते थे
0: आले आले आले देख खप से
1: आले सुना सुना हमर सब बहन खातिर
0: हां
1: हमर हमर सब नेवेनी खातिर
0: हां
1: और हमर भाई आकेश खातिर और तोहर खातिर हमर मामी गायत्री ओकर बेटा अजय
0: राधा के सोभेला बहुत बहुत धन्यवाद भूले नहीं सज्जे में आई है पूरी खाई भूले नहीं
1: हाँ,
0: जोरी लहंगा से आ दिया नाचे के गावे के संगे
1: संगे
0: ऐसा जोरी जोरी ना बेचारा हो दिखा अब तो
1: है
0: सुना बहिनी अब तो सब रेडीमेड बेचारा बाप रे बाप बहुत धन्यवाद राधा ने विल्फोंसे रलंजा और प्रभावती लोल चाची प्रभावती ने विल्फोंसे वंजा हाँ यम तो हंसते हंसते मर पेट दुखाई लगा जोड़ी छोकरी से प्यार करी रहा हरीश नारायण भी बोला था जोड़ी छोकरी से प्यार अरे है जो गीत संग संग आपसे है One, two, three, chill out, chill out, chill out, chill out.

Finish the run on the mix. Chala nache. Joli chukri se pyar karila. Khatir ham roz jila. Love, okay, kaise samjha, okay. Batai de humko. Se pyar karila. हम रोज जीला कैसे बदला बोगे कि कोई ना कोई समझाए हमको फोन लगावा एसएमएस करा कोई बतावा कैसे क्या करा फोन लगावा

0: और फिर कुछ संगत लाइन पर कुछ भी नब जाए। हेलो आफिज जी, सलाम वालेकुम, तो और स्वागत बा रेडियो मोशन से जी मनोरंजन पर। आपके आंखों में नींद क्यों नहीं है? ऐसे नहीं बोलते हैं, ये रेडियो मॉरिशस से जो मनोरंजन है।
1: गीत सुने
0: खातिर आ रही। कौन गीत सुन बा बोला था? हाँ, कौन सुनते सुन बा बोला? गमत को कुकु लाली लाल। कौन गीत है वो? गमत लाल बा। गमत लाल बा गीतवा के कर खातिर जेकर कोई नहीं बकर भगवान बा खुदा बा और हमने ही से रेडियो मॉरिशस पर हो कि नहीं।
1: प्रताप हो ना?
0: हम प्रताप सिंह हैं और अभी रेडियो में हुआ।
1: हम तो बुला गए
0: हाँ कि नींद अभी चलाई तो हर गीत चलिए भी। ओके, बहुत धन्यवाद। हाँ तो रेडियो है, सोचा सर कैसे बचाए कि चला इधर उधर के बात नहीं करे के। हाँ तो बोला था ऑंक में नींद नहीं आया होता गमत लाल बा। चल अभी सुनब सर अली जी का खोजब सर भी है गमत कुकु। ओके, और अभी अभी एक से आगे चलिए राधा के सोभेला। बहुत ही प्यारा सन गाना भी श्रोता मंगले रलन था चला वब सर गीत। और एक गीत खास हम खास चली पूर्वी खातिर तौर खातिर तौर सब परिवार के नाम कौन तो गैर में जितना कोई बहन की सुनता गीत तो लोग के नाम भी। और है गीत रूबेन की ओर से

और अब हमनी तोरा बताओ अब जबकि जो इन सब्जी आलू है ओकर कौन महत्व है हाँ तो आलू जो है कि हमनी के रसोई घर में रोज के सेवी होला आलू में कार्बोहाइड्रेट बा विटामिन सी बा विटामिन बी सिक्स बा पोटाशियम बा फाइबर बा और आलू जो है शरीर के ऊर्जा प्रदान करेगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता बाकर में मस्तिष्क और मस्तिष्क के लिए अच्छा है लड़का लोग सेव डेवलप करेगा एंटीजन बनावेला और

दशम जुन हमन के रक्तचाप नियंत्रण में रखे हम के ब्लड प्रेशर के कंट्रोल में रखेला और जुन फाइबर रहेला आलू में त एक से पाचन में सहायता ला डाइजेशन अच्छा होला और ये जुन आलू है आलू खाई बा त आलू के ढेर प्रकार से सब बनाए आलू के चटनी आलू भुंजल आलू तारल आलू के सलाद आलू बेतरा डाल के सब भून करके सलाद बनाए और पर बुरी लंस की देख जगह जाबित बा डायबिटीज बा मधुमेह बा वो लोग के आलू उतना नहीं खाएगी सब बार थोड़ा सुन खाए ढेर नहीं और ये आलू जो है एक ढेर तेल में नहीं तरिया एक सब बार आला वाह पे पकाए है तेल में ढेर तार दे बताओ कर सब जो न्यूट्रिएंट्स वा वो सब कर चल जाला तो आलू सब्जी जो है बहुत आसान है ओके छीले के काटे के धो के पकाए के ये वो सब्जी है जो 365 जू मिल रहा हमने के बाजार में और आलू महंगा नहीं है वैसा को भी डाली है और जब बाजार जाइब तो जो बोलें सा जो आलू जो जगह में लापूशे रहे ला इसे लापो लापू जैसे अच्छा रहे खाए के कहे के अगर से चिप्स बनेला और अगर से ढेर प्रकार की व्यंजन बनेला और आलू के पराठा जैसा खा लिया वह भारत में जेब आलू के पराठा जो है ढेर कोई खा ला जैसे ठंडा ठंडा करा था आलू के पराठा बना देला कोतमीर की चटनी और एक कप चाय सुपर हमारे तुम मुँह में पानी भरा हम जाए कौन चीज़ खा के आए ला कौन चीज़ एमबीसी के ला कौन चीज़ में तब ले तू सुना तो अजल सा लाल बा आफिस बोलता को नींद में अगर आँख में नींद नहीं आओ तो का आफिस ऐसी बोलते हुआ तब तो हर आँख में नींद चला है गीत सुन के जल सा लाल बा

जब कोई के मृत्यु हो जाला कोई लगे मरनी हो जाला तब नी रोई लासा दुखी हो लासा उदास हो जाए लासा पर देखा जायुला तो चला जाला अब उदास अब रोब एक दिन दो दिन एक महीने एक साल पर रोला से व्यक्ति वापस तो नहीं आई हाँ कि नहीं और जिका जन्म हो यहाँ पर ही ओकर मृत्यु निश्चित है हमने सागर में लासा कहे कि हमने के और व्यक्ति से वातास्मा हो जा रहा एक बंधन हो जा रहा कि फलाना व्यक्ति हमने के परिवार रहल कि हमने के चचा रहल मामू रहल कि दादी रहल पर देख बता हमने सब कोई आत्मा है सर है जो आत्मा है इस शरीर के एक चेहला ओब्लीसी है शरीर के छोड़ के दूसरे शरीर में जाएगी जैसे हमने एगो सिमीज निकाल के पुराना लुगा निकाल के नवा लुगा पहनी ना था उसने ही आत्मा भी शरीर एगो शरीर के छोड़ के दूसरे शरीर में जाला हमें कि धर्म ग्रंथ में लिखल बा वेद पुराण उपनिषद रामायण महाभारत भगवद गीता में कि आत्मा अमर है अजन्मा है काहे रोइला सर काहे कि हमने के हम व्यक्ति से वातास्मा बा कि हमने की संगतिया रहल कि हमने की फामी रहल कि फलाना हमने के पड़ोसी रह पर उ जन व्यक्ति जन मर जाला और जन आत्मा उतना खुश होके भगवान लगे जाला कहे कि ओकर मकसद है इस शरीर से निकल के भगवान लगे जाएगी तो विधि के विधान है जकर जन्म बा तो कर मरनी भी बा और कितना दिन से अवसर हो एक दिन एक महीना दो महीना पर परेरा जिए कि अब जन को व्यक्ति मर गल तो संग नहीं सकब सा जिंदगी भर विलाप करे कहे कि जहाँ देखे कि तुम्हारे परिवार में और कोई बात और इंतजार कर रहा था तो लोग खातिर परेला जिए कि बी स्ट्रॉन्ग बी ब्रेव जहाँ को आवाज लेके ये सब आसान बात नहीं है जब एगो परिवार में एगो इंसान हमेशा के लिए भगवान अगर चल जा रहा था एगो मौक मौ रहेला पर क्या कर परेला जिए कि भैया नहीं सब सब कुछ करे जीवन और मरण हम के हाथ में तो नहीं बा चूल्हा के ठिकाने बही खाती बड़े से चलन नाचे गावे झूमे कमरवा डुल्लावे और बबीता चुलन बड़ा जोर हमी के संगे नाचा था हिरीश भाई बोला था प्रताप जी एगो गीतवा चला देता एगो जोरी गीत हम शहर में रह खोज गीतवा नहीं मिलता एगो सर गीत चलाते थे इंद्रासन से ढोलक मंगली और बबीता चुलन बड़ा जोर नाचता ऐसे नचते रहिए हमने के साथ गाते रहिए अभी 11 बजे

समाप्त हुआ था रात के 9 बजे से अभी हमने के साथ दिला चा तो लोग की फोन कॉल्स एसएमएस का जी धन्यवाद हमने के टिकटॉक पर देख ला टिकटॉक पेज पर रेडियो पर सुन ला बहुत बहुत धन्यवाद ठीक 11 बजे प्रोग्राम समाप्त हो जाए सुन बजे अगला प्रोग्राम सुनहरी पर और रात के 12 बजे से कल फजर के 5 बजे रे नॉन स्टॉप फिल्मी तराने हमने के तरह के मुलाकात हुई कल मंगल के रात के 9 बजे से 11 बजे रे भोजपुरी तड़का प्रोग्राम में तब तक हमने की इजाजत अजय प्रताप सिंह की ओर से सबको की प्यार भरा नमस्ते सलाम शुभ रात्रि लव यू ऑल गॉड ब्लेस नमस्ते

0: This is Radio Marxist.
1: 您好
2: ，Assalamu alaikum.
3: Kimchi Mauritius.
4: Namaskar.
5: Shodharandiri ki hrudaya purvaka namaskaram.
6: Ungal anaivarukkum vanakkam.
7: Radio Mauritius par dil se swagat hai aap sabhi ka.
8: सुनहरी पल रेडियो मॉरिशस के साथ
9: रेडियो मॉरिशस पर शुरू हो चुका है यादों का सिलसिला। जी हाँ दोस्तों, हर गीत के साथ एक नई कहानी और एक नया एहसास। ये है सुनहरे पल, पुराने बॉलीवुड गीतों की महक और यादों की खुशबू लेकर हम ये निशा आ गए हैं आपका साथ देने के लिए इन योर सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस। तो बस तैयार हो जाइए एक सुहाने संगीतमय सफल तो बस तैयार हो जाइए एक सुहानी संगीतमय सफर के लिए।

दिल को सुकून देने वाले गीत, जी हाँ दोस्तों, और यादों से भरे लम्हे, बस इसी का नाम है सुनहरे पल। साथ रहिए रेडियो मॉरिशस के साथ। आज फिर बजेंगे वो गीत जो कभी हर घर की पहचान हुआ करते थे। बिल्कुल दोस्तों, हर सुर में प्यार, हर बोल में एहसास, पुराने बॉलीवुड गीतों का ये अनमोल सफर आपके लिए लेकर हाजिर है ऑन रेडियो मॉरिशस, आपके सुनहरे पल में।

वैसे आज की रात को यादगार बनाइए और उन गीतों के साथ जो आज भी दिलों पर राज करता है, ये है सुनहरे पल। यादों की किताब के कुछ खूबसूरत पन्ने आज फिर खुलने वाले हैं मेरी जान। जी हाँ, हम बस चाहते हैं कि आप खुश रहें, हमेशा आप मुस्कुराते रहें। और ये अगला गाना आपकी होंठों की मुस्कुराहट के लिए हमारी तरफ से आपके नाम।

संगीत का वो दौर जहां दिल से लिखे और दिल से गाए जाते थे, तो चलिए उसी दौर में चलते हैं सुनहरे पल के साथ। दोस्तों, हर गीत एक रिश्ता बनाता है और हर याद को जिंदा भी रखता है। आज उन्हीं यादों को फिर से महसूस करते हैं रेडियो मॉरिशस पर आपके सुनहरे पल में।

अगर आपको पुराने गीतों से मोहब्बत है मेरी जान तो ये महफिल बिल्कुल ये महफिल आप ही के लिए है। साथ रहिए और गीतों का मजा ले लीजिए। पुराने बॉलीवुड संगीत का जादू आज फिर बिखरने वाला है, सो दिल खोलकर सुनिए और यादों में खो जाइए, क्योंकि ये आपका सुनहरे पल हम इसलिए लेकर आते हैं ताकि हम आपके दिल को बहलाएं और पुरानी यादों में फिर से खो जाने के लिए मजबूर कर देते हैं आपको।

जितने भी हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं, दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे साथ देने के लिए। तो बस यूं ही गिनिशा का साथ देते रहे। मुझे नहीं पता आप हमें कहां से सुन रहे हो, मॉरिशस में हो, मॉरिशस के बाहर हो, काम पे हो या घर पे हो, गाड़ी चला रहे हो, कहीं से भी मेरी जान आप साथ दे रहे हो। तो ये अगला नगमा स्ट्रेट अवे फ्रॉम माई हार्ट आपके दिल तक। तो चलिए ये आपके नाम

दोस्तों वक्त बदलता है लेकिन कुछ गीत हमेशा जवान रहते हैं। बिल्कुल हम भी इस बात को मानते हैं क्योंकि वो गीत तो हमारे दिल के इतने करीब होते हैं। और इन गीतों को सुनते सुनते फिलहाल के लिए इस वक्त होगी निशातू से गुड बाय। हम अभी तो जा रहे हैं लेकिन वापस आएंगे एक और सुनहरे पल के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। शुभ रात्रि।

0: जिस रेस से मुझे निकालने की बात कर रहे हैं बेवकूफ, वो नहीं जानते उस रेस का सिकंदर मैं हूं।
1: वो नहीं आने वाली, आने वाली, आने वाली, वो बेवफा छलावा थी।

मैं कुछ भी कर लूं, तुम कभी मुझसे मोहब्बत नहीं करना चाहती, और तुम कुछ भी कर लो, मैं कभी तुमसे नफरत नहीं कर सकता।